इस लंचबॉक्स शो में। वेल यस, बहुत सारी बातें करनी है। अभी से लेकर 3 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ, बहुत सारे अपडेट देने वाला हूँ। कुछ खबरें आई हैं, कुछ कैकोरक में क्या अपडेट है वहां से भी मैं कुछ खबर लेके आया हूँ। तो आप ये सारी चीजें सुनने के लिए बस बने रहिए, सुनते रहिए आज के इस लंचबॉक्स शो में। मेरा नाम केतन है एंड दिल से स्वागत करता हूँ आज वेडनेसडे के दिन आप सभी के बीच। जी हाँ, हम रेडियो के थ्रू, हम 104.2 एफएम के जरिए आप सुन सकते हैं मुझे। रोआ ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, उसके जरिए भी आप सुन सकते हैं। क्या नया पॉडकास्ट आया है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, बट एंजॉय करो ये खूबसूरत गाना। बचाओ क्या

0: दोस्तों कभी नोटिस किया है जब हम बचपन में थोड़ा सा भी बीमार होते हैं, आई एम प्रीटी श्योर आपने किया होगा, तो अगर घर का माहौल ही जो है वो बदल जाता है अगर हम छोटे से थोड़े से भी बीमार होते हैं। माँ के हाथ की जो अदरक और तुलसी वाली गर्म चाय, दादी के नुस्खे, हल्दी वाला दूध, सर पर प्यार से रखा हुआ हाथ और वो एक ही डायलॉग, बस दो दिन आराम करो सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन आज लगता है कि असली दवा सिर्फ वो घरेलू नुस्खे नहीं थे बल्कि अपनों का प्यार और उनकी फिक्र भी थी। आज जिंदगी इतनी भी फास्ट हो जाए, कितनी भी तेज हो जाए, मेडिसिन कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन घर की वो खुशबू, रसोई से आती गर्म सूप की महक और माँ का वो प्यार, ऑब्वियसली उनका जो प्यार से भरा हुआ पूछना कि कैसा लग रहा है, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देता है। उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। होम रेमेडीज ऑफ कोर्स सेहत का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी यादों का भी एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है जो हर बार हमें बचपन की उन प्यारी सी गलियों में वापस ले जाता है।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।
3: माजे लिए मोमबत्ती है, पहले दिनों तेरे उत्ते आँख रखिए, तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दल मंगी।

0: स्ट्रीमिंग ऑन रोवर। आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
0: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
2: HBO Max is the all-killer, no filler.
3: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
2: Exactly.
3: Right, we'll see. What have they got?
2: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
3: Whoa, okay, I get it. Fair call.
2: HBO Max, all killer, no filler. Stream now.
4: JB Hi-Fi's long weekend price frenzy on now. Save big on phones, TVs, computers, and more. Get 48% off the Victus gaming laptop with Intel Core i5. Ends 15th July. JB, you've done it again.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ। अच्छा बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साडा कुछ नहीं।
9: मिसेस सिंह,
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
11: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
12: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
13: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
12: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
14: Lunchbox with Ketan.
15: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
14: Office shout out.
16: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। एक बहुत ही खास बात, ऑफ कोर्स लंच बॉक्स की बात हो रही है तो लंच की भी बात होगी, और अगर लंच की बात हो रही है तो आपको सभी को पता है कि हम खाना तो खाते ही हैं, बट मेन डिफरेंस पता है कहाँ आता है, किस तरह से खा रहे हैं, यानी कि जो च्यू करने का तरीका होता है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, और या कहूँ तो काफ़ी लोग तो सचमुच निगलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू प्रॉपरली ईटिंग इट। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ ज़्यादा चबाना ही नहीं बल्कि धीरे धीरे खाना भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं उनमें से एक हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। फाइनली इस आर्टिकल को पढ़ के मैं अपनी वाइफ को भी बोल सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत इरीटेट हो जाती है, मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो खाता हूँ। बट यस, जब हम अच्छी तरह से च्यू करते हैं तो डाइजेशन बेटर होता है, पेट जल्दी भरने का सिग्नल जो है वो मिलता है, और ओवर ईटिंग की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, रेगुलर च्यूइंग जॉ मसल्स जो होता है उसको, ब्रीथिंग को भी सपोर्ट करता है। आजकल अल्ट्रा प्रोसेस और सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से हमें ज़्यादा मेहनत करके चबाने की आदत कम होती दिख रही है या फिर नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से ये नेचुरल प्रोसेस कम होता जा रहा है। इसीलिए अगली बार जब आप खाना खाएं तो थोड़ा ज़्यादा च्यू करो और थोड़ा स्लो करो खाना, हर बाइट को अच्छी तरह से च्यू कीजिए, और होल फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स को भी अपनी प्लेट में जगह दीजिए। कभी कभी हेल्दी रहने का राज जो है किसी बड़ी मेडिसिन में नहीं बल्कि हर बाइट का थोड़ा सा प्यार और पेशेंस के साथ चबाने में भी छुपा होता है, फॉर श्योर। वेल, क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ आजकल, है ना। आज मतलब पहले मेडिसिन की बात करी, नुस्खे, घरेलू नुस्खे, और अभी ये वाली बातें। सोच रहा हूँ MBBS कर ही लेता हूँ मैं।
12: टॉप हिट ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

चलिए बात करते हैं आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की। एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपको मैं बताता हूँ। आज के दिन ईयर 1862 न्यूजीलैंड का पहला प्राइज फाइट हुई, यानी कि प्रोफेशनल बेयर नकल बॉक्सिंग मैच हुआ था वाइमा किरीरी में, रिवर के किनारे काइयापोए के पास। और इस फाइट में लंदन के बॉक्सर हैरी जॉन्स और लेबरर जॉर्ज बार्टन आमने सामने आए थे। मैच लगभग 30 राउंड तक चला और उस दौर के हिसाब से ये काफी बड़ी प्राइस थी। 100 पाउंड्स दांव पर लगे थे, 100 पाउंड्स 1862 की ये बात है। कहते हैं पुलिस ने इस फाइट को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां से हटा दिया गया और करीब 500 लोग इस मुकाबले को देखने पहुंचे थे। फाइट के बाद दोनों बॉक्सर्स पर कोर्ट में केस भी चला और उन्हें असॉल्ट के जुर्म में 1 महीने की जेल हुई। सोचिए, आज बॉक्सिंग एक ग्लोबल स्पोर्ट्स है, लेकिन न्यूजीलैंड की बॉक्सिंग हिस्ट्री की शुरुआत एक ऐसे मुकाबले से हुई जो रिंग से ज्यादा कोर्ट रूम में भी याद रखा जाता है। काफी इंटरेस्टिंग न्यूजीलैंड में हुआ था आज के दिन। कुछ फिल्म बननी चाहिए इस पर, मेरे को लगता है कि कैसे शुरुआत हुई न्यूजीलैंड में। इट गोना बी फन, राइट? अगर कोई ऐसा बनाता है तो।

डाउनलोड कर लीजिए रोआ ऐप, उसके जरिए बहुत सारी चीजें होती है जो आपको अपडेट मिलता रहता है। हम रिवाइंड, आप रोआ के नंबर वन म्यूजिक स्टेशन बॉलीवुड के गोल्डन एरा यानी कि 60s 70s के गाने आप सुनिए वहां पे, 80s दशक के गाने भी आप सुन सकते हैं वहां पे। पीजी भजन एंड पीजी कीर्तन, दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म जहां पे 24/7 चलने वाले फ्री भजन या फिर फ्री कीर्तन, पीजी कीर्तन सॉरी, पीजी भजन और पीजी कीर्तन सुन सकते हैं आप कभी भी कहीं भी। चढ़दी कला पंजाबी हिट्स, उसके भी गाने बैक टू बैक आप सुन सकते हैं, पंजाबी के बहुत ही दमदार गाने। और उसके बाद राहत फतेह अली खान जो यहाँ पे आ रहे हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, बट वो भी आ रहे हैं। उनकी जो कवालीज हैं, सूफियान अंदाज के जो गाने हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे रोआ ऐप पे। पॉडकास्ट भी हम डालते हैं, पॉडकास्ट भी आप सुन सकते हैं। दर्शित पांड्या AI स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने रिकॉर्ड की है बातें सैंडी एंड रुजबे के साथ, जिसे आप सुन सकते हैं कंप्लीटली फ्री हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप हमें ड्राइव लिख के 5599 पे भी भेज सकते हैं, तो हाल फिलहाल आपको ऑडियो लिंक मिल जाएगी, जी हाँ, उसे आप कैचअप कर सकते हैं। बट यस, चैट GPT से लेके फोटो को एनहांस करना, ये हर एक चीज है ना, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं कवर अप किया है। प्लस जॉब की अपॉर्चुनिटीज कितना इन फ्यूचर, AI का फ्यूचर क्या है, जिससे करियर को लेके काफी इफेक्ट हो सकता है, ये सारी बातें उन्होंने की है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये भी आप डाउनलोड कर लीजिए रोआ के जरिए, या फिर हमें ड्राइव लिख के 5599 पे तो भेज ही दिए। साथ में इन एड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, जी हाँ, ये थिरुकुत्तु नाइट होने जा रही है, ऑकलैंड यूनाइटेड थिरुकुत्तु ग्रुप वैदिक सेंटर पापाटोटो में 10 जुलाई को होने जा रहा है 7:30 बजे के बाद, 7:30 से लेट नाइट। एंट्री फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ $10 ही है। कावा, स्नैक्स एंड हॉट फ्राइज विल बी ऑन सेल। आप जीत कुमार को कॉल कर दिए 021-0544-737 पे। श्री राम मंदिर में अखंड रामायण पाठ भी हो रहा है, फर्स्ट से सेकेंड अगस्त यानी कि फर्स्ट पहली तारीख से दूसरी तारीख अगस्त की, आप 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन पहुंच सकते हैं और इस पाठ का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही रामलीला भी होने वाली है 8 अगस्त को, तो आप इस इवेंट में भी जा सकते हैं। अगर आपको कोई और इंक्वायरी है तो आप मास्टर अशोक को कॉल करिए 021-179-5459 पे। लंच बॉक्स विद केतन, इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: DVS huge winter sale on now. Huge savings across all DVS ventilation systems. Say no to crying windows. Say yes to the huge winter sale on now. DVS. T's and C's apply.
2: Ski G. Yeah, it's a real word now. Verb, to stop in Fiji before you hit the slopes. Because why fly straight to the snow when your island paradise is on the way? Land in paradise, soak up the sun, and then go shred Japan. Or hit the slopes in Vancouver. Rather unwind a pre-ski, relax and recover in Fiji on your way back home. This winter, don't just ski, ski G. Check out fijiairways.com/ski G.
3: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love. The playground down the road. The park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/local board plans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
4: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space. And business shows up in your personal space. So shouldn't your bank see the bigger picture? At ASB, one banker handles both your business and personal worlds. Because you're one person, not two accounts. ASB, get one step ahead.
5: MediaWorks complaints. How can I help?
6: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
5: Thank you.
6: It's all I can think about.
5: What does it sound like?
6: Yeah, I'd rather not.
5: Go on, why don't you have a crack?
6: Okay, got a plumbing problem.
5: Oh, I need a bit more than that.
6: They've got your back.
5: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
6: Oh, okay.
7: There's no better plumber to give it a crack.
5: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
6: No, I want a plumber.
8: Advertise with MediaWorks.
9: New Zealand listens to us.
10: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
11: Lunchbox with Kethan.
12: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
13: चटनी शॉट्स.
14: चटनी शॉट के सेगमेंट में आपका स्वागत है. सबसे पहले ब्रेकिंग वेदर अपडेट्स. कायकोरा में हैवी फ्लडिंग के बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है. कई रेसिडेंट्स को तुरंत सेफ एरिया में पहुंचाया गया है और कुछ लोग जा रहे हैं. हेल्प के लिए अपील भी की गई है. कुछ रोड्स टूट चुकी है. अथॉरिटीज लोगों ने ऑफिशियल अपडेट्स फॉलो करने की रिक्वेस्ट की है. एंड कीप वॉचिंग द अपडेट अबाउट द वेदर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको कन्वीनियंस लगे. टैक्स फ्रॉड का एक केस में एक बिल्डर को $40,000 टैक्स वेड करने के मामले में कम्युनिटी डिटेंशन की सजा सुनाई है. ऑफिशियल्स ने कहा है कि टैक्स इवेजन के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन जारी रहेगा. गिस्बर्न एयरपोर्ट से भी एक डेवलपिंग स्टोरी सामने आई है. एक हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद इमरजेंसी सर्विस तुरंत मौके पर पहुंची. इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अथॉरिटीज डिटेल्स कलेक्ट कर रही है. पुलिस पॉलिटिक्स अपडेट. प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने साफ किया है कि अंडर 16 सोशल मीडिया बैन के प्रपोजल के साथ VPNs को रिस्ट्रिक्ट करने का कोई प्लान नहीं है हाल फिलहाल. ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कई घंटों तक चला पुलिस स्टैंड ऑफ खत्म हो गया है. इसके बाद एलिजिट ग्राफिटी वेंडल्स को अरेस्ट कर लिया गया है. और एक और पॉलिटिक्स से अपडेट है. नए फिगर के मुताबिक अब आधे से ज्यादा माओरी वोटर्स माओरी इलेक्टोरल रोल्स पर रजिस्टर्ड है। एक्सपर्ट्स इसे न्यूजीलैंड पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मान रहे हैं।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है. Throwback.
2: आज का इंटरेस्टिंग सवाल वो ऑफ कोर्स वीक के बीच में नहीं, एक्चुअली कल ही तो और काम पे आना है. एंड देन ऑफ कोर्स परसों तो छुट्टी है, परसों तरसों और उसके बाद भी परसों तरसों नरसों. दिस इज हाउ वी कॉल इट. बट सवाल जो इंटरेस्टिंग वो ये है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मुझे बताइए, आपने जो अपना जो वो कहते हैं ना लेडीज नाइट या फिर जो भी स्पेशल नाइट होता है जब आपने साथ में डांस किया होगा पहली बार आपने अपने पार्टनर के साथ शादी में, वो कौन सा गाना था, कौन से गाने पे आपने डांस किया था मुझे बताइएगा. और अगर नहीं की है तो कौन से गाने पे आप करना चाहेंगे, मुझे जवाब भेजिए. जी हाँ, 555 99 पे.

0: ढूंढेगी ना, कभी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल जान लेते हैं। आज 17 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 9 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला। आज भी थोड़ी बारिश है 10%, लेकिन सनसेट होगा कल से 1 मिनट ज्यादा 5:20 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। आप बस बने रहिए, बिकॉज एसआर में भी आपको बहुत सारे अपडेट देने वाला हूँ। फीफा में क्या चल रहा है, उसके साथ साथ बाकी के स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, उसकी भी बातें होगी, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर यस, एसआर में आपके लिए लंच बॉक्स में लंच टाइम रेंट लाइन की भी बातें होगी। आप जिस तरह से कल कॉल किया था, आज भी आपको मौका देने वाला हूँ। साथ में ऑफकोर्स आप बने रहिए, बिकॉज बॉलीवुड की खबर भी एसआर में मैं बताने वाला हूँ। So let's start the hour with I Hate Love Story.
0: बचाओ क्या?

0: Well, अगर आप टेलर स्विफ्ट के बहुत बड़े फैन हैं तो एक और खबर लेके आया हूँ, कुछ अपडेट लेके आया हूँ उनकी शादी से रिलेटेड। दुनिया के सबसे फेमस सेलिब्रिटी, वन ऑफ द फेमस सेलिब्रिटी कपल्स में से एक है टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्स, अब ऑफिशियली शादी के बंधन में बंध चुके हैं। सो जिनको नहीं इन्विटेशन मिला है वो अफसोस मनाइए। मुझे थोड़ा दुख तो हो रहा था कि यार क्या यार शादी में नहीं बुलाया यार, सलाह तो बुलाता ही नहीं शादी में। भाई कोई करो अगर शादी वादी तो मुझे बुला दो यार इनविटेशन, मुझे है ना बहुत सारा नाच गाना करना है, बहुत सारा खाना खाना है, मजाक कर रहा हूँ। बट शादी का माहौल भी एंजॉय करना, यहाँ की शादी कैसी होती है। इनफैक्ट कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे जिनसे दोस्ती हुई है मेरी एज ए क्लाइंट के थ्रू, उन्हीं की शादी में, यानी कि उनकी शादी में मैं फिल्मिंग कर रहा हूँ और वहाँ हमारी दोस्ती है। बट नाउ मैं बोल रहा हूँ कि क्या यार तूने शादी में बुलाया नहीं मेरे को यार। एनीवेज हम बात कर रहे हैं इन सेलिब्रिटीज की। दोनों ने न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक ग्रैंड और स्टार स्टडेड सेरेमनी में शादी की है और इस वेडिंग को काफी सीक्रेट रखा गया है, यानी कि नाउ यू नो द रीजन व्हाई यू हैव बीन ऑप्ट आउट फ्रॉम द इन्विटेशन। और सेरेमनी के बाद ही ऑफिशियली कंफर्म भी हो गया है, सही है। बट यस, वेडिंग में कई बड़े हॉलीवुड और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए थे जिसकी वजह से इसे साल की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी वेडिंग में से एक माना जा रहा है। फैंस सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और दुनिया भर में कपल को बधाइयां बहुत मिल रही हैं। तो यस, यहाँ पे विश कर दो, क्या पता उनकी पोस्ट वेडिंग सेरेमनी हो वहां पर आपको इन्विटेशन मिल जाए। टेलर और ट्रेविस की लव स्टोरी पहले ही हेडलाइंस में रहती थी और अब उनकी शादी ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक वेडिंग नहीं बल्कि पॉप कल्चर का एक यादगार मोमेंट बन गया है। नाउ द थिंग इज, जोक्स अपार्ट, मैं अब उस मोमेंट का वेट कर रहा हूँ जब ये एक ऑफिशियल वीडियो रिलीज करेंगे अब उनकी शादी का। एक होता ना लाइक, पता नहीं वहाँ पे क्रेज है उनको वीडियो का पब्लिकली दिखाने का या नहीं, बट जैसे इंडियन सेलिब्रिटीज काफी लोगों ने तो पोस्ट या प्री वेडिंग करके ऐसा बनाया है वीडियोस जो उन्होंने डाले। लंच बॉक्स
1: विद केतन। इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे हम
3: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
5: कौन है?
6: Hunua और Waitakere।
5: अच्छा Hunua west में?
6: किधर है Hunua?
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
7: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
3: Weekdays 6 to 10 a.m.
8: At Flooring Extra, they don't just sell floors, they transform homes. From luxurious carpets to show-stopping hard flooring, you get expert advice and installers who get it right the first time. They make it effortless. Visit in-store or they'll bring the showroom to you. Measure, quote, install, done. All backed by solid warranties for total peace of mind. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
9: Flooring Extra. Adore your floor.
10: TriVision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
11: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
10: Saturday, 18th July, 7 p.m. at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
11: Mashallah, bahut acha, very nice.
12: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Papa Toy Toy, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Happy Road! In just 29 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
13: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
2: And if you're just joining us after the break, we're talking about... Holy... $10 deals on Uber Eats? Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
14: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
15: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
16: Lunchbox with Ketan.
17: Mujhe pasand hai ladka.
16: Hum. Lunchtime rant line.
0: जल्दी से फोन उठाइए 5599 पे, मुझे लंच टाइम रेंट लाइन के लिए मैसेजेस भेज दीजिए. जी हाँ, 5599 यू नो द नंबर, आप यहाँ पे मुझे भेज दीजिए. एक मैसेज ऑलरेडी आया, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे रेगुलर लिसनर हैं रवि भाई. वो कहते हैं, व्हाई डू पीपल वॉक इनटू अ शॉप, स्टैंड इन द एंट्रेंस एंड ब्लॉक एवरीवन एल्स ट्राइंग टू गेट इन. मेरे को पता है क्या है, अब ऐसा फील हो रहा है जैसे सब मेरे को जवाब सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ. यार ब्रो, ऑनेस्टली मैं तो नहीं करता हूँ, तो मेरे को तो पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा लोग. बट यस, यहाँ पे कोई है जो ऐसा करता है हरकत है, या फिर इफ़ यू नो एनीवन जो आपके कलीग में या फिर योर फ्रेंड सर्कल या फिर आपकी फैमिली में कोई करता हो तो बताइए, रवि भाई को हम जवाब देंगे. बट थैंक यू रवि भाई, चौक सुपा, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द मैसेज. ये आए हैं मैसेज, और इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, वो कह रहे हैं, colleagues who say I have got a quick question and then keep you busy for 20 minutes. ये मैंने देखा है. अब मतलब अभी तो नहीं, but जहाँ पे मैं पहले job करता था जिस college में, वहाँ पे अपनी छाप छोड़ने के लिए एक बंदा था, वो इस तरह से सवाल करता था जैसे I just have a quick question, और वो बोल के भाई साहब उसकी discussion, बात पे बात, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई ये मीटिंग क्यों किए हैं, ये तो 101 होना चाहिए था. एक का आया है, सुपरमार्केट सेल्फ चेकआउट डिसाइड इट नीड्स स्टाफ असिस्टेंट व्हेन यू आर इन हरी. हैं मतलब व्हाई डज एवरीवन एवरी सुपरमार्केट सेल्फ चेकआउट डिसाइड इट नीड्स स्टाफ असिस्टेंट व्हेन यू आर इन हरी. ओके, समझ में नहीं आया ब्रो. आपने एक तो नाम भी नहीं लिखा, तो आई कांट इवन टेल दैट. बट यस, हाँ थोड़ा सा मेरे को लग रहा है मैं सवाल जो है वो मेरे सर के ऊपर से गया है. बट एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मूव ऑन करते हैं. पीपल हु वॉच वीडियोस ऑन फुल वॉल्यूम इन द वेटिंग रूम और ऑन द बस हेडफोन्स आर देयर फॉर अ रीजन. दैट इज सो ट्रू एंड दैट इज रियली रियली वेरी मच इरिटेटिंग. जब आपके पास ऑप्शंस हैं बट स्टिल यू वांट एवरीवन टू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर वॉचिंग. Just imagine, गलती से कुछ गलत वीडियो चल गया, फिर क्या होगा भाई साहब?
16: लंच के मंच पे. Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: अभी की लेटेस्ट खबर बेसिकली ये है कि न्यूजीलैंड में एक ऐसा केस सामने आया है जहां पे टेक्स की बातें जो है वो टाइम टू टाइम यू नो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं जहां पे ऑफ कोर्स इट इज नॉट सो ग्रेट टू डू द टेक्स चोरी, बट यस एक बिल्डर है, उसने लगभग $40,000 का इनकम टैक्स और GST बचाने के मामले में 6 महीने की कम्युनिटी डिटेंशन की सजा पाई है। जी हाँ, कोर्ट ने उन्हें कंपनसेशन देने का भी ऑर्डर दिया है। हैरानी की बात यह है कि ये उनका पहला ऑफेंस नहीं था, पहले भी टैक्स रूल्स तोड़ने के मामले में उन्हें सजा मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए। इस केस के जरिए अथॉरिटीज ने एक बार फिर क्लियर मैसेज दिया है कि टैक्स इवेजन को हल्का नहीं लिया जाना चाहिए, चाहे बिजनेस छोटे हो या बड़े। अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइम पर पूरा करना हर किसी के लिए जरूरी है, और ये केस हमें फिर याद दिलाता है कि टैक्स देना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि कानूनी फर्ज है। जी हाँ।

0: वेल, बहुत ही प्यारा गाना है ये, बहुत ही प्यारा गाना है। रब्बा मैं तो मर गया होए, बहुत ही खूबसूरत। और ये गाना मैंने एक्चुअली इसलिए नहीं चलाया कि आपको एंजॉय करवाने के लिए, एंजॉय तो करोगे ऑब्वियसली मेरे शो में, बट याद दिलाने के लिए कि लेजेंडरी द लेजेंड राहत फतेह अली खान आ रहे हैं यहाँ पे ऑकलैंड में वन अनफॉरगेटेबल नाइट आपके सामने प्रस्तुत करने के, यानी कि एक से बढ़कर एक सूफी अंदाज में कवाली, सूफी सॉन्ग।
1: कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया।
0: और उनकी जो सरगम है, उनकी जो हर मुर्खियां होती है गानों में, वो तो यार ओ हो। अभी वैसे एक नया गाना मैंने, मेरे फेवरेट बन गया है, जिसका नाम है
1: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
0: वेलियस, अगर ये गाना पूरा सुनना चाहते हैं तो आइए आप 25 जुलाई को। मैं नहीं गाऊंगा फॉर श्योर, मैं नहीं गाऊंगा, बट ये गाएंगे लेजेंडरी राहत फतेह अली खान। द ट्रस्ट एरिना में होने जा रहा है, प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन एंड शहजादा प्रोडक्शन। आप टिकट ले सकते हैं dryticket.com पे जाके।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: हाँ।

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनाना चाइल्ड केयर, जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे। विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो, हम हमेशा आपके पास हैं।
2: गो बनानास चाइल्ड केयर इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस।
1: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनानास चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-46-26-26 टुडे।
2: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space, and business shows up in your personal space. At ASB, one banker handles both. Because you're one person, not two accounts. ASB, one step ahead.
4: The King Living Winter Sale ends soon. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale ends soon. Shop online or visit a King Living showroom today.
5: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support and trusted resources. Support Feel Better month at Farmers.
6: Lunchbox with Ketan.
7: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
6: इसके पीछे
8: हम
6: लंच के मंच पे।
9: वेल, एक नई फिल्म आई थी दिलजी दोसांज की, सतलुज, एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है। पहले फिल्म को Z5 से अचानक हटा दिया गया और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका पायरेटेड वर्जन सोशल मीडिया पर लीक हो चुका है। इसके बाद फैंस ने दिलजीत और फिल्म के सपोर्ट में ऑनलाइन कैंपेन शुरू कर दिया है। कई लोगों का कहना है कि फिल्म को ऑफिशियली वापस स्ट्रीम किया जाना चाहिए, जबकि Z5 ने व्यूअर्स से अपील की है कि पायरेटेड कॉपीज देखना या शेयर करने से बचें। फिल्म पहले ही काफी कंट्रोवर्सी और डिलेज का सामना कर चुकी है, इसीलिए इस नई डेवलपमेंट ने एक बार फिर सेंसरशिप और पायरेसी को लेकर बड़ी डिबेट छेड़ दी है। फिलहाल फैंस को इंतजार है कि सतलुज दोबारा लीगल प्लेटफॉर्म पर कब वापस आएगी।

0: वेल, ये सॉन्ग मैंने इसलिए चलाया बिकॉज यहाँ पे बात होगी कुछ मैसेजेस की। मैंने सवाल किया था कि आपकी अगर शादी हो चुकी है और अगर आपने डांस किया है, फॉर श्योर आपने किया ही होगा, तो आपने कौन से गाने पे आपने डांस किया था। सो यस, प्रिया का मैसेज आया, वी डांस टू तुम से ही, सिंपल बट इट्स स्टिल अवर सॉन्ग। ऑफ कोर्स
1: ना है ये पाना।
0: वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद रवि भाई कहते हैं, वी डांस ऑन परफेक्ट बाय एड शीरन, स्टिल ब्रिंग्स बैक ग्रेट मेमोरीज। थैंक यू सो मच भाई। अंजलि कहती है, वी परफॉर्म्ड ऑन गल्ला गुड़िया, द होल फैमिली जॉइन इन एंड इट टर्न इनटू अ बिग सेलिब्रेशन। ऑफ कोर्स बट यस, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच बताने के लिए रिगार्डिंग व्हाट

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ किसने बनाया. वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप तो
4: आए आए बताओगे यार.
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
6: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
7: Kyun? Kya hua?
6: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne documents mange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya. No response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी. दैट्स 0800 564 424.
8: Ski J. Yeah,

0: आवाज गूंजेगी।
1: क्या नाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स में फिर से। वेल यस, बने रहिए, इस साल में भी बहुत सारी बातें करनी है, फीफा की अपडेट देनी है आपको जल्दी से, तो आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, बस कनेक्टेड रहिए। कुछ लेटेस्ट खबर भी आएगी अपडेट, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता रहूंगा। अभी के लिए एंजॉय करिए लापता के पलक मुचल की आवाज में, गाना बहुत ही खूबसूरत है, और साथ में आप बस बने रहिए बिकॉज उसके बाद सैंडी विल बी जॉइनिंग फॉर कॉफी ब्रेक, और उसके बाद ड्राइव शो में उनका साथ देंगे।
2: बचाओ क्या,

0: एक और बहुत ही बढ़िया अपडेट दे देता हूँ। ट्रिविजन इवेंट्स आप सभी के लिए लेके आए बहुत ही बढ़िया शो द ग्रेट कॉमेडी नाइट, जिसमें आ रहे हैं कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। डबल द कॉमेडियंस एंड डबल द लाफ्टर। जी हाँ, हर चीज दुगनी होने वाली है, यानी कि आपके मजे भी और आपका एंजॉयमेंट के साथ साथ आपका जो मेमोरीज बनेगी वो भी। पहली बार आ रहे हैं न्यूजीलैंड में तो उनके लिए भी बहुत यादगार रहने वाला ये शो, एंड आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे ऑकलैंड के पीपल इज गोइंग टू वेलकम देम इन वेरी गुड वे, लाइक यू नो इट्स वेरी एक्साइटिंग एज वेल। जी हाँ, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। सो यस, आपने उन्हें हमेशा टीवी पे देखा है, सो फाइनली दे आर एक्चुअली कमिंग आउट एंड दे विल बी परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप मौका नहीं खोना चाहते हैं, जल्दी से जाइए bookmyevent.co.nz पे और टिकट ले लीजिए। जस्ट फॉर एन अपडेट, VIP टिकट्स जो है वो सभी के सभी बिक चुकी है, सो देयर इज ओनली फ्यू सीट्स लेफ्ट बिफोर इट ऑल्सो गोज अवे। आप जल्दी जाके वेबसाइट पे bookmyevent.co.nz पे जाके टिकट खरीद लीजिए। 18 जुलाई को होने वाला है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर पे, और आपको क्या करना है, आपको एक्चुअली सुनते रहना है, बिकॉज कोई भी अनाउंसर आपको मौका दे सकता है टू कॉल अस 0800-004-866 पे, और कोई भी जोक सुनाना है। अगर अनाउंसर हंस जाता है या अनाउंसर एंजॉय करता है तो वो आपको स्ट्रेट अवे डबल पास का मौका दे देगा। जी हाँ, बस आप बने रहिए, सुनते रहिए हमारा लंच बॉक्स शो अभी, और उसके बाद कॉफी ब्रेक एंड देन ड्राइव शो एज वेल, जहाँ पे फिर से ये मौके आपको दिए जा सकते हैं।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 8 years.
4: Right now, in midwinter with ills, chills, the short week and school holidays kicking in, many of NZ Blood's regular donors are out of the game. So if you can, please make time to give blood this week. The team would really appreciate your donation. Come off the bench and make a real impact. Your donation of blood could help save up to 3 lives. Bloody legend. Give blood, save lives. Book now at nzblood.co.nz.
5: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
6: Sorry about that.
5: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
8: आपके सामने एक रेड बटन है,
9: दबा दिया।
8: नहीं दबाना था।
10: The madness is back, धमाल 4।
11: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
10: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4, directed by Indra Kumar.
12: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
10: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
13: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।

0: पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
2: हम
3: स्किप या रीप्ले।
4: वेल देखिए, एक और आपके लिए एआई से रिलेटेड मैं बात लेके आया हूँ। ऑफिस में अगर आप एआई टूल्स यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। न्यूजीलैंड की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक काफी एम्प्लॉयज अपने वर्कप्लेस में एआई का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन खुलकर बताने से हिचकते रहते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 37% कीवी वर्कर्स को एआई यूज करने पर गिल्ट फील होता है, जबकि उनका मानना है कि इससे उनका काम बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को डर रहता है कि कहीं एआई उसे यूज करने से उनकी जो स्किल्स है या जॉब को गलत तरीके से जज ना किया जाए। इसी वजह से वर्क प्लेसेस को ऐसे एनवायरनमेंट में बनाना होगा जहां एआई को एक सपोर्ट टूल्स की तरह देखा जाए, ना कि किसी शॉर्टकट की तरह। आखिरकार टेक्नोलॉजी तभी सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है जब इसका इस्तेमाल ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के साथ किया जा सके। डेफिनेटली मेरे को नहीं लगता कुछ उसमें हिचक होनी चाहिए। आप यूज करते होंगे एआई, सभी यूज करते हैं आजकल, उसमें कोई हिचक नहीं है। इट्स जस्ट दैट हाउ यू विल बी यूजिंग इट और कितना आप उससे फायदा उठाते हैं। As long as you know it is all in the safe environment, then why not? I mean, like, there's no harm in mentioning that yes, you have used this AI. Because मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सामने वाले को वैसे पता पड़ जाना है. So I don't think so. There's anything to hide over here.
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. A mass food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
1: अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बहुत बड़े फैन हैं तो ऑफ कोर्स आप मायूस होंगे अभी, बिकॉज इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप के अलावा, जी हाँ, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए वो, बस यही उनको फील होगा. अगर जिसको नहीं पता है तो जस्ट लेटिंग यू नो दैट उन्होंने डिक्लेयर किया है, नहीं किया है, बट यस, अबाउट टू गेट रिटायर्ड कम्प्लीटली फ्रॉम फुटबॉल वर्ल्ड. जी हाँ, फुटबॉल फैंस के लिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट हो चुका है. सबसे बड़े फुटबॉल स्टार्स में से एक गिने जाते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो. उन्होंने कंफर्म किया है कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा. सालों तक अपनी स्पीड, गोल्स और विनिंग एटीट्यूड से फैंस का दिल जीतते आए हैं. रोनाल्डो ने कहा है कि उन्होंने अपने देश पोर्चुगल के लिए सब कुछ दिया है और इस सफर को काफी प्राउड के साथ वो याद भी रखेंगे. 41 के हो चुके हैं वो. उन्होंने वर्ल्ड कप स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस किया है. रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जर्नी सिर्फ ट्रॉफीज और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है, बल्कि उनकी जो हार्ड वर्क है, डेडिकेशन और पैशन है, वो भी बहुत ही मिसाल के तौर पर है. दुनिया भर के फैंस के लिए उन्हें आखिरी बार वर्ल्ड कप में देखना एक इमोशनल फेवर हो सकता है, या फिर है एक ऐसा प्लेयर जिसने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया. अब अपने फुटबॉल के इस खास चैप्टर को अलविदा कहने की बारी आ चुकी है. जी हाँ, बट यस, आई एम एक्चुअली वेटिंग कि कब उनकी फिल्म आए और मैं उस फिल्म को देखूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ रोनाल्डो का.

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
4: Right now, in midwinter with ills, chills, the short week and school holidays kicking in, many of NZ Blood's regular donors are out of the game. So if you can, please make time to give blood this week. The team would really appreciate your donation. Come off the bench and make a real impact. Your donation of blood could help save up to 3 lives. Bloody legend. Give blood, save lives. Book now at nzblood.co.nz.
5: Big barrel, big range, bigger deals. Single Peak range, excluding Pinot Noir, $11.99. Mission Estate wine range, excluding Pinot Noir, $14.99. And Bottega Gold, White Gold, or Rhodes Gold Prosecco, $14.99. In store or online.
6: Big barrel, big range, bigger deals.
7: Big barrel, you local liquor store.
8: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
9: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
10: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2MONTHS. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
11: Feed the faith with the 1NZ Warriors range, exclusively at Wendy's. Try the new signature burgers, salted caramel frosty and cookie dough bites. Order on the Wendy's NZ app to win weekly prizes and lunch with the players. Only at Wendy's. T's and C's apply.
12: Non-stop Bollywood.
13: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
12: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
14: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.
12: इसके पीछे
13: हम.
12: Tech Talk.
15: Well, gamers के लिए एक बड़ी खबर लेके आया हूँ मैं Tech Talk में. Sony ने अनाउंस किया है कि जनवरी 2028 से PlayStation के नए गेम्स फिजिकल डिस्क में नहीं आएंगे. मतलब कि फ्यूचर में गेम्स सिर्फ डिजिटल डाउनलोड के थ्रू ही मिलेंगे. कंपनी का कहना है कि आजकल ज्यादा गेमर्स ऑनलाइन गेम्स डाउनलोड करना पसंद करते हैं, इसीलिए ये बदलाव किया जा रहा है. हाँ, जो गेम्स 2028 से पहले डिस्क फॉर्मेट में रिलीज हो चुके हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होने वाला. लेकिन इस अनाउंसमेंट से उसके बाद गेमिंग कम्युनिटी दो हिस्सों में बट सकती है. कुछ लोग डिजिटल कन्वीनियंस के कन्वीनियंस को पसंद कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि फिजिकल डिस्क कलेक्ट करने का मजा ही अलग है और उनसे ओनरशिप का एहसास भी जुड़ा होता है. देखना होगा कि गेमिंग की दुनिया का ये डिजिटल फ्यूचर प्लेयर्स कितनी आसानी से अपनाते हैं. आप ऐसे किस में हो? लाइक यू नो, यू आर फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप जो हु लव्स टू कलेक्ट द फिजिकल कॉपी, या फिर यू आर फ्रॉम दैट हु वुड बी ओके टू हैव द गेम्स विथ यू नो ऑनलाइन फ्रॉम ऑनलाइन. मैं अपने आप को अगर बताऊं तो मैं एक्चुअली यू नो आई एम, मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट कलेक्ट करने का शौक मुझे पहले भी था, बट नाउ इट इज मोर लाइक आई एम एंजॉइंग द ऑनलाइन गेम्स, लाइक ऑनलाइन डाउनलोड करने. तो मैं अपने आप को बीच में कहूंगा, लाइक यू नो ना तो मुझे ज्यादा इफेक्ट करेगा कि फिजिकल कॉपीज नहीं. बस एक दिक्कत है कि हमें जिस तरह से गेम्स डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाते हैं वो शायद उसका उसे मिस कर सकते हैं हम, क्योंकि ऑनलाइन का ये होता है दैट दे यूजली डोंट गिव इट ऑन डिस्काउंट. बट जो फिजिकल कॉपीज होती है उसको कोई कोई शॉप्स स्पेशल प्राइस पे भी रखती है, तो ये चीज तो डेफिनेटली हम मिस करने वाले हैं.

एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. बहुत ही बढ़िया रहा आपसे बातें करके. आपके जो मैसेजेस मिले हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने मुझे सुना है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. आप बस कहीं मत जाइए, बने रहिए. अभी थोड़ी देर में सैंडी विल बी ज्वाइनिंग फॉर कॉफी ब्रेक, और उसके बाद रोज भी उनका साथ देंगे इन द ड्राइव शो. बट यस, एज आई ऑलवेज मेंशन कि एज आई ऑलवेज टेल यू कि मेक श्योर आप फ्री टाइम में इंस्टेड ऑफ जस्ट स्क्रोलिंग योर इंस्टाग्राम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक यू शुडन्ट बी डूइंग दैट, बट ट्राई टू फोकस मोर ऑन हाउ यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ, हाउ यू कैन अपडेट योर सेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ AI. काफ़ी ऐसे टूल्स आ चुके हैं, काफ़ी ऐसे फीचर्स आ चुके हैं, इनफैक्ट ऐसी फिजिकल चीज़ें भी आ चुकी हैं जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है. आपकी जो आपका जो यू नो रेगुलर जो काम है, चाहे ऑफिस हो या घर का हो, उस प्रोडक्टिविटी को कितना ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है AI, यू एक्चुअली डोंट नो. तो वही मैं कहता हूँ, डोंट बी स्केर्ड ऑफ AI. इट्स जस्ट दैट ट्राई टू बी फ्रेंड, ट्राई टू मेक AI एज फ्रेंड. और वो तभी हो सकता है व्हेन यू नो आपके बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा इफ यू कैन टेक आउट द टाइम एंड देन स्टार्ट लर्निंग. मे बी आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑल्सो अगर आप 15 मिनट का भी सुनेंगे, 15 मिनट का भी टाइम आप AI को अंडरस्टैंड करने के ऊपर देंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, प्लस आपकी आदत भी हो जाएगी. एंड आप अपने आप को खुद देखना कि बिफोर AI एंड आफ्टर AI कितना डिफरेंस था. बढ़िया, उसी के साथ अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे जो पॉडकास्ट है वो भी आप सुनिए. 5599 पे ड्राइव लिख के हमें भेज दीजिए ताकि हमारा जो AI वाला पॉडकास्ट है वो आप तक पहुंच जाए. जी हाँ, और उसी के थ्रू आप हमें सुन सकते हैं यू नो वाइल यू वर्किंग और वाइल वॉकिंग, वाइल स्पेंडिंग सम टाइम, या फिर वाइल रिलैक्सिंग एज वेल. रो ऐप के जरिए भी आप वो सुन सकते हैं. रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट. देर इज नो कॉस्ट फॉर दैट. बट येस, जस्ट टू गिव यू कितना डेटा यूज होगा. आप एक स्टोरी डालते हैं 20 सेकंड की, इज इक्विवेलेंट टू 1 hour ऑफ लिसनिंग टू अस थ्रू रो ऐप. तो इट इज हाई टाइम फॉर यू टू लिसन टू अस ऑन रो ऐप, बिकॉज वो तो आप कहीं पे भी ट्रैवल करो, डजंट मैटर इफ यू आर इन द सेम टाउन और इफ यू आर इन द सेम कंट्री. अगर आप बाहर भी हैं, किसी भी कोने में दुनिया के, आप हमें सुन सकते हैं. बट चलिए, निकलता हूँ मैं, और मेरी मुलाकात होगी कल आपसे सेम टाइम इस हफ्ते के आखिरी दिन में. जी हाँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों

0: have. With Spark Satellite, the best coverage just got better. Go to Spark to find out more. As ordered by Open Signal, requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.
1: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
2: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Afternoon, KM Adams here with the latest at 3. The Reserve Bank has hiked the official cash rate for the first time in 3 years. It's up 25 basis points to 2.5%. Finance Minister Nicola Willis says many banks would have already anticipated the increase.
4: And that's been reflected in the longer term rates that they have been setting. So in some senses, this isn't a surprise that you would expect to see leading to a significant market reaction.
3: Labor insists its pre-election solar policy goes further than National's. Both parties are proposing loan schemes to help households install solar if elected. Energy spokesperson Megan Woods says Labor's package also includes loans through line companies and a $30 million community battery fund.
5: These really do have the ability to take peaks off and to store for those times when the grid does go down and you need to be getting power to communities.
3: Kaikoura residents who self-evacuated during intense rainfall are now allowed back home. The district council says floodwaters are receding and those who weren't officially asked to leave can return if their property has not been damaged. Police have issued a stark reminder about the dangers of walking along the Waikato Expressway. It follows reports of a person in dark clothing crossing multiple lanes of the highway on foot last night. Four Black Cap white ball specialists have agreed to casual contracts with New Zealand cricket. Top order batters Finn Allen and Tim Seffert and pace bowlers Lockie Ferguson and Adam Milne. And football updates brought to you by Hisense. It wouldn't be a World Cup without losing coaches having a verbal spray. Egypt coach Hossam Hassan claims his side, beaten 3-2 by Argentina, was cheated by officials and went on to suggest that perhaps they wanted Lionel Messi to stay.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
6: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 14.9 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 8 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम आज का सनी ब्राइट गुड डे है आउट देयर. सनसेट आज का 5:20 पर.
2: द बीट ऑफ बॉलीवुड
7: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
6: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए यहाँ पे शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी. अभी से लेकर 4 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा कॉफी ब्रेक में. और 4 बजे के बाद मेरा साथ यहाँ पे रुजबे के साथ हो जाएगा इन द ड्राइव शो. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? हाउ इज इट गोइंग सो फार? हमारा नया पॉडकास्ट भी वैसे बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है. एक बहुत ही डिफरेंट एक ऐसा टॉपिक है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जिसके बारे में वाइल ग्रोइंग अप वी हैड लॉट ऑफ मिथ्स. मतलब हमारे जहन में बहुत सारी गलत फहमियाँ थी इस कॉन्सेप्ट के बारे में. इस टैग एक्चुअली में हमने सोसाइटी में ये दिया हुआ था एंड इसी के बारे में द पर्सन हुई बिलोंग टू दिस, उनसे हमारी बातें हुई हैं. सो इट्स गोना बी अनदर वेरी वेरी अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन इनके साथ. तो इसके लिए भी इंतज़ार कीजिएगा. बट फॉर नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ लिसन टू द करंट पॉडकास्ट जो हमने एआई के ऊपर किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर. सो इसके अलावा और भी बहुत कुछ है. कॉम्पिटिशन्स भी है आपके सुपर सिटी में. जो जो हो रहा है इसके बारे में भी बातें करेंगे. जो इवेंट्स आने वाले दिनों में होने वाले हैं इसके बारे में भी शेयर करूँगी. स्टे ट्यून्ड.

0: calm because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बातें करते हैं तो आज के मैचेस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे, कमाल के मैच थे। आज अर्जेंटीना की जीत हुई 3-2 के साथ इजिप्ट से, एंड मैं तो चाहती थी अर्जेंटीना आगे जाए, सो देयर यू गो, आगे गया है। एंड आज जो बाकी मैच हुए स्विट्जरलैंड कोलंबिया के बीच में वॉज वेरी इंटरेस्टिंग मैच, पेनल्टीज तक ये मैच पहुंचा। स्विट्जरलैंड ने पहले लीड किया एंड देन कोलंबिया ने फाइट बैक किया, बट देन इवेंचुअली स्विट्जरलैंड गॉट दिस मैच 4-3 के साथ। स्विट्जरलैंड की इसमें जीत हुई, मेरी प्रेडिक्शन थी कि कोलंबिया जीतेगा, बट या इसमें पेनल्टीज में स्विट्जरलैंड जीता है। एंड अभी जो आगे क्वार्टर फाइनल्स हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। क्वार्टर फाइनल्स होंगे जो 10 जुलाई से शुरू हो जाएंगे, हमारे लॉन्ग वीकेंड पे आप एक्चुअली में इंजॉय कर सकते हैं। फ्रांस वर्सेस मोरक्को के बीच में, देन स्पेन वर्सेस बेल्जियम के बीच, नॉर्वे एंड इंग्लैंड के बीच में मैच रहेगा, एंड अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच में मैच रहने वाला है। क्या प्रेडिक्शन है आपकी, क्या लगता है कौन सी टीम्स आगे जाने वाली है? फ्रांस एंड मोरक्को के बीच में मुझे लगता है कि इट्स अ फ्रांस। स्पेन एंड बेल्जियम के बीच में, स्पेन भी अच्छा खेल रहा है बहुत, लेकिन मेरे को बेल्जियम बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इस समय लग रहा है। देन नॉर्वे इंग्लैंड के बीच में आई थिंक इट्स इंग्लैंड। अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड के बीच में आई थिंक इट्स अर्जेंटीना। सो माय टीम फॉर सेमीफाइनल्स प्रेडिक्शन इज फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना। लेट्स सी कितना सही रहता है। अगर आपको ऐसा प्रेडिक्ट करना हो इन टीम्स में से सेमीफाइनल्स में कौन सी टीम्स जाने वाली है, आपकी प्रेडिक्शन क्या रहेगी, 5599 पर मैसेज करके आप भी शेयर कर सकते हैं।
1: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स। गूगल PFSL टुडे, अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। विजिट indelibleHomes.co.nz.
2: Hollywood's most wanted.
3: Gundi khad rao ya seedha andar aao.
4: Main laun apna A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 26 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। OCR के बारे में जो न्यूज आई है, OCR हाइक्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन ईयर्स। फर्दर रेट जो है ये आगे जाके राइज होने वाले है। द रिजर्व बैंक, इन्होंने डिलीवर किया है OCR डिसीजन दिस आफ्टरनून एंड कन्फर्म किया है टू बी हाइक, दैट्स अ फर्स्ट इन 3 years। सो वेल, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस एंड काफ़ी डिबेट्स जो है ये डेफिनेटली हो रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन फॉर एवरी डे जो हम यहाँ पे रहते हैं, स्पेशली होम ओनर्स के लिए? अ रेट राइज कुड मीन हायर मोर्गेज रीपेमेंट, स्पेशली फॉर पीपल कमिंग ऑफ फिक्स टर्म लोन्स। सो जो बोरोअर्स है, दे मे नीड टू रिव्यू द बजट एंड प्रिपेयर फॉर द पॉसिबल इंक्रीजेज एज वेल। सेवर्स को भी इफेक्ट करता है, बिकॉज हायर इंटरेस्ट रेट कैन मीन बेटर रिटर्न्स ऑन सेविंग्स अकाउंट्स एंड टर्म डिपॉजिट। फॉर बिजनेसेस, जो हायर बोरिंग कॉस्ट होती है कुड अफेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीशंस, हायरिंग एंड एक्सपेंशन प्लान्स एज वेल। सो जो OCR डिसीजन है ये मैटर करता है, बिकॉज इवन अ स्मॉल चेंज जो है रिजर्व बैंक की, ये इन्फ्लुएंस कर सकती है थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड बजट्स अक्रॉस द कंट्री। सो Reserve Bank has everyone refreshing their banking apps today as well, because a tiny number change can mean hundreds of dollars difference for some mortgage holders as well. Well, आपका इसके ऊपर क्या टेक है, आप भी उसके ऊपर ज़रूर शेयर कर सकते हैं 5599 पर या फिर 0800 00 हम इस पर कॉल करके भी।
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम

3:30 हो चुके हैं इस समय पर, आप कॉफी ब्रेक यहाँ पे सुन रहे हैं। वैसे अगर आपने मिस आउट किया है OCR रेट के बारे में, कितना इंक्रीज हुआ है, द रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड इन्होंने OCR जो है इंक्रीज किया है बाय 0.25% टू 2.50%, जिसमें इन्होंने सिग्नल किया है कि मोर रेट राइजेस कुड फॉलो बिकॉज दे आर वर्किंग टू ब्रिंग इन्फ्लेशन बैक टू 2%, और ये टारगेट है इनका मिड 2027 के लिए।

कॉफी ब्रेक फिलहाल यहाँ पे आप सुन रहे हैं और आर्टिकल आया है सतलुज मूवी प्रीवियसली नेम्ड पंजाब 95। वैसे इस मूवी के ओवरसीज डाउनलोड्स जो है ये सर्ज किए हैं 374%। वाओ, ये एक्चुअली में मूवी फिलहाल तो इंडिया में बैन हो चुकी है, विद इन 48 आवर्स इस मूवी को निकालिया Z5 से, बट ओवरसीज में फॉर नाउ अवेलेबल है। और मैंने कल ही एक जगह पे वीडियो देखी जहाँ पर उन्होंने बोला है कि मे बी 7 डेज के लिए अवेलेबल है, उसके बाद शायद ओवरसीज से भी ये मूवी निकल जाएगी, पर लेट्स सी क्या होता है। बट इतना ज़्यादा सर्च हुआ है इस मूवी का बिकॉज मोर पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन पहली मूवी नहीं है जिसे रिलीज़ करने के बाद बैन किया गया है, ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत सारी और मूवीज़ के साथ भी हुआ है। इनफैक्ट मेरे पास लिस्ट है, ये आंधी मूवी आई थी जो कि 1975 में आई थी। सो आंधी को, ये मूवी को थिएटर में रिलीज़ किया गया था लेकिन थिएटर से ही इस मूवी को विदड्रॉ कर दिया गया था बिकॉज ड्यूरिंग द एमरजेंसी, बिकॉज अपेरेंटली उसमें जो एक करेक्टर है उसकी रिजेम्बलेंस उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंडिया की इंदिरा गांधी, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस थी, तो इसके कारण इस मूवी को विदड्रॉ कर दिया गया था थिएटर से। देन देयर वॉज अनदर मूवी बैंडेड क्वीन, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को पता ही होगा, 1994 में आई थी। इस मूवी को भी काफ़ी लीगल चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था जिस वजह से इसमें कंटेंट था फूलन देवी का, तो दिस मूवी हैड टू बी पुल्ड आउट ऑफ सिनेमाज आफ्टर द कोर्ट हियरिंग। देन देयर वाज अनदर मूवी, तमिल मूवी, इसका नाम है ओरे ओरू ग्रामेथिले, मैं नाम शायद सही से नहीं बोल पा रही हूँ। ये मूवी बहुत कंट्रोवर्सी में रही थी बिकॉज इस मूवी में रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया इसको पोर्ट्रे किया गया था। तो मूवी का नाम है ओरे ओरू ग्रामेथिले, 1987 की मूवी है। इस मूवी को भी बैन किया गया था फॉर सम टाइम बट वॉज अल्टीमेटली रिलीज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देन देयर वॉज अनदर मूवी द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, इसे प्रोड्यूस किया गया था इन 1988। इसे काफ़ी ऑपोजिशन मिला था फ्रॉम क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड, सो मूवी को विड्रॉ कर दिया गया था थिएटर से इन मैनी कंट्रीज वाइल इट वॉज बैंड ऑन अकाउंट ऑफ बींग ऑफेंसिव फॉर द रिलीजन बेस पे। देन देयर वॉज अनदर मूवी जिसे बैन किया गया था जिसका नाम है द इंटरव्यू, 2014 की ये मूवी रिलीज थी। सो इंटरव्यू वॉज टेकन ऑफ स्क्रीन्स इन US बिकॉज ऑफ साइबर अटैक एंड सिक्योरिटी थ्रेट जो कि एसोसिएटेड थे नॉर्थ कोरिया के साथ। सो बाद में इसको OTT पे रिलीज भी किया गया है। द विंची कोड 2006, इस मूवी के बारे में काफ़ी लोगों को पता है, इट फेस अ प्रोसेस्ट फ्रॉम सेवरल ग्रुप्स बिकॉज रिलीजियस थीम्स को लेके। देन देयर वॉज अनदर मूवी साइलेंट नाइट डेडली नाइट जो कि 1984 में आई थी, जहाँ पे आउटरेज था फॉर पोर्ट्रेइंग अ किलर ड्रेस्ड एज सेंटा क्लॉस। सो मैनी मूवीज डिड फेस्ड इट, ऐसा हुआ है एंड कि बाद में पब्लिक ने उन मूवीज़ को बाद में जाके देखा है और एक्स्ट्रा ही बाद में प्यार दिया है। सो वेल फॉर नाउ तो सतलुज आपके लिए अवेलेबल है ऑन Z5 OTT प्लेटफॉर्म पे, बट या इसका डाउनलोड बहुत ज़्यादा सर्ज हुआ है। जो मैंने मूवीज़ की लिस्ट बोली आपके लिए, बैंड मूवीज़ की लिस्ट बोली है, इसमें से कौन सी मूवी है जो आपने देखी है? मुझे लगता है मैंने आंधी शायद देखी है, पापा ने एक बार तो ये मूवी लगाई हुई थी और मैंने शायद से ये देखी है, YouTube पे है ये मूवी, सो मे बी आई हैव सीन दिस मूवी, बट इनमें से या बैंडेड क्वीन मुझे याद नहीं है, बट बाकी इनमें से मैंने कोई मूवी अभी तक तो नहीं देखी है। आपने इस लिस्ट में से कोई मूवी देखी है तो मैसेज करके बता सकते हैं 5599 पर।

कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में मेरा साथ यहाँ पे रुजबे के साथ हो जाएगा 4 बजे के बाद ड्राइव शो में। अगर हमारे साथ आप बाली बैंकॉक के ट्रिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल आज काफी कमाल, ब्यूटीफुल डे इन आवर सुपर सिटी. कल लेकिन अब बारिश और तेज हवाएं होने की संभावना है, अभी के लिए वो प्रेडिक्शंस दिखा रहे हैं. 5:20 पे आज होगा सनसेट, फील्स लाइक 8 होने वाला है आज ओवरनाइट, मतलब इट्स गोना गेट रियली लो. अभी फील्स लाइक 14 है.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Drive Show with Sandy and Rusby.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: 4:02 हुए हैं. गुड आफ्टरनून, यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे ऑन 8th ऑफ जुलाई. हाय सैंडी, गुड आफ्टरनून.
4: गुड आफ्टरनून रुस्बे, कैसे हो तुम?
1: मैं बढ़िया हूँ सैंडी, आप कैसे हो?
4: एकदम फर्स्ट क्लास है. यार ड्राइव शो शुरू हो चुका है और इस सावर में हम बात करेंगे. अगर आप आने वाले दिनों में घर खरीदने वाले हैं, आपको एक एडवाइस चाहिए, तो इसके रिलेटेड आपसे हम बात करेंगे. हम किसी से बात करेंगे?
1: जी, हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा क्योंकि बहुत जल्द उनसे बात होगी इस घंटे में.
4: ब्लेस यू रुस्बे.
1: एक्सक्यूज मी, सॉरी.
4: इट इज ओके.
1: ऐसा होता है, मतलब बहुत रेयरली होता है बट होता है ऐसा. मतलब मैं आइडियली ऐसे रोक सकते हैं, छींक जब आपको आती है तब आप रोक सकते हो, लेकिन जब भी मैं वैसे करता हूँ मुझे फिर सर्दी हो जाती है.
4: वो ये तुमने एक्सपीरियंस किया?
1: हाँ, इसलिए मैं अभी कभी रोकता ही नहीं हूँ. मेरी छींक, जो भी छींक आ रही है, आई हैव टू
4: निकल जाने दो.
1: आई हैव टू स्नीज, या अदरवाइज इट इरिटेट्स मी.
4: इट्स नॉट इवन हेल्दी ना स्नीज को रोकना.
1: या इट्स नॉट हेल्दी,
4: ऐसा बोला जाता है. ऑल्सो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे बिकॉज लिस्ट आई है दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटीज फॉर 2026.
1: मोस्ट लिवेबल सिटीज,
4: या क्या लगता है इस लिस्ट में न्यूजीलैंड की कोई सिटी होगी? अगर होगी तो किस रैंक पे होगी?
1: आपको मतलब है न्यूजीलैंड की कोई सिटी है इसमें?
4: मैं पूछ रही हूँ.
1: ओके, लेट्स मेक आवर लिस्ट.
4: टॉप 10 में डू यू थिंक न्यूजीलैंड विल बी देयर?
1: लेट्स मेक आवर लिस्ट ना, हमारे लिसनर का लिस्ट बनाते ना. 0800 004866. अभी के अभी दूध का दूध पानी का पानी कर लेते. व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ 2026?
4: दुनिया की
1: मोस्ट लिवेबल सिटी आपको क्या लगती है कौन सी है? मेरा वोट जाता है ऑकलैंड को.

0: तुम्हें लगता है
1: क्योंकि
0: कि
1: मैं ऑकलैंड में ही रहा हूँ ना मेरे लिए तो लिवेबल है भाई। हाँ थोड़े बहुत कोन जोन्स और ये सब वो तो हर जगह होंगे कुछ ना कुछ नाटक
0: यार, कौन सी है ना वो तो पार कर लेंगे।
1: लेकिन हाँ मैं मोस्ट लिवेबल क्योंकि मेरे को, मैं तो खुश हूँ भाई मैं जहाँ पे हूँ। आप बताइए अभी, नो प्रेशर, 0800-004-866।
0: और मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि न्यूजीलैंड की कोई सिटी इस लिस्ट में है या नहीं है, क्या लगता है आपको?
1: आपका आपका मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सा है सैंडी?
0: मोस्ट लिवेबल सिटी
1: ऑफ 2026, व्हाट डू यू थिंक इट इज, लाइक डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर यू हैव सीन अक्रॉस, आपने सोशल मीडिया पे कुछ देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा।
0: मुझे लगता है कि मेलबर्न
1: आपके हिसाब से ना, मेरे को भी लगा था कि मेलबर्न रहेगा लिस्ट में।
0: लिस्ट का तो नहीं मैं हिसाब से बोल रही, मैं वैसे खुद के हिसाब से बोल रही हूँ कि मोस्ट लिवेबल मुझे लग रहा है कि मेलबर्न है, फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग वो सब चीज़ों को देखा जाए तो, बिकॉज लिवेबल इसलिए कि हाउ कन्वीनियंट, लाइक कन्वीनियंस आपको कितनी होती है।
1: अच्छा, तो मेलबर्न कन्वीनियंट है आप बोलते हो?
0: मुझे ऐसा लगा है।
1: देखो दो दिन के लिए IIFM कवर करने के लिए जा रहे हो, जहाँ कंपनी सारा खर्चा पे कर रहा है, वहाँ पे तो सब कन्वीनियंट ही लगता है ना सैंडी।
0: मोर ओवर क्या होता है कि जब आप घूमने के लिए कहीं पे जाते हो तब आप एग्जैक्टली जज नहीं कर पाते हो।
1: लेकिन हमारे मेलबर्न के लिसनर्स है कुछ जो हमें सुनते हैं
0: जो यहाँ से उधर गए हैं।
1: आप बताइए कॉल करके, डू यू थिंक मेलबर्न इज मोस्ट लिवेबल फॉर 2026 और
0: दुबई में जो फैसिलिटीज है एंड एवरीथिंग, हर चीज आपको अवेलेबल है वहाँ पे तो हाउस हेल्प भी आपको अवेलेबल है।
1: वो हाउस हेल्प भी मिलता है वहाँ पे?
0: या वहाँ पे मतलब यू जस्ट नेम इट एंड यू विल गेट इट। वहाँ पे ऐसा फूड डिलीवरी, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पूरी ग्रोसरीज में से एक ही चीज चाहिए वो भी 5-10 मिनट में तुम्हारे पास आ जाएगी घर पे, तो मतलब वो फैसिलिटीज भी है, तो वो दुबई भी कह सकते हो।
1: दुबई आप बोल रहे हो?
0: Yeah, that's another one. So, nice. आप भी बताइए 5599 पर या फिर कॉल करके 0800 हम पर, मतलब
1: any voters for Hamilton?
0: Yeah, Hamilton ये अपना न्यूजीलैंड में ना,
1: न्यूजीलैंड का Hamilton यार, हाँ हाँ
0: Hamilton के लिए कितनी वोट है?
1: Any voters for Wellington?
0: Wellington के लिए I don't think Queenstown के लिए आने वाली है, महंगा है वो।
1: क्यों? लेकिन most livable तो हो ही सकता है ना।
0: Yeah.
1: आसपास में सब कुछ, आप सोचो ना अगर आपका वहां से काम है। यार मजा की लाइफ है वैसे, क्वींसटाउन
0: मजा की लाइफ है। शेयर कीजिए 0800 हम पर कोई कॉल करके यहाँ पे या फिर मैसेज करके 5599 पर, एंड व्हाट डू यू थिंक इस टॉप 10 लिस्ट में न्यूजीलैंड है या नहीं है।
2: हेलो बोलो। हेलो दादाजी।
3: हेलो।
2: अरे वाह, फोकस कर रहे हैं, वेरी गुड। क्या सीन है भाई, कुड़ी पसंद तो नहीं आ गई?
1: हेलो, आप सुन रहे हैं हम, वैसे हमारे साथ यहाँ पे हमारे एक लिसनर शामिल हुए हैं अक्रॉस द डिच से। हाय, आपका स्वागत है ऑन एयर।
4: हाय रुस भाई, अंकित है।
1: हाय अंकित।
0: हाय, कहाँ से?
1: अंकित फ्रॉम मेलबर्न।
4: यस।
0: अरे वाह, लगा ही था कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ सुन रहा होगा। बताइए क्या आपको लगता है मेलबर्न इज वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल?
4: अभी
1: 2026
4: के लिए,
1: yes,
4: correct. अभी
1: 2026 के लिए, yes. 2025
4: में ऑकलैंड से मूव हुआ हूँ,
1: हाँ.
4: और काफी अच्छा स्कोप है।
1: अच्छा, तो 2026 के लिए आप बोलते हो कि मेलबर्न इज मोर लिवेबल देन ऑकलैंड?
4: यस।
1: ऐसा और तीन चीजें क्या है दैट मेक्स इट मोर लिवेबल, मतलब गिव अस थ्री, टॉप थ्री थिंग्स।
4: फर्स्ट इज मनी। You can earn more money. If you work 40 hours in New Zealand, you work 40 hours over here. So you're gonna, at least your difference is $800 to $900 ka aata hai.
0: Okay.
4: Which is a really big difference.
1: Achha hai, haan, kaafi difference
4: ho jata hai. Per week ka, theek hai. Toh, plus, baaki chari saari cheeze kaafi sasti hai, jaise electricity.
1: Oh, electricity sasti ho
4: jata hai. Hamara bill, yes, yeah. Auckland mein bill aata tha $350.
0: आ रहे अभी लोगों का
4: विद अ फैमिली ऑफ फोर। हां, और अभी यहां है $150, $180।
1: ओ,
4: तो खर्चे कम है।
1: बट वेदर कैसा है, मतलब अभी वहां पे वेदर क्या है आज?
4: वेदर में आज सनी है, 13 डिग्री टेम्परेचर है, और ठंड जरूर है, ये जरूर कहूंगा।
0: मतलब आज के ऑकलैंड जैसा वेदर है,
1: विंडी भी है ना थोड़ा सा।
4: हाँ, आज ऑकलैंड जैसा थोड़ा विंडी है, ठीक है, ऑकलैंड जैसा वेदर है।
1: नहीं, ऑकलैंड बहुत ब्यूटीफुल वेदर है आज ऑकलैंड
0: आज के लिए।
1: नहीं नहीं, बट या
0: ओके,
1: थैंक्स अंकित यार, थैंक्स फॉर शेयरिंग। एक और कुछ बाकी था ना, दो रीजन हो गए, थर्ड रीजन
4: मेडिकल मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है।
1: अच्छा,
0: ओके,
1: दैट इज अ बिग विनर।
4: पब्लिक हेल्थ सेक्टर में वेटिंग कम है ऑकलैंड में, अगर 6 महीने की वेटिंग है तो यहाँ 3.5 से 3 महीने की वेटिंग में हो जाता है।
1: ओह, क्या बात है,
0: नाइस। तो अंकित, आप कितने समय से हम सुन रहे हैं?
4: मैं स्टार्टिंग से सुन रहा हूँ,
0: जब से ऑकलैंड में आप
1: जो भी बोलो यार, ठीक है, मेलबर्न में पब्लिक हेल्थ अच्छा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है,
0: हम तो नहीं है
4: है ना, मैं तो सुन ही रहा हूँ ना,
0: ये तो है। देखो, रोवा के जरिए अभी वो सुन रहे हैं, तो
1: उनका एक्चुअली वो लगा हुआ न्यूजीलैंड को लेकर भी ना, उनको ऐसा थोड़ा लगना है कि भाई न्यूजीलैंड में भी क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत थोड़ा ऐसा एक दो एड सुन के भी ऐसा लगता होगा ना कि अरे ये अभी भी सुन रहे हैं, ये अभी भी चल रही है,
0: ये बिजनेस है अभी।
4: यस,
0: सही है।
4: दूसरा, यहाँ पे इतना कोई खास हिंदी रेडियो स्टेशन नहीं है,
1: खास, ठीक है,
0: या प्रोमिनेंट ऐसा कोई नहीं है जैसे यहाँ पे,
1: यहाँ पे सिर्फ स्लॉटेड आवर्स है, मतलब कुछ आवर्स के लिए कुछ कहीं पे हिंदी गाने,
0: वो रिसर्च हम करके आ गए अंकित,
1: इसलिए तो नहीं आ पाए ना वहाँ पे।
4: हम एफएम को थोड़ा यहाँ पे भी होना चाहिए,
1: हम पहले यही तो ढंग का काम कर ले,
0: अभी तो यही भी हमारी फ्रिक्वेंसी के पंखे पड़े रहते हैं,
1: पहले यही ढंग का काम कर लेते फिर ऑस्ट्रेलिया जाने का सोचते। नहीं अंकित, थैंक्स यार, थैंक्स फॉर योर कॉल मैन,
0: बट थैंक्स फॉर कॉलिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस,
4: थैंक्स
0: गाइस, बाय,
1: एंजॉय, हैव अ गुड डे। अच्छा चलो, गाना सुनते अभी।
2: हेलो दादाजी।
3: हेलो।
2: अरे वाह, फोकस कर रहे हैं, वेरी गुड। क्या सीन है भाई, कुड़ी पसंद तो नहीं आ गई?

0: मैं वापस आऊंगा से सुन रहे थे आप मोहित चौहान की आवाज में ये सुपरहिट गाना जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है.
1: Yeah,
0: it's got a different kind of vibe altogether. मतलब multiple
1: vibes. This
0: Imtiaz Ali plus A.R. Rahman vibe.
1: Plus A.R. Rahman. तो मुझे लगता है Imtiaz Ali A.R. Rahman के combination के जितनी movies हैं हर जगह पे ऐसा गाना है.
0: इस पर हटके गाना होता ही है. Anyway, अभी time आ गया है आप Sandy share करने वाली हमारे साथ most livable city of 2026.
1: Most livable cities of 2026. So मैं start करती हूँ list number 10 से. टॉप 10 बताने वाली हूँ मैं. ठीक है, नंबर 10 पे जो सिटी है वो है टोक्यो जापान में. ठीक है, नंबर 9 पे है वैंकूवर.
0: अगर नंबर 10 पे टोक्यो है मतलब टोक्यो तो भाई फुल हाईटेक वाईटेक सब है. मतलब अभी मेरे दोस्त बोल रहे थे कि टोक्यो में ऊपर एक अलग दुनिया है और अंडरग्राउंड उसकी अलग दुनिया चल रही है.
1: ओ वाओ.
0: क्योंकि सारे मेट्रो मतलब जो उनकी ट्रेन्स है मेट्रोज और वो सब वो पूरे अंडरग्राउंड चलती है ना.
1: वहाँ पे ये जो लिस्ट है ना मैं बताऊँ ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इन्होंने क्रिएट किया. इनका इंडेक्स है. इन्होंने 173 सिटीज को अराउंड द वर्ल्ड असेस किया है जिसमें की फैक्टर्स है स्टेबिलिटी हेल्थ केयर कल्चर एनवायरमेंट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर.
0: अच्छा,
1: ये सब चीजों को लेके देन इन्होंने लिस्ट बनाई है मोस्ट लिवेबल सिटी की. ठीक है, सो नंबर 10 पे टोक्यो जापान, नंबर 9 पे वैंकूवर कनाडा.
0: ओह बेस्ट है, बेस्ट है, वेरी नाइस.
1: नंबर 8 पे एडिलेड ऑस्ट्रेलिया.
0: एडिलेड आई है नंबर 8 पे. ओह माय गॉड.
1: नंबर 7 इज ओसाका जापान.
0: ओसाका
1: जापान. नंबर 6 पे जिनेवा स्विट्जरलैंड. नंबर 5 पे ज्यूरिच स्विट्जरलैंड.
0: अभी नंबर 5 तक आ गए ना हम लोग. मुझे नहीं लगता अभी ऑकलैंड या न्यूजीलैंड का कोई भी शहर वहाँ पे होने वाला है.
1: ऐसा लग रहा है तुम्हें?
0: मुझे नहीं लगता हमारी औकात है टॉप 5 में रहने की.
1: चलो
0: देन लेट्स सी. बट नाउ
1: नंबर 4 पे है सिडनी ऑस्ट्रेलिया.
0: ओह सिडनी नंबर 4 पे आया है.
1: नंबर 3 पे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया.
0: वाओ. Right.
1: Number 2 पे वियना ऑस्ट्रिया.
0: ऑस्ट्रिया ओके.
1: एंड नंबर 1 पे कोपेनहेगन डेनमार्क.
0: कोपेनहेगन नंबर 1 पे
1: डेनमार्क. या टॉप 10 में न्यूजीलैंड की कोई भी सिटी एक्चुअली में इस बार नहीं है. कोपेनहेगन जो है उसको काफी चीजों के लिए उसमें कल्चर बिल्ट है अराउंड साइकिलिंग रिड्यूसिंग ट्रैफिक इनकरेजिंग हेल्थियर लाइफस्टाइल देन स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम है उनका हाई क्वालिटी एजुकेशन ग्रीन स्पेसेस एनवायरमेंट प्लानिंग है वहाँ पे प्रॉपर रिलायबल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेफ्टी स्टेबिलिटी इन सब चीज़ों को लेके भी एक्चुअली में इसके बारे में है. पहले न्यूजीलैंड ने काफ़ी स्ट्रॉन्गली परफॉर्म किया है ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग्स में सिटीज लाइक ऑकलैंड वेलिंगटन क्राइस्टचर्च.
0: हाँ हुआ करते
1: काफ़ी प्रेज किया है फॉर नेचुरल ब्यूटी एक्सेस टू आउटडोर स्पेसेस सेफ्टी लाइफस्टाइल के लिए.
0: वो लोग भी बोर हो गए नेचुरल ब्यूटी की तारीफ कर करके.
1: मतलब लाइफस्टाइल के लिए भी इवन बट रैंकिंग्स जो है इसमें ऑल्सो हाईलाइट चैलेंजेस मेनी रेजिडेंट फील डेली जिसमें हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है तो इन सब फैक्टर्स के कारण फिलहाल ऑकलैंड जो है ये आगे नहीं आ पाई.
0: मेरा एक्चुअली एक दोस्त है कोपेनहेगन में. मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उससे बात करने के लिए और उससे ये जानने के लिए कि डज ही बिकॉज हम जहाँ पे रहते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड ना. तो उससे वो मेरे को जानना है कि इज दिस रियली ट्रू लाइक इज कोपेनहेगन द मोस्ट लिवेबल सिटी. अभी वहाँ पे मैंने टाइम देखा है 6:18 हुए सुबह के. बट फॉर नाउ आपको कुछ मैसेजेस सुनाएंगे और फिर थोड़ी देर में आपके साथ यहाँ पे एक हमारे जो एक्सपर्ट है फाइनेंस रिलेटेड उनसे भी बात कराएंगे आपकी.

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number यार.
3: क्यों? क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
5: Māori Ma, have you received a reminder email or text about your role for this year's election or not sure you're enrolled? Luckily, we still have time. If you're Māori and 18 or over, you get to choose Māori role or general role. There's no right or wrong, just right for you. The role you choose affects who you can vote for to represent you and your roe in Parliament. Find out more at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
7: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
8: Sorry about that.
7: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
8: Kogan Mobile, true Aussie value.
7: Terms and conditions apply.
9: Big barrel, you know, come look at store.
10: Big barrel, big range, bigger deals. Michelob Ultra 12 pack cans, $24.99. Heineken 15 pack bottles, $32.99. And Export 33, 24 pack bottles, $44.99. Plus, join the Mates Club for even bigger exclusive deals.
11: Big barrel, big range, bigger deals.

0: Vishal Mishra ki awaaz along with Kamal Khan. You are listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Sandy, now is the time ke hum yahan pe hamare jo expert hai unse baat karenge. We have Sunil from Squirrel who's joining us, and he's going to share about a lot of things jo hamare first home buyers might be very interested to listen to. Firstly, Sunil, welcome to the show. Kaise ho aap?
1: मैं बढ़िया हूँ सैंडी और उसपे. आई होप आप सब भी ठीक हैं.
0: हाँ, बहुत ही बढ़िया है. अभी आज तो वेदर बढ़िया है, तो आज सही चल रहा है. और
2: 2026 ऐसा लग रहा है कि यू नो, बाहर का टेम्परेचर देख के लोगों को लग रहा है कि यार ऐसी धूप खिली हो अपने घर में तो मजा ही आ जाएगा. तो खुद के घर में ऐसी धूप में बैठने का मजा आएगा.
0: वाह, क्या प्लगइन करते हैं यार सैंडी, कुछ भी बोलो. बट सुनील जी, आज काफ़ी अपडेट्स आए हैं. OCR लास्ट टाइम चेंज नहीं हुआ. नो चेंज था लास्ट टाइम, बट अभी इट्स गॉन अप. वर यू एक्सपेक्टिंग इट टू गो अप?
1: यस, जैसे इन्फ्लेशन और ऑब्वियसली जैसे फ्यूल क्राइसिस चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रही है. तो सूनर और लेटर रिजर्व बैंक को इसके बारे में सोचना था, और वही उन्होंने आज किया.
0: So, अभी दिस चेंजेस अ फ्यू थिंग्स लाइक फॉर फर्स्ट होम बायर्स. अभी जो पहले फर्स्ट होम बायर्स अभी हमारे मार्केट में है, जो कंसिडर कर रहे थे फर्स्ट होम बाय करने के लिए, इज इट स्टिल द राइट टाइम फॉर देम टू बाय देयर फर्स्ट होम?
1: देखिए, फर्स्ट होम बायर के लिए कोई सही या गलत टाइम नहीं होता. सही टाइम वही होता है जब आप फाइनेंशियली और पर्सनली तैयार है. तो इस तैयारी के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूँ जो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं. फर्स्ट होता है आपकी जॉब स्टेबिलिटी. अगर आप एक स्टेबल जॉब में हैं, आपकी इनकम रेगुलर है, तो ये बहुत अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक है एप्लीकेशन का, जो बैंक को अच्छा लगता है. और दूसरा जो है वो है आपका डिपॉजिट. अगर आपका डिपॉजिट 5-10% के बीच है तो वो बैंक को अच्छा लगता है. मोस्टली 5% जेन्युइन सेविंग हो, और ये कीवी सेवर भी इसका पार्ट हो सकता है. जो थर्ड चीज आप कंसिडर कर सकते हैं वो है शॉर्ट टर्म डेट्स. तो अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, या पर्सनल लोन नहीं है, या कार लोन नहीं है, तो आप समझिए कि आप इस बॉक्स को भी टिक करते हैं. और लास्टली सबसे जरूरी है कि आप अपनी बोरिंग कैपेसिटी को समझते हैं या नहीं.
0: राइट, सो लाइक सी, दिस इज रियली गुड इन्फॉर्मेशन फॉर अस. लेकिन एक कोई रियल लाइफ एग्जांपल है जो आप शेयर कर सकते हो, लाइक फ्रॉम योर रीसेंट एप्लीकेशंस और रीसेंट केसेस दैट यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स, सो दैट उनको थोड़ा एक पर्सपेक्टिव मिल जाए, थोड़ा एक और एक रियल एग्जांपल मिल जाए?
1: जी जरूर. अभी रिसेंटली एक हमारे फ्रेंड हैं रियल एस्टेट में, वो काम करते हैं. तो उनके अकाउंटेंट ने अभी अप्रैल में उनके वो उन्होंने भेजे और पूछा कि आप बताइए कि मैं अभी तैयार हूँ कि नहीं. उनको तो लग रहा था कि मुझे वेट करना पड़ेगा एक और साल, पर जब हम उनके फाइनेंशियल रिव्यू किए तो परफेक्ट, एवरीथिंग जो मैंने आपको कंसिडरेशन बताई वो सब टिक हो रही थी. और उनकी एप्लीकेशन हमने 3 बैंक को सबमिट की, और सब बैंक ने बिना क्वेश्चन पूछे अप्रूवल दिए, और उनका सेटलमेंट 23 जुलाई को हो रहा है.
0: Wow. Wow, that's amazing, yeah. So, so basically you're saying कि for someone who is right now in that stage जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि यार अभी तो मैं कहाँ पे ready हूँ, अभी तो मुझे और बहुत time की ज़रूरत है, maybe it's a good time to have a chat with you and see कि actually में उनका real status क्या है in terms of you know getting onto that journey.
1: Yes, वही मैं बात करना चाहता हूँ. अगर आपको लगता है as a customer कि आप ready हो, या आप इस बारे में सोचना स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप हमें जरूर कॉल कीजिए. हम आपको बताएंगे कि आप एट द मोमेंट कहाँ स्टैंड करते हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका सपना है उसके आप और पास आ सकें.
0: That's awesome, Sunil. Thank you so much. ये थे सुनील चंद्रा, मॉर्गेज एडवाइजर, जो स्क्विरल में काम करते हैं. स्क्विरल से हमारे साथ यहाँ पे जुड़ते हैं. इफ़ यू वॉन्ट गेट इन टच विद हिम, यू कैन गिव हिम अ कॉल डायरेक्टली. आपके आपके मोबाइल नंबर है 0275337745, या फिर आप squirrel.co.nz पे जाके विजिट कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन देयर एज वेल. सुनील, एनीथिंग एल्स यू वुड वॉन्ट टू एड?
1: That's it. और अपना एक ईमेल एड्रेस, मेरा ईमेल एड्रेस है sunil@squirrel.co.nz, तो अगर कोई उस माध्यम से मेरे से कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकता है.
0: That's awesome. Thank you so much, Sunil, for joining us on the Drive Show. हम हमारे listeners को अभी भी कहते हैं कि और भी अगर कोई सवाल हो आपके पास for Sunil, please reach out to us, message us on 5599. But also you can directly reach out to Sunil by emailing him sunil@squirrel.co.nz. Thank you, Sunil. Have a great afternoon.
1: You too. Bye-bye.
0: Bye.
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
4: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
5: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
6: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
2: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप. वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
6: कौन है?
2: हुनुआ और वेटाकरे.
6: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में.
2: किधर है हुनुआ?
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
4: Weekdays 6 to 10 a.m.
3: Accurate traffic.
7: Would you trade in your house? Fine overnight for Auckland Southwesters, a low of 8 degrees. Delays on the northern between Esmond Road and the Harbour Bridge for citybound traffic. On the southern to Drury, taking from the city an hour 22. It's heavy from Nelson Street to Prince's Street and northbound from Highbrook Drive to Green Lane. Southwestern heavy between Mangere Bridge and the southern, and from Wiri to Mangere Bridge heading west.
8: Trade in your house with Generation Homes. Visit generation.co.nz for more information.
9: आपके सामने एक रेड बटन है.
10: दबा दिया.
9: नहीं दबाना था.
11: The madness is back. धमाल 4.
12: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
11: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
13: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
11: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
14: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आके कैसे आ जाता.
15: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
16: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At Assure One, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording, and knows exactly what it takes for a claim to be successful. Assure One, plan for tomorrow, today. Call 0800-77-HEERA. North Henvale Advisory Limited, trading as Assured One, is a licensed financial advice provider.
3: Feed the faith with the 1NZ Warriors range, exclusively at Wendy's. Try the new signature burgers, salted caramel frosty and cookie dough bites. Order on the Wendy's NZ app to win weekly prizes and lunch with the players. Only at Wendy's. T's and C's apply.
17: Imagine you're a snowboarder looking down a mountain. Zero crowds, zero noise, zero wind, zero ice, and zero things to worry about. It's just you, your fellow compadres, and at the end of the run, an ice-cold Zero by Corona. Corona Zero, zero alcohol, served everywhere this winter with a lime.
18: Stop what you're doing. Rebel are turning up the heat this long weekend with Red Hot Savings. There's epic half-price deals on clothing, shoes, and more. Plus a scorching 20 to 40% off store-wide. Sale on now, only at Rebel Sports. See online for T's and C's.

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।

0: यो यो हनी सिंगर, इसका गाना लव डोज आप सुन रहे थे अभी। लव डोज ये आप सुन रहे थे ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। आप क्यों हंसते हो ऐसा यार? सैंडी यार, दिस इज रियली अनफेयर विद मी यार।
1: क्या अनफेयर? तुम नहीं हंसते जो मुझसे होता है तो
0: ठीक है। एनीवे हम आपके लिए बॉलीवुड न्यूज भी यहाँ पे लेकर आते हैं। क्या है सैंडी यार, व्हाट इज हैपनिंग मैन, व्हाई यू सो डिस्ट्रैक्टेड टुडे? टिंसल टाउन में हम आपके लिए बॉलीवुड की खबर लेकर आते हैं यहाँ पे, और ये काफी शॉकिंग न्यूज है। वेलकम टू द जंगल, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 120 करोड़ हो गया है।
1: ओह वाओ,
0: क्रेजी है ये तो यार।
1: कैसी है मूवी?
0: 12 करोड़ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं इससे, बट वेरी गुड, नाइस।
1: नहीं वो भूत बंगला से नहीं कर रहे थे बट ये लग रहा है बेटर है ये।
0: इतने सारे लोग हैं तो यार मुझे लग रहा है, लेकिन 120
1: किसी की कॉमेडी तो काम की होगी।
0: 120 करोड़ मेरे को लग रहा है टोटल एक्टर का, एक्टर्स का जो खर्चा है वो भी नहीं हुआ रहेगा यार।
1: 120 करोड़ बट गुड मैन,
0: अक्षय कुमार 50 करोड़ लेता है, फिर ऊपर से इतने सारे एक्टर्स है, हर कोई दो दो दो दो करोड़ भी अगर लिए तो 100 करोड़ तो इधर ही खत्म हो गए क्या
1: बाकी करोड़ नहीं लेते होंगे, कुछ तो ऐसे भी आए होंगे कि चलो कर लेते हैं मूवी।
0: वहाँ पे भी ऐसा होता है क्या, पैशन के लिए काम करना?
1: पैशन के लिए काम करना, अरे बहुत होता है, वहीं से तो आया है।
0: हाँ ऐसा होता है।
1: हाँ पैशन के लिए काम करना, दिस इज लाइक, मेरे को लगता है कि ये हमारे रूट्स में है, जड़ों में है ये। बाकी जगह बाद में ट्रांसफर हुआ है।
0: अच्छा ऐसा बोलते हो आप?
1: या
0: मतलब एक्सप्लॉइट करना ये हमारे रूट्स ऐसे इसमें आप बोल रहे हो?
1: होता है ना, खुद ही हम कितना एक्सप्लॉइट करते हैं। किसी भी होम कंट्री को अभी तुम ले लो, मैं साउथ एशिया की बात कर रही हूँ, वहाँ पे होता है एक्सप्लॉयटेशन, होती है वहाँ पे काफ़ी काम को लेके एंड काफ़ी चीज़ों को लेके होती है, 100% होती है।
0: या डिग्निटी ऑफ लेबर भी नहीं है ना, वो भी मिसिंग है काफ़ी जगहों पे, क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा है।
1: वो भी है, और आजकल तो वो भी हो चुका है, क्या कहते हैं उसको, द टर्म है ना, मॉडर्न स्लेवरी।
0: हाँ वो तो हम सब भी उसमें है ना,
1: उसमें भी है, तो आई थिंक इट्स
0: और अभी तो मोस्ट लिवेबल में भी नहीं आ रही ऑकलैंड का नाम, तो अभी मतलब हम तो
1: मतलब दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटीज के नाम आए, वेरी डिसअपॉइंटिंग यार। न्यूजीलैंड नहीं है उसमें, न्यूजीलैंड की कोई सिटी नहीं है उसमें, टॉप 10 में नहीं है,
0: टॉप 15 में भी नहीं होगी, मुझे लग रहा है
1: 50 में शायद होगी, मैंने इतनी बड़ी लिस्ट देखी नहीं बाद में जाके कि और क्या ही क्या है उसमें, वहीं पे टॉप 10 में नहीं है। बट कोपेनहेगन, मतलब कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, वो नाम है उसमें, तो इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था। इवन वियना जो कि ऑस्ट्रिया से है द सिटी, उसके बारे में भी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि वो इतनी बढ़िया सिटी कैसे है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटी बोला गया है रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को लेके।
0: वेल बॉलीवुड में अगर देखा जाए तो कुछ मूवीज़ है जो काफ़ी तहलका मचा रही है, जैसे कि अल्फा मूवी भी आ गई है, और अल्फा मूवी इज़ ऑल्सो doing quite well.
1: मैंने notice किया है कि अल्फा मूवी की प्रमोशन बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन अल्फा को इतना पसंद नहीं किया जा रहा है जितना बेबी डू डाई को पसंद किया जा रहा है।
0: बेबी डू डाई डू
1: हुमा कुरैशी की ये मूवी है, एंड उनके भाई साकिब सलीम ने एक्चुअली में इसको प्रोड्यूस किया है,
0: और साकिब सलीम बहुत बढ़िया एक्टर है,
1: he's a very good actor,
0: मेरे डैड की मरुती
1: उसमें भी था, और भी काफी मूवीज उसने की है,
0: उसमें कुछ विलन का रोल भी किया है उसने कुछ मूवीज में।
1: तो उस मूवी की एक्चुअली में काफी, उसकी काफी तारीफ हो रही है, दोनों मूवीज के कॉन्सेप्ट है जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है,
0: राइट
1: या पर अल्फा मूवी की बहुत ट्रोलिंग भी हुई है।
0: हाँ बट शर्वरी की बहुत तारीफ हो रही है।
1: ओ अच्छा।
0: हाँ शर्वरी को बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, उसकी फिजिक को बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, एक्टिंग को, और ऐसा कह रहे हैं कि मतलब आलिया के साथ जब खड़ी होती है तो ऐसा दिखती है शर्वरी अलग, मतलब यू नो दैट वे,
1: दैट्स अ रियली गुड मैन, बिकॉज़ आलिया भट्ट इज अ वेरी बिग एक्ट्रेस।
0: या आलिया भट्ट ऑल्सो, मतलब आलिया भट्ट की भी तारीफ ही हो रही है, उसकी एक्टिंग तो ऑब्वियसली इज क्वाइट गुड, बट ऑब्वियसली एक मासी कमर्शियल जो है स्पाई यूनिवर्स का, कंपेयर टू जो हुमा कुरैशी की मूवी है बेबी डू डाई डू, मेरे को पता भी नहीं अपने यहाँ पे आई भी है कि नहीं बेबी डू डाई डू,
1: आई एम नॉट श्योर,
0: बट दैट डेफिनेटली लुक्स टू बी मोर एक्साइटिंग फॉर मी आल्सो,
1: मोर कन्विंसिंग,
0: क्योंकि उसमें हुमा कुरैशी इज प्लेइंग अ डेफ एंड डम कैरेक्टर,
1: या जिसको जो बोल नहीं सकती है, सुनाई देता है उसको,
0: सुनाई देता है, ओ सो म्यूट है, सॉरी
1: सो म्यूट है।
0: अच्छा ओ मेरे को नहीं पता था कि ओ डेफ नहीं है वो,
1: नहीं,
0: ओके ओके, सो या एंड फिर छतरी लेकर आंधी मचाती है ना वो,
1: या it's a weapon, सो लॉट ऑफ मूवीज बहुत कुछ है ओटीटी पे, आप भी अगर कुछ देख रहे हैं तो यहाँ पे शेयर कीजिए. आजकल तो बहुत सारे रियलिटी शोज भी आ चुके
0: हैं,
1: लॉकअप इज देयर, देन देयर इज अनदर वन अलायंस जो है वो भी आ चुका है. उसमें क्या रवि किशन क्या एग्जिट हुआ क्या उसमें?
0: रील बन रहा है काफी उसका, ट्रोल हो रहा है. बट एनीवे वी विल टॉक अबाउट दैट. अभी के लिए आपको सुनाते हैं थ्रोबैक में ये मस्त सा गाना.

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Hum, accurate
1: traffic. Red hot bargains on now.
2: Fine overnight for Auckland southwesters, a low of 8. The northern heavy in both directions between Oniwa Road and Esmondon. It's slow heading north around Albany. The southern pretty busy from Nelson Street to Princes Street. Reports of a crash just south of Princes heading south, and northbound heavy from Beds Road to Green Lane. Southwestern heavy in both directions from Onehunga to the southern.
1: Red hot bargains are on now at the warehouse. Don't wait, shop the deals before they're gone.
3: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो. सब कुछ मिलेगा यहीं. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
6: Danny didn't think he needed a DVS system.
7: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
6: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
7: Nah, only one room. It was just too noisy.
6: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
8: Use your loaf and throw your burnt toast in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūriki. All together Auckland.
9: TradeDepot.co.nz. Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated.

0: continues to guide official cash rate decisions. The Reserve Bank has upped it 25 basis points while noting the Middle East conflict could make inflation more persistent. Finance Minister Nicola Willis says it caused serious disruption.
1: If you look at what was happening in this economy in the first 3 months of this year, we were growing at a far faster clip than Australia, than the United States, than the Treasury had been forecasting.
0: Economist Cameron Bagri doesn't anticipate too much movement on longer-term mortgage rates.
2: Yeah, so by and large, yeah, I think those two-year fixed mortgage rates are pretty well factored in what the Reserve Bank did today. If you look at what's called a floating mortgage rate, you're going to see those sort of rates pop up 25 basis points.
0: State Highway 8 has reopened between Lake Tekapo and Lake Pukaki, so stuck motorists can travel out of the area in convoys before the weather closes in again. Meanwhile, State Highway 1 north of Kaikoura is set to reopen about now, but the section south of the town will likely stay shut for a couple more days because of flooding damage. The world's most livable city for 2026 has been revealed. Copenhagen has topped the global rankings for the second year running, beating 172 other cities on healthcare, education and infrastructure. Auckland ranked 12th on the list. Tonight it's the big Rugby League State of Origin series decider in Brisbane. Warrior star Kurt Capewell will be lining up for Queensland. Capewell is yet to commit on his club playing future for next season. To football updates brought to you by Hisense, and the World Cup round of 16 was completed today with Argentina and Switzerland moving into the final eight. There's a day off tomorrow, the first day without World Cup football since June the 12th.
3: Sports News.
4: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari good brands bhi hai.
4: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
6: Weather ka hal aaj kafi kamal, beautiful day in our super city. Feels like 14.1 actual temperature. Overnight temperature is going to be as low as 8 degrees. Dekho aaj aur kal aap overnight temperature ka tension mat lijiye, lekin Friday ko we are going to get frozen like kulfi, man, because it's going to be as low as 3 degrees Friday and Saturday.
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
7: Power Drive at 5.
4: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusby.
8: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
6: पांच बजकर तीन मिनट हुए हैं. यू आर लिसनिंग टू पावर ड्राइव एट फाइव. हाय सैंडी, गुड इवनिंग.
9: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग रुजबे. पांच बज के तीन मिनट हो चुके हैं. पावर ड्राइव एट फाइव आपके लिए यहाँ पे शुरू हो चुका है. नाउ इस आवर में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए है. आपको चांस मिलने वाला है यहाँ पे डबल पास जीतने का. Also, you
6: बहुत एक्साइटमेंट चल रहा है अभी क्योंकि वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर फॉर द ग्रेट कॉमेडी नाइट.
9: या द ग्रेट कॉमेडी नाइट.
6: द ओजीज आर कमिंग हियर. राजीव ठाकुर एंड कृष्णा अभिषेक यहाँ पे आने वाले हैं. अब राजीव ठाकुर के बारे में ना काफी लोगों को बहुत अंडररेटेड कॉमिक है ये. इनके ऑब्जर्वेशन, इनका जो मैं अभी थोड़े बहुत रील्स देख रहा था, क्लास ऑब्जर्वेशन है. राजीव ठाकुर एंड कृष्णा अभिषेक हमको पता ही कितने वर्सेटाइल है. अलग अलग कैरेक्टर्स बन के आते हैं, अलग अलग उनके टाइमिंग्स होते हैं. कैरेक्टर बन के भी अलग एक उनका एक लाफ्टर एक एलिमेंट अलग होता है.
9: या उनके टाइमिंग, उनका जो है ना ह्यूमर का बहुत सही है.
6: एंड प्लस थोड़े डांस मूव्स भी हैं उनके पास. ही इज अ कंप्लीट पैकेज दैट वे
9: 100%.
6: सो दे बोथ आर कमिंग हियर एंड ये एक मस्तीदार नाइट होने वाली है. देखो वीआईपी टिकट्स तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गए हैं, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्यू मोर टिकट्स देन बुक माई इवेंट डॉट को डॉट एन जेड पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे. विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर पे ये होने वाला है द फॉलोइंग वीकेंड 18th जुलाई को. तो फटाफट आप इसके टिकट्स बुक कर लीजिए. बट हियर आपको चांस दे रहे हैं हम लोग जीतने का,
9: डबल पास जीतने का मौका आपको यहाँ पे मिल रहा है. आपको करना क्या है, यू हैव टू कॉल राइट नाउ 0800 004 866. इस नंबर पे कॉल कीजिए, एक जोक सुनाइए.
6: जी एक जोक सुनाना है.
9: जोक ना आपके पास होते ही है, मतलब जोक आपके पास व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स में रहेंगे,
6: रेडियो फ्रेंडली जोक्स सुनाई है.
9: या रेडियो फ्रेंडली बस होने चाहिए,
6: ड्राइव शो फ्रेंडली जोक्स, रेडियो फ्रेंडली जोक्स.
9: वो आपके यू नो रील्स में होंगे या कहीं पर भी होंगे. आजकल तो स्क्रॉल करते समय आप कितने सारे जोक्स देखते हो, तो बस आपको एक कोई जोक सुनाना है यहाँ पे 0800 004 866 इज अ नंबर जहाँ पे आपको जोक सुनाना है.

0: and your name will be in the draw to win a double pass. हो सकता है ऑन द स्पॉट आप डबल पास जीत लें, यू नेवर नो.
1: ओह, ऑन द स्पॉट भी जीत सकते हैं आप, थैंक्स टू ट्राई विजन इवेंट्स लिमिटेड, नहीं ट्राई विजन इवेंट्स, सॉरी, क्योंकि ये लेकर आ रहे हैं आपके लिए ना द ग्रेट कॉमेडी नाइट फीचरिंग कृष्ण अभिषेक एंड राजीव ठाकुर
0: लाइव ऑन स्टेज.
1: और भी कुछ बोलना है एक और बार.
0: 18 जुलाई को होने वाला है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में.
1: 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. तो अभी आपके पास टाइम है, यहाँ पे कॉल कीजिए फटाफट 0800-004-866. यू कैन कॉल एंड पार्टिसिपेट, क्योंकि डबल पास शायद आप जीत सके इफ यू पार्टिसिपेट. एंड इट्स वेरी सिंपल यार, आप बस अपने, आजकल तो हर कोई एआई यूज करता है, एआई को बोलिए कि भाई एक रेडियो फ्रेंडली जोक दे मेरे को, एंड फिर कमाल देखो आप.
0: फिर या, और ये जो जोक है आप यहाँ पे सुना रहे हैं तो आप कॉल करके मैसेज करके जोक अगर सुनाएंगे तो वो फीलिंग हमारे तक नहीं पहुँच पाएगी जोक की.
1: या सो यू विल हैव टू जस्ट कॉल अस एंड से द जोक.
0: या तुम्हें कोई जोक आता है रुजबे?
1: नहीं यार, मैं मेरे पास ऐसे जोक्स नहीं है जो लोगों को हंसाए. मेरे पास ऐसे जोक्स है जो लोगों को गुस्सा दिलाए. इसलिए मैं आई डोंट
0: मैंने अभी अभी ये पढ़ा. हाँ. बेटा अपनी मम्मी को कहते हैं, मम्मी आई वांट टू बिकम अ यूट्यूबर. दिस इज नॉट अ जोक. सो मम्मी कहती है, बेटा पहले डॉक्टर बनो देन मेक यूट्यूब वीडियोस फ्रॉम योर क्लिनिक.
1: बच्चे बोलते थे अपने पेरेंट्स को कि मुझे यू नो कुछ और करना है, तो पेरेंट्स बोलते थे कि ये क्या है, डॉक्टर इंजीनियर बनो. अभी आज उल्टा हो गया, अभी आजकल ना अभी कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहे तो बोल रहे कि नहीं नहीं नहीं वो मत बनो,
0: कंटेंट क्रिएटर बनो.
1: वो उसमें बेटर है,
0: बट उसमें ज्यादा पैसा है.
1: बट ऑनेस्टली एट द एंड ऑफ इट आई थिंक एवरीवन हैज टू बी अ कंटेंट क्रिएटर एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हर किसी को अगर कुछ बेचना है या कुछ अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना है,
0: आई थिंक बिजनेसेस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद ही वो कंटेंट क्रिएटर बने, बिकॉज
1: काफी बने भी है ना अभी.
0: या काफी बनते भी है ऐसे. अगर आपका खुद का एक बिजनेस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी आउट देयर, बिकॉज जब आप लोग आजकल स्क्रॉलिंग डूम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं जो उसमें आपकी रील भी आएगी, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टेक्निक आई विल से.
1: राइट, सो
0: उससे याद आया, हमने भी एक रील बनाई है अपने रिसेंट पॉडकास्ट के बारे में, वो भी आप जाके हम के इंस्टा पे चेक कर सकते हैं, हम _FM पे.
1: यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रील है, काफ़ी उसके ऊपर इंटरेक्शन भी आ रहा है, बिकॉज इट्स अबाउट द बज टॉपिक, द बजवर्ड AI के अराउंड हमने पॉडकास्ट किया था दर्शित पांड्या के साथ, और बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा हमारे लिए. इफ यू आर अ नूब एज वेल लाइक अस, मतलब नूब मतलब एकदम ही ब्रांड न्यू टू AI, देन दैट पॉडकास्ट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू, क्योंकि उससे बेसिक्स कवर हुए हैं कि हम क्या कैसे शुरुआत कर सकते हैं,
0: शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं. सो मेक श्योर कि वो आप पॉडकास्ट भी जरूर जाके सुनते हैं. आखिरी 10 seconds है आपके पास यहाँ पे कॉल करने के लिए टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, बिकॉज जोक सुनाने से आप ये डबल पास जीत सकते हैं फॉर दिस इवेंट जो कि 18 जुलाई विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है.
1: और आज थोड़ी देर में आपके साथ हम यहाँ पे इंटरेक्शन करने वाले हैं थ्रू आर सेगमेंट सिचुएशनशिप, जहाँ पे हम आपके लिए एक सिचुएशन लेकर आएंगे एंड यू हैव टू लेट अस नो कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं. बट अभी के लिए लेट्स चेक आउट, वी हैव सम जोक्स होपफुली. हाई, गुड इवनिंग.
2: हेलो. हेलो
1: जी.
0: यस, हाय, क्या नाम है आपका?
2: भावेश.
1: भावेश, क्या जोक है आपके पास हमारे लिए?
2: एक जोक है रुस्बे आपके ऊपर.
1: मेरे ऊपर है? अच्छा, ठीक है, गो फॉर इट.
2: ओके, तीन दोस्त, एक रुस्बे और उसके दो दोस्त.
1: अच्छा.
2: उसकी उन लोग की शादी नहीं हो रही.
1: रुस्बे, भावेश और सैंडी.
2: उन लोग की शादी नहीं हो रही थी, तो वो लोग ने बहुत प्रार्थना करके भगवान से आशीर्वाद लिया. तो भगवान बोलता है कि तुम लोगों को एक टेस्ट देना पड़ेगा.
1: अच्छा.
2: तो वो लोग ने, भगवान ने बोला कि एक ब्रिज है, ब्रिज आपको क्रॉस करना पड़ेगा.
0: ब्रिज क्रॉस करना है? ओके.
2: ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, ब्रिज के ऊपर होंगे ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन.
1: ओके.
2: तो अगर आपका, जब क्रॉस करते वक्त अगर आपका पैर ब्लैक स्टोन के ऊपर पड़ेगा, तो आपको जो राक्षस भी नहीं थे, राक्षसी जैसी जो नहीं होती, भूतनी,
1: हाँ, सैंडी हाँ
2: वो मिलेगी।
0: मैं तो खेल रही हूँ यार।
2: अगर आप अगर आप बिना टच किए वहां से निकल गए तो आपको अप्सरा मिलेगी।
1: अच्छा,
0: तो बेसिकली वो स्टोन्स को जब आपने टच किया तो भूत नहीं मिलेगी,
1: तो मिलेगी।
0: तो अगर स्टोन्स को, हाँ, अगर स्टोन्स को टच बिना टच के गए तो अप्सरा मिलेगी,
2: तो आपको अप्सरा मिलेगी,
1: तो रुस में मिलेगा। ठीक है,
0: ओके।
2: तो पहले पहला दोस्त गया,
1: हाँ,
2: तो उसका पैर टच हो गया।
1: अच्छा,
2: तो उसको भूत नहीं मिली।
1: ओके,
2: दूसरा दोस्त गया, उसका भी पैर टच हो गया, उसको भी भूत नहीं मिली।
1: अच्छा, फिर मैं गया,
2: अभी रुस्बे की बारी थी, तो वो सीधा निकल गया, मतलब टच बिना टच किए
0: अप्सरा आ गई सामने,
2: उसको अप्सरा आ गई। हाँ
1: वाओ, हैप्पी एंडिंग।
2: हाँ, तो उसके बाद दोनों दोस्त बोले चलो उसको कांग्रेस करके आते हैं।
1: हाँ,
2: तो कांग्रेस करने गए तो जो अप्सरा थी ना वो एकदम एकदम उदास बैठी थी।
0: एक्सपेक्टेड है ये तो।
1: अच्छा, ठीक है,
0: आगे।
1: क्यों क्यों ऐसे उदास की बैठी थी?
2: उदास बैठी थी।
1: हाँ
2: हाँ, तो दोनों दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों उदास हो? तो बोलते हैं कि बात ही जाने दो, मेरा पैर भी ब्लैक पिस्टल के साथ टकरा गया था।
0: उधर से भी कोई खेल रहा था, उसको भूत मिल गया।
1: क्या बात है भावेश, कांग्रेचुलेशंस यार, यू वन द डबल पास फॉर द ग्रेट कॉमेडी नाइट, जहाँ पे कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर को लाइव आप देखेंगे विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में ऑन 18th ऑफ जुलाई।
2: ओह थैंक यू वेरी मच गाइस,
1: कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप bookmyevent.co.nz पे मत जाना टिकट लेने के लिए, बिकॉज आपको हम दे देंगे यहाँ से टिकट।
2: ओके ओके
1: ओके,
0: थैंक यू भवेश,
2: थैंक यू,
1: थैंक यू।

0: You are listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Power Drive at 5. आप सुन रहे हैं. आज मैं हम आपके लिए साथ खेलने वाले हैं ये. Situationship. और आज का जो सिचुएशन है वो काफी लोग इसके साथ शायद रिलेट कर सके. सिचुएशन इज वेरी सिंपल सैंडी. सो बेसिकली यू आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, और वो एक रिलेशनशिप में है जो एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है. मतलब आपको ऐसे देख के लगता है कि यार ये क्यों ही है इसके साथ,
1: इसको इसके साथ नहीं होना चाहिए.
0: और आपने आपके साइड से काफी बार कोशिश की है ये बताने की, लेकिन वो जब भी उनका कुछ झगड़ा होता है कुछ होता है वो आपके पास आके रोते हैं. आप उनको समझाने की कोशिश करते हो लेकिन फिर इट अगेन एंड्स बैक टू द सेम ओल्ड रूटीन. फिर से चले जाते हैं वो फिर से. तो आप अभी ये सिचुएशन में हैं, व्हाट विल यू डू? विल यू बी लाइक के तू जा, देखो जो करने का कर, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है,
1: या फिर यू एक्चुअली विल स्टेप इन एंड ट्राई टू डू
0: बी द बैड कॉप
1: एंड
0: बी लाइक नहीं मैं तेरे को बाहर निकालूंगा इसमें,
1: सेवर बनोगे तुम वहां पे.
0: हाँ, ये आज का है.
1: क्या करोगे आप? 0800 हम इज अ नंबर. 0800 004866 इज अ नंबर.
0: एंड दिस इज नॉट,
1: व्हाट विल यू डू?
0: दिस इज नॉट जस्ट ओनली रेलेवेंट फॉर लाइक romantic relationships. It could be any kind of relationship. It could be another friendship also.
1: हाँ, friendship में भी होता है ना कि आपका कोई दोस्त, आपको पता होता है कि आपका दोस्त का दोस्त जो है बहुत toxic friend है, and but आप उसको बोलोगे कि इसकी दोस्ती तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, अगर मैं भी बोला भी है और उसने फिर से घुमा के लड़ाई करके वापस उससे दोस्ती कर ली है. And then
0: what will your rishta be with that person? Like, you know, yeah, like, you know, what will you do in this situation? Sandy, aap kya karoge? Matlab, when you are, if you have seen, let's say, you know, a friend of yours
1: in a toxic relation, be it be friendship or anything,
0: or maybe anything.
1: Yeah, I will say, kya hota hai na ki मैंने बोला भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बोला है. आई हैव बीन, मैंने शेयर किया हुआ है अपनी फीलिंग्स को कि दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट इट, एंड सुना भी है. बट देन अगेन उनकी इक्वेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है ना रुजबे. बाद में जाके शायद आपको वो नेगेटिव बोलना शुरू कर दे कि भाई इसको क्या पड़ी है मेरी लाइफ की.
0: हाँ,
1: वो भी कई बार होता है, वो भी कई बार हो जाता है. तो आप, मुझे लगता है कि आप एक पॉइंट तक समझा सकते हो, बिकॉज क्या कई बार क्या होता है कि वहाँ से सर्कल से बाहर जो बंदा न्यूट्रल होके देख रहा होता है उसको कुछ और नजर आता है वहाँ पे. तो जो मे बी उस पर्सन जो सर्कल में होता है उसको वो नजर नहीं आता, बिकॉज द पर्सन इज इन द सर्कल.
0: सर्कल में जो है उसको यूजुअली वो दिखता नहीं, बर्ड आई व्यू से जो देख रहा है, जो बाहर से देख रहा है
1: ज्यादा नजर
0: उसको
1: आता
0: समझ
1: है.
0: में आता है कि भाई ये तो यहाँ पे थोड़ा ग्लिच है
1: या कुछ ग्लिच है.
0: आप भी कॉल करके
1: आप समझाओगे? मेरे हिसाब से तो मैं तो समझाऊंगी 100% पहले समझाऊंगी. एंड और मैंने ये किया भी हुआ है, मैंने समझाया भी हुआ है
0: और लोग नहीं भी समझे,
1: लोग नहीं भी समझे है. और बाद में आई एम लाइक बोला था मैंने, वो सिचुएशन भी हुई है मेरे साथ.
0: हाँ, है,
1: मैंने बोला था पहले ही.
0: राइट.
1: एनीवेज, सो आप क्या करोगे?
0: 0800 004866. मेरा टेक बहुत सिंपल है. मैं अपफ्रंट बोल दूंगा एक हाथ दो बार, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर, अगर मतलब समझ में की बात नहीं है बट मैं मेरे साइड से बोल दूंगा और फिर मैं उस टॉपिक को कभी नहीं छेड़ूंगा. फिर वो सामने से अगर वो टॉपिक अगर आएगा तो मैं फिर से नहीं बोलूंगा कि मैंने तो बोला था ये, ऐसा भी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो मेरे को रियलाइज हुआ है कि वो बिगेस्ट मिस्टेक है. यू शुड नेवर से
1: मैंने एक ही को बोला है एंड दैट पर्सन टुक इट वेरी नाइसली, सो इट इज ओके.
0: यू हैड
1: दूसरे पर्सन को मैंने नहीं बोला.
0: अच्छा,
1: या
0: ओके. एनीवे, देखो जब आपके सामने अंडरस्टैंडिंग पीपल हो तो सैंडी अलग ही होता है.
1: एनीवे गाइस, आप इस सिचुएशन में है तो आप क्या करोगे?
0: मैं उसके बाद इग्नोर करूंगा, मतलब मैं उसके बाद मैं नहीं छेड़ूंगा वो टॉपिक, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सामने वाले को जरूरत होगी तो वो खुद ही आके पूछ लेंगे. बट मेरा काम नहीं है कि मैं बार बार जाके उंगली करूँ ना,
1: बिकॉज वो फिर उंगली लगेगा.
0: बट काफी बार लोग उसको इररिस्पॉन्सिबल फ्रेंडशिप भी कहते हैं कि अगर तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त डूब रहा है तो तुमने जाके उसको पुल आउट करना चाहिए.
1: नहीं, आप एक दो बार तीन बार आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन देन चौथी बार यू बी लाइक कि तुम करो जो तुम्हें अच्छा लगता है.
0: क्योंकि कहते हैं ना कि फ्लाइट में भी अगर टर्बुलेंस होता है तो पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाओ
1: या
0: फिर दूसरे का लगाओ.
1: कमन गॉयज 0800 00 हम इस नंबर पे कॉल करो और बताओ अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप क्या करोगे.
0: मुझे लगता है
1: और ये सिचुएशन किसी की भी लाइफ में आई होगी या आ सकती है.
0: Honestly, should not advise even if she very good friend because she would never take your advice seriously.
1: इनके साथ हुआ है.
0: होता है ऐसा शायद.
1: होता है यार 100% होता है. और मे बी आगे से ये भी सुनने को मिलता है कि I totally get your point what you're trying to say. I know तुम मेरे भले के लिए बोल रहे हो but don't worry.
0: नहीं लेकिन काफ़ी बार ये हो जाता है कि जब ये बोलते हैं ना यू शुड नॉट एडवाइस, काफ़ी बार ये हो जाता है कि फिर इयर्स लेटर जब भी वो दोस्त बाहर निकलता है उसको रियलाइज होता है, आंखें खुल जाती है उसकी, तो वो दोस्त बोलता है फिर कि तूने मेरे को क्यों नहीं बोला तभी. तू मेरे को अगर तभी बोलता
1: है, मेरे को लगता है एक बार तो बोलना चाहिए. दिस इज माई टेक. अगर आपको एक्चुअली में लग रहा है कि कुछ है तो आपको एक बार तो बताना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए. अगर आप नहीं बोल रहे हो नोइंग एवरीथिंग अबाउट अनदर पर्सन एज वेल, you are wrong, you are at wrong there.
0: अच्छा.
1: Yeah. If you know so much.
0: वैसे तो आप you will always be at wrong क्योंकि अगर आपने एक दो बार भी बोला तो फिर सामने वाला आके बोलेगा कि अरे तूने और दो तीन बार क्यों नहीं बोला.
1: अरे दो एक बार तो बोल दिया ना.
0: हाँ लेकिन
1: तुमने अपनी moral responsibility तो निभा ली वहाँ पे ना एक बार बोलने की. उसके बाद उस person को अगले बंदे से friendship relation जो भी है रखना है नहीं रखना है वो उसका take है.
0: सही है. एक मैसेज आया एक और. पर्सनली इफ आई वोंट स्टेप इन टू पुल देम आउट अनलेस इट्स माय इमीडिएट फैमिली बट अदरवाइज इट्स अ लेसन फॉर देम टू लर्न बिकॉज इन द एंड यू एंड अप बीइंग द बैड वन.
1: आई एग्री. ये भी हुआ है. सो या आई 100% एग्री.
0: या क्योंकि काफी बार ये भी हो जाता है ना कि एक काम कर तू खा ले ये धोखा फिर आना फिर हम लोग बैठेंगे
1: फिर
0: बातें करेंगे. बट प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि आई थिंक इट गेट्स टू लेट आफ्टर दैट.
1: यस
0: देन द पर्सन डजंट कम टू यू.
1: क्या है कि लाइफ में देन इवेंचुअली हर किसी की प्रायोरिटीज भी चेंज हो जाती है.
0: हां हां. सो या इट्स अ वेरी ट्रिकी वन.
1: एवरीवन मूव
0: ऑन. या एनीवे आई थिंक इट्स टू ट्रिकी फॉर समवन टू कॉल एंड कमेंट. कोई बात नहीं.
1: इट्स ओके. थैंक्स फॉर द मैसेजेस.
2: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी.
3: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्पी.
4: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं.
2: Accurate traffic.
5: Fuel savings at gas today. Fine overnight for Auckland, a low of 8. The northern is heavy both directions between Esmond and the Harbour Bridge. The northwest and slow westbound from Bond Street to Rosedale. On the southern, it's heavy from Grafton to Ōtara and northbound from East Tamaki Road to Green Lane. The southwestern reports of a crash southbound just before Plunkett Ave. Traffic very heavy in both directions between Whitty and Mangere Bridge.
6: Save 20 cents per litre on fuel today at gas with your everyday rewards card.
7: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a Smart Shopping Buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
8: If you're at the fit-out stage of a build, Bunnings Trade is here to help. We've got what you need for your commercial and residential jobs with bathroom tapware, kitchens and appliances, and HVAC solutions. Call 0800 134 872 to get a quick quote today at Bunnings Trade.
9: Travision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
10: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
9: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
10: Mashallah, bahut acha, very nice.
11: The King Living Winter Sale ends soon. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale ends soon. Shop online or visit a King Living showroom today.
12: Are you ready to go home?
13: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
14: Power Drive at 5.
15: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Hollywood's Most Wanted.
16: Gundi khad jao. Ya seedha andar aao. मैं लाऊं अपना ए गेम.
15: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: अरिजीत सिंह और सुनील चौहान की आवाज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तुझको आप सुन रहे थे ओनली ऑन हम्पलिंग, बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
1: एंड अभी आपको बताते हैं हमारे ट्रिप के बारे में, हमारे एक गेटअवे एडवेंचर के बारे में। हमने उसको नाम दिया है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप ऑफ ट्रिप।
0: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा विद सैंडी एंड रुस्बे, साउंड्स वेरी रिस्की। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा,
1: वेरी रॉन्ग रिस्बे।
0: ओके एनीवे, लेकिन जोक्स अपार्ट, हम लोग जा रहे हैं बाली और बैंकॉक, ये दो डेस्टिनेशंस हम करने वाले हैं ईस्टर 2027
1: या मार्च 2027। सो 23rd मार्च से लेके 2nd अप्रैल आर द ट्रैवल डेट। 2nd अप्रैल को यू विल बी बैक इन ऑकलैंड
0: एंड 23rd। सो 7 डेज का टोटल छुट्टी लेना है आपने।
1: 7 डेज की छुट्टी आपकी बनती है बीच में, ईस्टर को अगर आप वहां से आउट रखते हैं तो।
0: एक मिनट सैंडी, हमारे साथ कोई जुड़ना चाह रहे हैं। हाय, स्वागत है आपका।
1: कोई चक्कर नहीं। तो ये ट्रिप के बारे में बता देते हैं अभी,
0: बता दो।
1: सो बाली एंड बैंकॉक, इन दो जगह पे हम जाने वाले हैं। बाली में जहाँ पे यू नो बीच क्लब से लेके बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज, 5-star accommodation, then खाना वहाँ पे, breakfast, lunch, dinner, everything will be included. And same with the Bangkok. So flights की prices included है यहाँ से बाली, बाली से बैंकॉक, बैंकॉक से वापस ऑकलैंड। Accommodation हर जगह पे included है and खाना हर जगह का included रहेगा और activities every day की कोई ना कोई activities है, including एक जगह पे तो cruise भी है, वो भी included है। तो ये सारी चीज़ें इसी के साथ साथ बाली में वी विल बी डूइंग बिट ऑफ गाइडेड टूर्स एज वेल, जहाँ पे बहुत सारे टेंपल्स को विजिट करना। एंड देन बैंकॉक में वो जो डिफरेंट मार्केट्स है, चाहे वो ट्रेन मार्केट है, चाहे वो बोट मार्केट है, ये सब कुछ।
0: शॉपिंग वॉपिंग वाली अगर आपको शौक है शॉपिंग के, तो वो बैंकॉक में आपके सारे शौक पूरे हो सकते हैं।
1: ये और उसकी नाइट लाइफ तो टोटली अलग है। इसी के साथ आप मेरे और रुस्बे के साथ वहाँ पे रहेंगे, सो इट्स गोना बी फुल विद एडवेंचर ऑलरेडी। सो ये ट्रिप अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आइटेनरी क्या है इसकी और इसकी प्राइसेस क्या है, जस्ट राइट ड्राइव ऑन 5599। आपको ऑटो रिप्लाई में एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म में क्या है, आपको अपना नाम फिल करना है और आपको अपना फ़ोन नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी आपके वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगी। एंड सन टूर से अनिल भाटिया ये आपको पूरा का पूरा आइटेनरी विद प्राइसेस भेज देंगे। सो देन यू कैन डिसाइड, यू कैन डिस्कस विद योर फैमिली एंड देन फाइनलाइज, बिकॉज जितनी जल्दी आप फाइनलाइज करते हैं, उन्होंने आज ही हमें बोला है रुस्बे कि अगर जुलाई में आप बुकिंग कर लेते हैं, बुकिंग के लिए $500 इज द रजिस्ट्रेशन।
0: जी,
1: आपको फुल प्राइस पहले नहीं देनी है, $500 ही सिर्फ आपको सबमिट करना है। जब आप बुकिंग कर लेंगे तो वापस आके यहाँ पे अगस्त में अगले साल एक
0: मीटअप वाला हो रहा है, तो उसमें डिनर क्रूज है,
1: डिनर क्रूज है, तो उसमें भी आप ज्वाइन करोगे। एंड ऐसे बहुत सारे गिव अवेज भी एक्चुअली में आप जीतेंगे। इनफैक्ट
0: जुलाई में अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको जो वहाँ पे अलोहा स्विंग है उसमें जो कॉस्ट्यूम और वो सब का हायर है वो भी इंक्लूडेड है, वो भी फ्री हो जाएगा। ओनली फॉर दोज हु रजिस्टर इन जुलाई बेसिकली।
1: या जो जुलाई में, रजिस्ट्रेशन फीस इज $500 एंड बाकी पेमेंट्स के ऑप्शंस वगैरह वो सब कुछ, इंस्टॉलमेंट्स कैसे वर्क करेंगे, यू कैन जस्ट हैव अ चैट विद अनिल भाटिया, ही गॉट, मतलब उनको एक्सपीरियंस है सालों का इन चीज़ों को लेके। सो जस्ट टाइप ड्राइव ऑन 5599 सो दैट आपका एटलीस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाए, ताकि आपको आइटेनरी एंड प्राइसेस मिल जाए। फ्रॉम देयर यू कैन टेक द डिसीजन।
2: आर यू रेडी? चैटबस्टर्स,
3: थोड़ा सा हॉल बना दे।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: Traffic. Long weekends with Foursquare.
2: Fine overnight for Auckland, a low of 8. The northern is heavy both directions between Esmond and the Harbour Bridge. The northwestern slow westbound from Bond Street to Rosedale. On the southern, it's heavy from Grafton to Ōtara and northbound from East Tamaki Road to Green Lane. The southwestern reports of a crash southbound just before Plunkett Ave. Traffic very heavy in both directions between Whitty and Mangere Bridge.
1: Foursquare, here for the long weekend, the roadie and the snack stops.
3: When you see them on the road, you're suddenly not in as much of a rush to get home. Suddenly, texting your back can wait. You suddenly remember to put your seatbelt on. And you suddenly remember what your indicator's for. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behaviour. Drive like cops are around. Because they are.
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
5: If you don't play Instant Kiwi, it's just another day. If you do play Instant Kiwi, you have absolutely no idea what could happen next. Instant Kiwi, you never know. Play at your local lotto store or online today. R18.
6: Are you ready to go home?
7: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
8: Power Drive at 5.
9: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
10: Power Drive at 5 आप सुन रहे हैं 104.2 FM और Rova app के जरिए from anywhere in the world आप सुन सकते हैं हमें और
11: 87.7 FM
10: in the city.
11: In the Auckland city.
10: बस मतलब सीबीडी के आसपास.
11: वैसे अगर आप वेस्ट की साइड जाने वाले हैं, वहाँ पे रहते हैं या फिर वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस करने का ऐसा सोच रहे हैं, ट्रस्ट अरीना है वहाँ पे, विच इज ब्यूटीफुल अरीना. वहाँ पे जितने भी इवेंट्स देखे मैंने उसमें, दे आर रियली नाइस इवेंट्स.
10: ओके,
11: या वहाँ पे राहत फतेह अली खान परफॉर्म करने वाले हैं 25 जुलाई को.
10: वाह सैंडी, वाह वाह, दिस डिसर्व्स.
11: I know, thank you so much.
10: क्या क्या घुमा के दिया है, वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया जी. तो 25 जुलाई को ट्रस्ट अरीना में द मैजिक आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बिकॉज राहत फतेह अली खान आ रहे हैं ऑकलैंड में एक और बार फॉर एन अनफॉर्गेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. एंड पिछले साल अगर आपने इनका शो अटेंड किया है तो आपको पता है कि क्या क्वालिटी होता है इनके शो का. सो बुक द टिकट्स क्विकली क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बाकी है एंड दे विल बी सोल्ड आउट वेरी सून. drytickets.com पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे. और ये जो शो है इज प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस.
11: एंड न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट वैसे आपके लिए रामलीला लेके आ रहे हैं एंड इसके लिए 8th अगस्त इज अ डेट, तो इस डेट को लॉक कर लीजिएगा. ऑल्सो वैसे एक और इवेंट के बारे में बता दूँ रुजबे, न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रही है 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट के लिए 22nd and 23rd अगस्त को. अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कॉल पंकज मोंगा ऑन 021-090-85067 पर.
10: ए, दिस इज रियल कूल यार, और मेरे को लग रहा है मैं इनको मिला हूँ शायद से, या फिर मैं किसी कैरम, हमें कोई दिवाली
11: हमने
10: पे गए थे एंड वहाँ पे कोई आए थे, वहाँ पे उन्होंने स्टॉल लगाया था कैरम का एंड वी टोल्ड देम आल्सो कि प्लीज लेट अस नो. सो थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट टू अस. फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट हो रहा है 22nd and 23rd अगस्त एंड आई नो अ लॉट ऑफ देम जो कैरम के एकदम ही प्रो लोग हैं,
11: जो फैन है.
10: सो दिस इज डेफिनेटली अ प्लेस वेयर यू शुड रजिस्टर या. सो या कैरम नेशनल टूर्नामेंट के लिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप कॉल कीजिए पंकज मोंगा को 021-090-85067 पे. दिस इज़ गोइंग टू बी अ फन इवेंट. फिर और भी कुछ इवेंट्स होने वाले हैं जिसकी डिटेल्स आपके साथ हम थोड़ी देर में शेयर करेंगे. सुनते रहिए हम

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
3: क्या बच्चों के ट्रेंड मेकर्स आपके लिए शुरू हो गया है. गुड इवनिंग, वेलकम टू द ड्राइव शो. हाय सैंडी.
4: हाय रुज़बी, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. आज हम गाने प्ले करने वाले हैं एक एपिक पर्सनालिटी की मूवीज जो उन्होंने प्रोड्यूस की है. एंड रिसेंटली बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट हिम, मैं और रुज़बे, हम रॉनी स्क्रूवाला इसके बारे में बात कर रहे थे.
3: RSVP प्रोडक्शंस के ये जो करता धरता है डायरेक्ट मतलब मेन पर्सन है
4: जिनकी प्रोडक्शन के अंडर अभी सतलुज रिलीज हुई है Z5 पे, विच इज लाइक रिकॉर्ड डाउनलोड हुए हैं रुज़बे इसके.
3: रिकॉर्ड डाउनलोड
4: सर्ज इज मोर देन 300% ओवरसीज.
3: Yeah, and I think overseas people still have a few days to catch it.
4: Yeah.
3: Until before it goes, but अभी काफी लोगों के पास वैसे भी इसके links और वो सब आ गए हैं.
4: Yeah.
3: Usually देखो privacy को लोग promote नहीं करते, but यहाँ पे makers ही बोल रहे हैं कि भाई तुम कुछ भी करो लेकिन movie देखो.
4: करो लेकिन movie देख लो. It's out and about.
3: Yeah.
4: But इसी में
3: heads off to. So it's not us promoting piracy, but
4: it's the makers.
3: The makers only.
4: So यहाँ पे that's why we were talking about Ronnie Screwvala कि उनकी production की ये जो movie है. He was on hold for the next production for last three and a half years.
3: तीन साल से ये एक battle लड़ रहे हैं censor board के साथ. 127 cuts उनको बोले थे. पंजाब 95 था नाम movie का. But then suddenly out of nowhere, Satluj releases on OTT and people were just blown away. उनको पता ही नहीं चला कि भाई ये कहाँ से क्या हुआ. Release हुई और होते ही I think within 24 hours. Got pulled over.
4: 48 more than 24 hours. 48 hours के अंदर.
3: 48 hours के अंदर.
4: Movie जो थी ये.
3: क्योंकि weekend पे था ना, weekend पे.
4: काम नहीं करते काफी लोग ना.
3: But फिर भी overtime मारा काफी लोगों ने.
4: Yes, so OTT से निकल गई, but overseas के लिए अभी भी available है. So इसीलिए लोगों के अंदर बहुत बातें हो रही है अबाउट द मेकर्स की, यू नो, जिगरा था रिलीज करने के लिए. एंड स्पेशली अबाउट रॉनी स्क्रूवाला जिन्होंने अपनी नेक्स्ट प्रोडक्शन शुरू नहीं की जब तक ये मूवी रिलीज नहीं हुई.
3: ओह अच्छा, इज नॉट स्टार्टेड एनी अदर प्रोडक्शन.
4: नॉट एनी अदर प्रोडक्शन. दिस इज अभी प्रोडक्शन उनकी काफी देर बाद आई है उनकी.
3: ओह वाओ.
4: Yeah, so right. Unka, I will say the commitment.
3: Yeah, definitely. But we are talking about Ronnie Screwvala today because kafi interesting personality hai ye.
4: Very interesting because jab inke bare mein baatein ki, jab padha, to kya inke bare mein samne aaya Rusbe about
3: He's
4: his
3: done
4: journey.
3: Multiple things. Inko na pyar se log kehte hai cat with 9 lives. क्योंकि इन्होंने इतने बार फेलियर देखा है और इतनी बार उन्होंने पिवट किया है फेलियर देख के. एंड आई थिंक दैट इज वॉट मेक्स हिम अ लिटिल फियरलेस. फेलियर से डर नहीं है इनको. I think even this movie Satluj,
4: that's why he likes a challenging project na.
3: And he's done a lot of challenging projects.
4: Yeah, aaj aap jo gaane sunoge jin movies ke, you will understand ki kis kis movies ko inhone back kiya hai.
3: Yeah.
4: Ki yeah, agar koi nahi hai to I am there for this movie.
3: And you will see a lot of hatke movies in there.
4: Yeah.
3: Like, you know, not the normal mass commercial hits, but bahut hi hatke movies.
4: Very different kind of movies.
3: Let's talk about Ronnie Screwvala a little bit. To aapko pata hoga UTV movies ke bare mein.
4: UTV, yeah.
3: UTV jinka na
4: channel bhi tha.
3: UTV channel bhi hota tha aur UTV movies hota tha jisme na उनका ना इंट्रो बहुत कूल होता था. ऐसे तीन डॉट होते थे, ऐसे उंगली जा रही है और वो तीन कलर में जा रही है और फिर ऐसे यूटीवी के ऊपर
4: बनता है. या
3: तीन ऐसे
4: अभी मूवीज में देखते हैं हम कभी कभी ना, वो
3: पुरानी मूवीज में लक्ष्य में दिखेगा आपको. बट व्हाट हैपेंड वाज इन्होंने फिर यूटीवी को बेचा डिज्नी को. एंड दैट डील वाज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स जो उन्होंने साइन किया.

0: आई थिंक चेंज इज लाइफ, क्योंकि 1.4 बिलियन के लिए उन्होंने अराउंड अबाउट बेचा यूटीवी को टू डिज्नी, एंड देन ही स्टार्टेड अनदर प्रोडक्शन कंपनी व्हिच वाज आरएसवीपी,
1: जिसके अंडर अभी बहुत सारी मूवीज आती है.
0: बट टुडे रॉनी स्क्रूवाला का थिंग दैट आई वांट टू टच, जो मैंने आपको बोला था सैंडी, मैंने एक पॉडकास्ट पे सुना था ये बहुत टाइम पहले. So he started off with his entrepreneurial journey at a mere age of 10. 10 साल की उम्र में वो मुंबई में रहते थे और लोअर मिडिल क्लास पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे, और लेकिन उनका ग्रांट रोड पे एक अपार्टमेंट होता था ऑपोजिट अ मेजर सिनेमा हॉल, जहाँ पे ना बड़े बड़े रेड कार्पेट बॉलीवुड प्रीमियर्स वो टाइम पे होस्ट होते थे. सो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहाँ पे आते थे, जैसे कि अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, और बड़ा क्राउड वहां पे गैदर हो जाता था. नाउ ही रियलाइज्ड कि उनका जो घर था वो परफेक्ट सूटेबल लोकेशन पे था, जहां से ये सब कुछ बहुत इजीली दिख रहा था, ये थिएटर और ये सारा ग्लैमर दिख रहा था. सो ही लिटरली स्टार्टेड सेलिंग टिकट्स फॉर हिज बालकनी एट द एज ऑफ 10, और उन्होंने अपने नेबर्स को बुलाते थे, लोगों को बुलाते थे और बोलते थे कि यहाँ से देखो 10 रुपए की एंट्री या समथिंग लाइक दैट, यू नो, लाइक अ वेरी
1: सुपरस्टार्स को आप देख सकते हैं,
0: वेरी स्मॉल फी वो लेते थे और बोलते थे कि ये परफेक्ट व्यू है देखने के लिए.
1: मतलब बिजनेस माइंड शुरू से ही था. इवन ही वाज अ टूथब्रश टाइकून. So, yeah, he started automatic toothbrush manufacturing business in the early 1980s. एंड वहाँ पे उन्होंने बेसिकली एक कमर्शियल चीज की शुरुआत की थी.
0: बट आपको पता है वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो हाउ ही गॉट इनटू टूथब्रश, वो यूके गए थे अपने डैड के साथ टूर पे, और वहाँ पे वो एक कंपनी में जाके उन्होंने एक फुल्ली ऑटोमेटेड टूथब्रश मेकिंग मशीन देखी और उन्होंने बोला कि यार ये मैं खरीदता हूँ यहाँ से. तो उस जमाने में 4,000 pounds में उन्होंने वो मशीन खरीदी और इंडिया में आके फिर कन्विंस किया बड़े प्लेयर्स को, लाइक कोलगेट एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल, और उनको कहा कि देखो मैं मेरा ये मशीन आप यूज करो, एंड वैसे करके ही स्टार्टेड हिज टूथब्रश बिजनेस विदाउट एनी एक्सपीरियंस, जस्ट विंगिंग इट.
1: अमेजिंग. तो अभी सुनते हैं एक मूवी का गाना जिसको प्रोड्यूस किया है रॉनी स्क्रूवाला ने.

0: स्वदेश मूवी का गाना आप सुन रहे थे, विच वॉज अगेन प्रोड्यूस बाय रॉनी स्क्रूवाला। स्वदेश मूवी भी लोगों को बहुत पसंद आई थी। अगेन इट वॉज नॉट अ बॉक्स ऑफिस हिट एट दैट पॉइंट,
1: लेकिन बाद में लोगों ने बहुत पसंद किया इस मूवी को।
0: बहुत पसंद आया लोगों को।
1: या सो ऑल्सो रॉनी स्क्रूवाला इन्हें इंडिया का केबल गाय भी बोला जाता है। जब दूरदर्शन चलता था, वॉज द ओनली चैनल अवेलेबल ऑन इंडियन टीवी, ही वॉज द फर्स्ट वन टू ऑर्गेनाइज द केबल नेटवर्क, जिसका नाम नेटवर्क ही था। डोर टू डोर वो गए थे, $200 अ मंथ आपको चार्ज होगा, ₹200 मंथ आपको मिलेगा, सो दैट आप डेली ये जो वीडियो चैनल है ये देख सके। सो केबल टीवी इन्होंने बेचना शुरू किया था।
0: बट पहले दो साल वहाँ पे भी उनको बहुत फेलियर का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर कोई बोलता था कि अरे ये क्या फ्लॉप है, क्यों कोई पे करेगा ना। वो टाइम पे सब्सक्रिप्शन मॉडल किसी को समझ में नहीं आता था।
1: कोई, और वो भी चैनल देखने के लिए जहाँ पे दूरदर्शन हमेशा फ्री अवेलेबल था,
0: दिख रहा है तो क्यों कोई देखेगा। बट दो साल के जंग के बाद ही लिटरली आफ्टर गोइंग डोर टू डोर एंड यू नो ट्राइंग टू कन्विंस होटल्स, गेस्ट रूम्स, ऐसे सारे लोगों को उन्होंने कन्विंस किया कि भाई देखो मल्टीपल चैनल्स होंगे आपके डिमांड पे। केबल बिकेम अ बिग हिट आफ्टर अ फ्यू इयर्स इन इंडिया। केबल टीवी वाज़ वेरी पॉपुलर, उसके बाद फिर ये सारे डिश टीवी और ये सब आने लग गया ना।
1: हाँ, डिश टीवी भी आ गया था, बट केबल टीवी वाज़ वेरी पॉपुलर।
0: केबल टीवी वाज़ वेरी पॉपुलर,
1: वेरी वेरी पॉपुलर।
0: आपके यहाँ पे हैथवे होता था क्या? हैथवे
1: नहीं पता मुझे।
0: हमारे यहाँ पे होता था बॉम्बे में कुछ जगहों पे, केबल के जगह पे लाइक हैथवे का एक सेट टॉप बॉक्स होता था वो टाइम पे।
1: ओके ओके,
0: बट या दोस वर द डेज यार,
1: केबल टीवी ही होता था, और काफी लोग तो उसमें भी अपनी वायर लगा के कुछ ना कुछ चोरी भी करने की कोशिश करते थे। वो सब भी था, यू नो टेक्नोलॉजी के साथ ये चीजें भी आती है।
0: काफी लोग अपना खुद का डिश भी लगाते थे, हमारे घर पे था, हमारा खुद का एक डिश लगा था।
1: हाँ, वो तो बाद में डिश
0: नहीं,
1: जब पॉपुलर हुआ।
0: पुरानी बात कर रहा हूँ मैं।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: डिश नहीं था वो, एंटीना था पूरा।
1: हाँ, एंटीना होता है।
0: एंटीना नहीं, मतलब वो छतरी है, उल्टी छतरी बड़ी।
1: हाँ, मैं समझ गई, वो डिश टीवी होता है वो।
0: नहीं, डिश टीवी तो छोटा वर्जन हो गया, ये मैं बड़ा बोल रहा हूँ।
1: ओके,
0: ये बहुत ऐसा बड़ा, हाँ। लिटरली आधा टेरेस को वो ऑक्यूपाई कर देता है, इतना बड़ा।
1: हाँ, इतना बड़ा,
0: इतना बड़ा होता था वो टाइम पे। बट उसका एक ही प्रॉब्लम होता था, लाइक केबल टीवी का एडवांटेज होता था कि हमको वहाँ पे ना मूवीज देखने मिलता था अलग अलग, बट वो डिश टाइप जो होता था उस पे वो नहीं होता था। उस पे सिर्फ चैनल्स आते थे।
1: सो मूवीज के बारे में बातें करते हैं, तो स्वदेश मूवी का आपने अभी अभी गाना सुना जिसको प्रोड्यूस किया रॉनी स्क्रूवाला ने, एंड द नेक्स्ट प्रोडक्शन जो उन्होंने की, दिस वाज अनदर वेरी नाइस वेरी डिफरेंट मूवी,
0: या जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का डेब्यू हुआ था अलोंग विद इवन राजकुमार राव आई थिंक का डेब्यू, तीनों का डेब्यू, दोनों का डेब्यू हुआ था, राजकुमार राव और सुशांत सिंह।
1: तीन दोस्त होते हैं ना।
0: एक सुशांत सिंह, राजकुमार राव, और फिर वो एक और उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी बहुत सही एक्टर है। बढ़िया, काय पोचे मूवी का नाम था।
1: अमित साथ थे इसमें,
0: अमित साथ, यस यस, उसका ये गाना आपके लिए ओनली ऑन हम।

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन socials.

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: Don't be an egg. Have a crack at putting eggshells in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki. All together Auckland.
4: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best, hamari koi branch nahi hai.

0: sleepyhead sleep easy queen beds from only $7.99 on sale now.
1: You are listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Aaj Ronnie Screwwala ko hum shout out de rahe hai. Just like that.
2: Just like that. Bahut sari movies inhone produce ki hai. UTV jab inhone kharida Ruzbe, main inke bare mein hi actually main pad rahi thi. At that time India had exactly one state run broadcaster Doordarshan. So UTV jo tha, it began strictly as a production house making content for them. So he was genius for spotting the satellite boom. इन्होंने क्या करना शुरू किया कि जब कुछ private satellite channels like ZTV, Star Plus ये early 90s में आए तो बहुत सारे production houses जो थे they were terrified of long contract. Ronnie Screwwala did opposite. He went to ZTV and boldly offered them staggering 520 episodes a year across 10 different shows. लंबा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन करते थे.
1: अच्छा,
2: बाकी चैनल्स लंबे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे थे. इन्होंने ऑपोजिट करना शुरू किया, कमिटमेंट करना शुरू कर दिया उनके साथ
1: कि ज्यादा तुम्हें साथ कॉन्ट्रैक्ट लंबा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे,
2: ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे. नाउ आई अंडरस्टैंड वो एपिसोड्स, वो जो सीरियल्स थे इतने लॉन्ग रनिंग क्यों होते थे, कितने लंबे के कॉन्ट्रैक्ट होते थे उनके.
1: बट यू नो द अदर थिंग, इंडिया में शिनचैन और ये सब इंट्रोड्यूस करने वाले रॉनी स्क्रूवाला थे. आई थिंक हंगामा टीवी ऑल्सो वॉज पार्ट ऑफ देयर यूटीवी ओनली, और वहाँ पे वो कोरियन शोज और अलग अलग शोज लेकर आते थे डब्ड इन हिंदी एंड लाइक इंग्लिश.
2: इनफैक्ट मैंने ये भी पढ़ा है कि ही लॉन्च यूटीवी लॉन्च्ड शांति दैट टाइम दैट जिसमें मंदिरा बेदी थी.
1: एक्चुअली यूटीवी के बारे में हम लोग सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें भी जानते हैं, बट ये इन चार बार ऑलमोस्ट नियर बैंक्रप्सी के इवेंट्स यूटीवी ने सर्वाइव किए थे.
2: ओके,
1: क्योंकि रॉनी स्क्रूवाला आई थिंक हैड द टेंडेंसी ऑफ ऑलवेज डूइंग थिंग्स अहेड ऑफ इट्स टाइम. उन्होंने उस जमाने में सबसे पहले एक होम शॉपिंग चैनल लॉन्च किया था, जहाँ पे वो ना अभी भी आपको दिखते रहेंगे, टीवी पे ऐड आता है अभी कॉल कीजिए और इसको पाइए, यहाँ पे भी होता है वो बहुत. सो दैट ही हैड लॉन्च्ड इन इंडिया इन द 90s, जब इतना ज्यादा कुछ होता नहीं था पॉपुलर, और वो फ्लॉप हो गया बिकॉज वी अहेड ऑफ इट्स टाइम था. बट देन ही पिवटेड एंड वेंट ऑन एंड वेंट ऑन, एंड देन टूडे देखो उसने यूटीवी को बेचा 1.4 बिलियन. वेल अभी जो गाना आपको सुना रहे हैं ये भी एक ऐसी मूवी है, मूवी से है जो आई थिंक काफी हटके मूवी थी और बैन होते होते बच गई.
2: या ये मूवी भी लाइक वन ऑफ द मोस्ट एपिक मूवी हम कह सकते हैं, ऐसी मूवी जिसको आज भी उठा के आप देखेंगे ना तो उतना ही एंजॉय करेंगे
1: और उतना ही रेलेवेंट भी लगेगा आपको,
2: उतना रेलेवेंट आज के टाइम पे भी है.
1: वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन रंग दे बसंती.

0: bed, sleep easy queen beds from only $7.99. On sale now.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Traffic.
3: Step up and give blood.
4: Fine overnight for Auckland, a low of 8. The northwestern, we've got a crash at Waterview heading west. That's affecting traffic there. The southern, a crash heading north near Ōtara. It's heavy from Redart Road to there and then slow from Prince's Street to Green Lane. Southbound, slow from the Port Link through to Beards Road. Southwestern, very heavy in both directions between Wiri and Onehunga.
3: Give blood, save lives. Book now at nzblood.co.nz.
5: Professional financials hai saath aapke. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
5: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T&Cs लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
7: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz
8: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
9: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
10: No way.
11: We in trouble?
9: Nah, it's BP Plus.
11: What is that?
9: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus... we get free coffees.
12: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
13: In Yucatan, the local Mexican surfers pronounce cero, cero. During the warm summer evenings in bars around the coast of Nayarit, you'll hear them say, cero. In New Zealand, zero alcohol Corona cero is pronounced cero. Easy, eh? However you say it, Corona Cero will always be the smooth zero alcohol beer that's still served with a lime.

0: ट्रेंड मेकर्स में आज रॉनी स्क्रू वाला को हम शॉर्ट आउट दे रहे हैं. उन्होंने जो जो मूवीज प्रोड्यूस की है या जितनी थोड़ी बहुत मूवी मतलब जो हम थोड़े बहुत प्ले कर पाए, हम आपके लिए उनके गाने प्ले कर रहे हैं. जो गाना आपने सुना वो बहुत ही एपिक मूवी बर्फी का था.
1: अनदर हट के मूवी रॉनी स्क्रू वाला. वेल, इन्होंने जहाँ पे इतनी सारी मूवीज प्रोड्यूस की है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, बहुत कुछ अचीव किया है. ये एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रहे हैं रुजबे. इन्होंने प्रूव किया कि एज कुछ लिमिट नहीं होती अगर आपको कुछ इसके ऊपर करना है. ही को फाउंडेड अपग्रेड 2015 में, विच हैज ग्रोन इनटू वन ऑफ इंडियाज लीडिंग ऑनलाइन हायर एजुकेशन प्लेटफॉर्म.
0: या अपग्रेड बहुत ये वो टाइम पे इन्वेस्ट किया था. एक्चुअली स्पोर्ट्स की अगर आप बात करो ना सैंडी, सो लॉट ऑफ बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैव इन्वेस्टेड इन क्रिकेट बिकॉज दैट्स द मनी मेकिंग प्लेस. रॉनी स्क्रू वाला ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टेड इन प्रो कबड्डी लीग.
1: Oh, wow.
0: उन्होंने कबड्डी में इन्वेस्ट किया, उन्होंने फुटबॉल में भी इन्वेस्ट किया एंड वर्सेस ही आल्सो इन्वेस्टेड इन वॉलीबॉल.
1: या मुझे लगता है कि दिस पर्सन बीन वेरी अंडररेटेड इन टर्म्स ऑफ हेडलाइंस बिकॉज जो जो इन्होंने काम किए हैं, जैसे एक ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स को अगर वो ग्लोबल ब्रॉड का लेवल पे लेके आ रहे हैं, जैसे कि कबड्डी को प्रो कबड्डी लीग शुरू करके, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. सो मतलब बाकियों के नाम सामने आते हैं, गेम के नाम सामने आते हैं, लेकिन शायद रॉनी स्क्रू वाला का नाम इतना ज्यादा सामने नहीं आ रहा है. वो अभी भी बैक एंड पे ही ज्यादा काम कर रहे हैं.
0: इन्होंने लीग शुरू नहीं किया, इन्होंने एक टीम वहां पे बाय की थी प्रो कबड्डी लीग में, जैसे अभिषेक बच्चन ने भी एक
1: जैसे यू मुंबा
0: उन्होंने बाय की थी. अभिषेक बच्चन की भी एक टीम थी.
1: अभिषेक बच्चन का तो मैं बहुत देखती हूँ.
0: सो या आई थिंक ही आई थिंक द गुड पार्ट इज कि ऐसे जब स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट होता है जैसे कि कबड्डी और फुटबॉल, तो सडनली जो लोग हैं उनको दिखता है कि अरे इसमें भी पैसा हो सकता है. सो मोर पीपल स्टार्ट प्लेइंग इट एंड होपफुली वन डे वील हैव इंडिया इन फीफा एज वेल. या एनीवे फीफा की बात करें तो काफी गेम्स बढ़िया से गेम्स हुए.
1: आज अर्जेंटीना की जीत हुई थी सुबह वैसे, और उसी के साथ साथ वैसे आज स्विट्जरलैंड की पेनल्टीज में जीत हुई कोलंबिया से. सो आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं क्वार्टर फाइनल्स के लिए, वी ऑलरेडी हैव टीम. क्वार्टर फाइनल्स के लिए फ्रांस मोरक्को खेलने वाली है, स्पेन बेल्जियम के साथ, नॉर्वे इंग्लैंड के साथ एंड अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड के साथ. Then we will get to the semi-finals and finale will be on 19 July.
0: 19 July को होने वाला है सब decision, मतलब पता चलेगा कि कौन actually में is the champion. अभी भी सैंडी की जो टीम है फ्रांस is in the game. मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि अरे कुछ आइडिया नहीं तेरे को, तो काय को ब्राजील का नाम लिया, कल तो मैं उसको बाहर निकाल लिया. But yeah, Brazil is out. अभी let's see France.
1: I really want Argentina to win, but my prediction is on France. I think France is very strong.
0: Okay, you're saying you still think France is strong.
1: Yeah,
0: Spain nahin.
1: Spain bhi acha khel rahi hai, but shayad Belgium chale jaye aage because it's Spain versus Belgium.
0: All right. Okay. Anyway, we'll keep you posted on how that goes. But abhi ke liye it's time for us to say bye bye.
1: Bye. Meri aapse kal my time mein mulaqat hogi 10 baje.
0: Oh yeah, Sandy ka kafi overtime chal raha hai abhi.
1: Full gyan.
0: But abhi गाने की बात करें तो कमीने मूवी का गाना आपको सुनाने वाले हैं, और उसके बाद और भी एक गाना है जो मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट लव सॉन्ग्स है. उरी मूवी का ये गाना है.
1: या उरी मूवी भी इन्होंने प्रोड्यूस की थी.
0: तो ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, सुनते रहिए हम ब्लिंक बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. हैव अ वंडरफुल इवनिंग. बाय.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: हम टाइम चेक। हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
2: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Ryan. Overseas conflict continues to guide OCR decisions. The Reserve Bank upped it 25 basis points while noting the Middle East conflict could make inflation more persistent. Economist Cameron Bagri doesn't anticipate too much movement on longer-term mortgage rates. The weather-hit State Highway 1 north of Kaikoura is open. South of the town, it's likely to be shut for at least a couple of days. An orange heavy rain warning and strong wind watch are in place for Wairarapa and Wellington's eastern hills. A moderate earthquake struck Manawatu this evening just before 7. It measured 4.1 and was recorded 15 k's northwest of Pongaroa at a depth of 9 k's. In sport, Saturday's All Blacks Italy game in Wellington has sold out, as has next Saturday's game against the Irish at Eden Park. The All Blacks matchday squad named tomorrow afternoon. The first chance to see what new coach Dave Rennie thinks of rotation. And rugby league with Machinery House in a league of their own, just over a couple of hours away from the showpiece showdown, the series decider in State of Origin in Brisbane.
3: Sports News
1: brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
4: World's best, hamari good brands bhi
1: hain. Hum. Night Cafe on Hum.
5: नाइट कैफे आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं। वेलकम एवरीवन टू द शो। मैं क्रिश आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आज वेंसडे है, मिडवीक है, 8 जुलाई है। आज बहुत सारे लोगों को हैप्पी बर्थडे भी विश करेंगे, लेकिन बॉलीवुड की खबरें एक के बाद एक तो आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं सिलसिला, बिकॉज वी गोइंग टू स्टार्ट फॉर यू एज यूजुअल जो वेंसडे नाइट्स को लेकर आते हैं नाइट कैफे मिडवीक मसाला।
1: आपका मोमेंट

मिडवीक मसाला। वेलकम एवरीवन, नाइट कैफे मिडवीक मसाला में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और कृति सैनन के बारे में बातें करना चाहेंगे। इनका जो लेटेस्ट रिलीज है कॉकटेल 2, काफ़ी लोगों ने इनकी अदायगी पसंद की और स्पेशली कॉस्ट्यूम जो इन्होंने पहना था, एंड एवरीवन इज सेइंग कि बहुत खूबसूरत दिख रही थी ये। इन्होंने कहा है कि फीमेल एक्टर्स आर ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड इन द इंडस्ट्री। इन्होंने कहा कि अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है ऑन फिल्म सेट्स, और इन्होंने कहा कि ग्रेटर रिस्पेक्ट और फेयरनेस होनी चाहिए फॉर फीमेल काउंटर पार्ट्स। इन्होंने कहा कि ये इनके जो कमेंट्स हैं इनफैक्ट डिस्कशन स्पार्क कर चुके हैं अक्रॉस सोशल मीडिया, और काफ़ी फैंस ने इनको सपोर्ट किया है अबाउट हर व्यूज़ ऑन वर्क प्लेस इक्वालिटी। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। कुछ देर में प्रेजेंटर 6 एक्शन अगेंस्ट AI डीप फेक्स, इस पर जानकारी आपके लिए।

0: वेंसडे का तड़का मिडवीक मसाला ऑन हब.
1: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. Midweek मसाला आपके लिए जारी है. Bollywood खबरें के बाद एक आप तक हम पहुंचा रहे हैं और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं. Pretty Zinta ने अप्रोच किया है बॉम्बे हाई कोर्ट को over AI generated deep fake content. इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे फेक वीडियोज और इमेजेस को रिमूव किया जाए. एक्ट्रेस ने कंसर्न रेज किया है अबाउट प्राइवेसी एंड मिस इन्फॉर्मेशन. और ये केस हाईलाइट करता है ग्रोइंग चैलेंजेस जो AI टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में अभी पोज कर रहे हैं. लीगल प्रोसीडिंग्स अभी भी चल रहे हैं और देखना है कि कोर्ट का फैसला आगे चलकर क्या होता है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ और प्यारे गाने आपके लिए.

एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करते रहेंगे, साथ में बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। वैसे जुनैद खान ने कहा कि आमिर खान को ये स्क्रिप्ट देना या दिखाना इन्होंने बंद कर दिया है। इन्होंने कहा कि ये अब आमिर के साथ कोई स्क्रिप्ट शेयर नहीं करते हैं। इनफैक्ट जुनैद खान आमिर खान के बेटे हैं। इन्होंने कहा है कि क्रिएटिव डिस्कशन समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और जुनैद प्रिफर्स मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस। और इन्होंने कहा कि द एक्सपीरियंस हेल्प्ड हिम ग्रो एज एन एक्टर। और इन्होंने इंटरव्यू करते हुए ये कहा कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बरकरार रखना ज़रूरी होता है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस एक्सप्रेस करना चाहता है या बनाना चाहता है व्हेन ही इज वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री एज हिज डैड एज हिज फादर आमिर खान। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ और गाने आपके लिए। बॉलीवुड खबरें आपके लिए चलता रहेगा कुछ गानों के बाद में।

0: Krishka moment. Krishka magic. Only on Hum.
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आपके लिए जारी है मिडवीक मसाला. शक्ति कपूर ने डेथ रूमर्स को रिस्पॉन्ड किया है. इन्होंने कहा है कि ये रूमर्स फॉल्स है अबाउट हिज डेथ. इन्होंने अपने फैंस को एड्रेस किया थ्रू अ वीडियो मैसेज ऑन सोशल मीडिया. इन्होंने कहा कि एक्टर ने ये बोला है कि ये रूमर्स काफ़ी इरेस्पॉन्सिबल और अपसेटिंग लग रहा है उनको, और इन्होंने कहा कि ये शायद लीगल एक्शन भी लेंगे. और फैंस ने वेलकम किया है इनका क्लैरिफिकेशन और सपोर्ट एक्सप्रेस किया है कि ऐसे चीज़ों के लिए लीगल एक्शन करना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ अनदर स्टोरी जहां पर लीगल एक्शन की बातें हो रही है. इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जिंटा ने कहा है कि ये इनफैक्ट ये ऑलरेडी मुंबई हाई कोर्ट
0: पहुंच चुकी है.

0: Andrews Bay on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured up front, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
0: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: हम. Night Cafe on Hum. थोड़ा हटके, थोड़ा स्पाइसी. ये है मिडवीक मसाला.
3: नाइट कैफे मिडवीक मसाला आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. और भी कुछ बॉलीवुड खबरें. आमिर खान ने शादी किया गौरी स्प्रेट के साथ में. इन्होंने कंफर्म किया हिज मैरिज टू लॉन्ग टाइम पार्टनर गौरी स्प्रेट. और कपल हैड बीन टुगेदर फॉर अबाउट टू इयर्स. वेडिंग एक प्राइवेट सेरेमनी रहा है. फैंस और सेलिब्रिटीज ने कंग्रेचुलेट किया है द न्यूली वेड्स. और ये अनाउंसमेंट काफ़ी वाइड स्प्रेड मीडिया अटेंशन अट्रैक्ट कर चुकी है. और अब फाइनली ये बात की पुष्टि हो चुकी है, कन्फर्मेशन मिल चुका है कि दोनों की शादी हो चुकी है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go.
2: You're listening to number one, humping Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वैसे अनु कपूर ने कहा है कि strong scripts ज़्यादा बेहतर होता है than big budgets. Veteran actor अनु कपूर ने emphasize किया है कि good storytelling आज के सिनेमा में अभी भी बहुत ज़रूरी है. ये audiences ज़्यादा connect करते हैं with strong scripts than expensive productions. इन्होंने encourage किया filmmakers to focus on content. इन्होंने example share किया है of low budget films जिनका बहुत ही बड़ा success रहा है box office पर. बॉलीवुड खबरों में आज के लिए बस इतना ही. मिडवीक मसाला आपके लिए जारी था और यहीं पर खत्म हो रहा है. एक और गाना आपके लिए.
1: Make some noise!

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays 6 to 10
2: a.m. फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
3: Jen didn't think she needed a DVS system.
4: Oh, I've got insulation in that.
3: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
4: Ah, yeah.
3: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
8: Time check.
9: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Good evening to you. With the latest at 9, I'm Jeff Bryan. The official cash rate has risen to 2.5%, the first hike in 3 years. Reserve Bank Governor Anna Bremen believes it's necessary for now, but notes financial conditions appear to be easing. A large section of State Highway 1 south of Kaikoura will stay shut for at least another couple of days. An orange heavy rain warning and strong wind watch are in place for Wairarapa and the eastern hills of Wellington. The Inter-Islander is warning customers of potential delays tomorrow. In Venezuela, mass burials have begun where unidentified victims after the earthquakes are being laid to rest. The death toll has risen to 3,535. More than 30,000 people are still missing. In sport, looking at what's been coming out of the ABs camp this week, where various people have tried not to talk about a rotation policy while not ruling it out. It will be interesting to see the squad unveiled by Dave Rennie at 3:30 tomorrow afternoon to face Italy. And Rugby League, with Machinery House in a league of their own, clear and dry for the showpiece State of Origin decider in Brisbane and kickoff in just over an hour.
8: Sports News,
9: brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
11: 8 to 9 आपके लिए मिड वीक मसाला था और अभी नॉर्मल नाइट कैफे आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें एवरी आवर पर टॉप ऑफ द आवर पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट होगा और तुरंत उसके बाद 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए, फॉर यू टू एंजॉय, फॉर अस टू टॉक लेस, ताकि वो म्यूजिक आप एंजॉय कर पाए. इस घंटे पर अमेजिंग सॉन्ग्स है, अमेजिंग आर्टिस्ट के लिस्ट हमारे पास है जो एक के बाद एक आप सुनेंगे. अब खुद ही सुने और एंजॉय करें और 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक के बाद मुलाकात होती है विद मोर इन्फॉर्मेशन.
12: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज. अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब.

0: Cafe on Hum.
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. ओकलैंड गेट रेडी. लेजेंडरी राहत फतेह अली खान ओकलैंड आ रहे हैं फॉर वन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. इनका मैजिक आप एक्सपीरियंस कीजिए ऑफ हिज टाइमलेस हिट्स, सोल स्टिरिंग कवाली, पावरफुल वॉइस जो इनका होता है, जिन्होंने ऑडियंस को कैप्टिवेट किया है अक्रॉस द वर्ल्ड. इनके गाने इतने मजेदार होते हैं. ट्रस्ट अरिना में ये शो होने जा रहा है 25 जुलाई को, प्रेजेंटेड बाय जयका स्टार प्रोडक्शन, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन और शहजादा प्रोडक्शन. आपके लिए टिकट्स आप dry.com से ले सकते हैं. राहत फतेह अली खान लाइव देखने का मौका है ऑन 25 जुलाई ट्रस्ट अरिना में. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. यू लिसनिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: या बीस को चाहते हो, या ब्रीज, मोर, एज, रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Henderson in just 35 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
2: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी guest Sarah.
3: क्या बनाते हैं kebab को special, Chef Alex?
2: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर kebab बनता है with love and passion.
3: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
2: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
3: 100% authentic and pure as mother's love.
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
5: अच्छा,
4: बताओ तुम्हारा फोकस, फोकस साडा कुछ नहीं.
5: मिसेस सिंह,
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33.

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश का साथ है। आज अगर आपका जन्मदिन है अ वेरी हैप्पी बर्थडे टीम हम की ओर से आपको हम विश करना चाहेंगे। बहुत सारी खुशियां बहुत सारी बधाइयां हम आपको देना चाहेंगे। कुछ स्पेशल हो रहा है, कुछ प्लान किया गया है या आगे चलकर भी कुछ होने वाला है, आपके लिए तैयारियां हो रही है, तो इसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हम देना चाहेंगे। बस आपको हमारा साथ देना है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनते रहो हम, मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

You're listening to number one. हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कुछ सामाजिक सूचनाएं भी हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे. श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन की ओर से सूचना है कि अखंड रामायण पाठ यहाँ पर होने जा रहा है सैटरडे 1st और संडे 2nd अगस्त को. सैटरडे को रोट पूजा होगा, आरती और रामायण पाठ भी होगा 8:45 AM. संडे को सुबह 10 बजे रामायण पाठ ख़त्म होगा. 10:30 AM हवन और आरती भी होगी. महाप्रसाद भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा थ्रू आउट द प्रोग्राम. और भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 09-836-4647 पर. मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: Night Cafe. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: You're humming along with Krish on number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath dunga midnight tak aur abhi इस घंटे पर भी आपका स्वागत है. जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स अभी भी अगर आपने रेडियो ट्यून इन किया है, स्वागत है आपका. ऑनलाइन लिसनर्स आपको भी शामिल कर रहे हैं, वेरी बिग वेलकम टू यू एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारा साथ हमेशा देते हैं. 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक खासतौर पर हमारे तमाम ऑनलाइन लिसनर्स को डेडिकेट करने जा रहे हैं. इस बार एंजॉय कीजिएगा बहुत ही प्यारा ये लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स जो एक के बाद एक आपके लिए बजेगा. हम बातें नहीं करेंगे ताकि आप इन गानों को एंजॉय कर पाएं.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one हम playing Bollywood's biggest hits Krish के साथ है. New Zealand Art and Culture Charitable Trust की ओर से एक बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट है. श्री राम लीला आपके लिए आयोजित किया जा रहा है. स्टॉल इंक्वायरीज के लिए आप मास्टर अशोक से बातें कर सकते हैं 021-179-5459 पर. रामलीला एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होने जा रहा है. सेव द डेट, ये डेट आपको मार्क करके रखना है. 8 अगस्त को होगा और भी डिटेल्स जो है बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना आपके लिए है जो रामलीला लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 8 अगस्त. क्रिश के साथ है और भी प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे.

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: Maddie didn't think she needed a DVS system.
2: I've got a heat pump.
1: That should do, but it didn't do it.
0: Did it, Maddie?
2: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
1: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी टिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टब से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
5: Indelible Homes, your building expert. Indelible Homes.
6: The beat of Bollywood.
7: हमारी कोई ब्रांच नहीं है
6: नाइट कैफे आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम
8: आप सुन रहे हैं आपके नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं ओकलैंड गेट रेडी फॉर अ नाइट ऑफ अनस्टॉपेबल लाफ्टर ट्राइविजन इवेंट्स प्रेजेंट्स द ग्रेट कॉमेडी नाइट फीचरिंग कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर ये दोनों लाइव ऑन स्टेज परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं डबल द कॉमेडियंस डबल द लाफ्टर watch two of India's biggest comedy stars. Ek saath mein ye perform karenge for one unforgettable evening. Inka magic of live comedy experience kijiye beyond the TV screen. Inka laugh out loud moments ko experience kijiye. Hilarious stories suniye. Razor sharp punchlines bhi sunne ka mauka milega. Hasne ka mauka milega. Aur kafi audience interaction bhi hoga inke show mein. तो ब्रिंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर द परफेक्ट नाइट आउट अनफॉरगेटेबल मेमोरीज क्रिएट करने के लिए आप आ जाइए और वीआईपी टिकट्स बिक चुके हैं तो आप जल्दी से टिकट्स जो रह गए वो आप ले लें ओकलैंड इज बजिंग सो डोंट वेट अंटिल रिमेनिंग सीट्स डिसअपीयर आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है आप इजिली बुक कर पाएंगे अपने लिए सीट्स टिकट्स बहुत ही जल्दी से बिक रहे हैं ग्रैब योर टिकट्स नाउ एट bookmyevent.co.nz बिफोर दे आर गॉन 18th जुलाई को ये होने जा रहा है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होगा अगर आप 0800-004-866 पर कॉल करते हैं एंड इफ़ यू क्रैक अ जोक ऑन एयर इफ़ द आरजे ऑन एयर लाफ्स आपको डबल पास मिल सकता है ओनली क्लीन एयर क्लीन ऑन एयर फ्रेंडली जोक्स होने चाहिए प्लीज़ तो आप ये कर सकते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 6 PM के बीच और ऐसे ही आप जीत पाएंगे डबल पास हमारे साथ होकर मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ सुनते रहो हम

0: You're listening to number one, Humping Bollywood's biggest hits. Night Cafe जारी है, 8th जुलाई आज है, और जितने भी हमारे रोवर लिसनर्स हैं, आपको भी शामिल कर रहे हैं. अभी अगर आप हमारा साथ दे रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो वेरी बिग वेलकम टू यू. सुनते रहो हम, क्योंकि आपके लिए आपके फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करते रहेंगे. क्रिएटिन में हेल्प ट्रीट डिप्रेशन, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे एविडेंस ढूंढ निकाला जिससे लगता है कि क्रिएटिन में सपोर्ट मेंटल हेल्थ. ये सप्लीमेंट कुड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ डिप्रेशन ट्रीटमेंट्स, ऐसा कहा है रिसर्चर्स ने. यूनाइटेड स्टेट्स की ये स्टोरी 30 जून को पब्लिश किया है, और रिसर्चर्स का मानना है कि इससे ब्रेन एनर्जी मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, और काफ़ी क्लिनिकल स्टडीज़ अभी फ़िलहाल ज़रूरी है इसको कंफर्म करने के लिए. तो ये फाइंडिंग्स एक प्रॉमिसिंग एरिया ऑफ मेंटल हेल्थ रिसर्च बन सकता है, लेकिन अभी काफ़ी टेस्ट करना बाकी है, स्टडीज़ करना बाकी है, क्लिनिकल स्टडीज स्पेशली टू प्रूव कि वेदर ये सच है या नहीं. तो अगर आपको कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, तो आप प्लीज़ सलाह मशवरा प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर ले फ्रॉम योर मेडिकल प्रोफेशनल. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, कुछ और प्यारे गाने आपके लिए.
1: एक

0: Cafe on Hum.
1: It is our final hour, everyone. Welcome back. Night Cafe में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. अभी 8 से लेकर अभी तक आपने हमारा साथ दिया. Thank you. 8 जुलाई आज है, तो ऐसे में काफ़ी लोगों का जन्मदिन है. वेरी हैप्पी बर्थडे. कुछ स्पेशल डे है, उसके लिए भी बहुत सारी बधाइयाँ आपको. ऑनलाइन लिसनर्स, नाइट शिफ्ट वर्कर्स, आपको भी शामिल कर रहे हैं हम. सुनते रहो आपके फेवरेट सॉन्ग्स हमारे साथ होकर. और अभी तो एक और वंडरफुल लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स मैं लेकर आया हूँ, जिसमें बैक टू बैक सॉन्ग्स बजेंगे फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, जिसमें प्यारे गाने हैं. अरमान मलिक, उदित नारायण, अमित कुमार, श्रेया घोषाल, बेनी दयाल, तनिष्का सांघवी, सतिंदर सरताज को आप सुनेंगे, साथ ही में हेमेश्वर शमिया को भी आप सुनेंगे. एन्जॉय एवरी वन.

ಅದೊಂದು ತತ್ವ.

0: Bollywood.
1: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: नट खट जट लटक मटक लचक मचक लचक मचक चाल चलत जा
3: ए छोरा गांडा

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're humming along with Krish on your number one hum playing Bollywood's biggest hits. AI सभी जगहों पर है तो हम podcast सुनना ना भूले क्योंकि इसमें रुजबे और सैंडी बहुत ही interesting बातें करते हैं with AI specialist दर्शित पांड्या. ये एक senior principal engineer है platform at Zerko and an AWS community builder जो बहुत ही बारीकी से breakdown करते हैं the world of artificial intelligence in a way that actually makes sense. चाहे ChatGPT हो या AI at work हो to job security, privacy concerns, opportunities या कोई भी skills that you need for the future, ये conversation ये सारे questions का जवाब देता है और discuss करता है इन मुद्दों को. चाहे आप excited हो, curious हो या फिर little nervous about AI, ये episode आपके लिए एक practical guide है to understand कि टेक्नोलॉजी किस दिशा में जा रही है और कैसे आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल सकते हैं. तो AI is everywhere, लेकिन इसका क्या मतलब हमारे ज़िंदगी के लिए होता है, हमारे काम के लिए होता है, ये एपिसोड आप सुनना ना भूले. 5599 पर टेक्स्ट करें ड्राइव फॉर द फुल ऑडियो. इसके अलावा ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए भी आप हमारे पास 5599 पर BF भेजे, जहां पर फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय एंड पूजा होता है फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो. तो हमारे पॉडकास्ट को आप सुने क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके लिए यहां पर डिस्कस किया जाता है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं.

कैफे ऑन हम। हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: कैफे ऑन हम।
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। याद रहे म्यूजिक स्टेशंस को भी आप रोवा के जरिए सुन पाएंगे। हम रिवाइंड में आप 60s और 70s हिट्स सुनेंगे। 80s जूक बॉक्स में काफी 80s ईरा ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स आप सुनेंगे। फीजी भजन में 24/7 फ्री भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें फिजीज बेस्ट आर्टिस्ट के कीर्तन आप सुन पाएंगे। चढ़ती कला है पंजाबी हिट्स, फिजी कीर्तन संग्रह, बिगर चॉइसेस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट यहाँ पर होंगे आपके लिए इनके गाने सुनने का मौका। और राहत फतेह अली खान फॉर द लव ऑफ सूफी एंड कवालीज, आप इनके म्यूजिक स्टेशन जो है राहत फतेह अली खान नाम के वो आप चेकआउट करें। इट इज़ गोइंग टू गिव यू रियली नाइस सॉन्ग्स। तो ये म्यूजिक स्टेशन सुनना ना भूले, रोवा के जरिए आपको सुनने को मिलेगा। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होती है थर्सडे नाइट नाइट कैफे लेकर मैं आ जाऊंगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिए, कृष का बहुत सारा प्यार। हैव अ गुड वन एवरीवन एंड हैव अ गुड नाइट।

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years।
4: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
5: G'day Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply. Night Flight.

Flight on Hum. वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
2: Sorry about that.
1: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
3: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
4: Playing Bollywood's biggest hits. Night Flight on Hum.
5: This one coming straight from out of the dancehall.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल

0: विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert. Indelible Homes.
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari good brands nahi hai.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: आपके सामने एक red button है. नहीं दबाना था।
6: The madness is back, धमाल 4।
7: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
6: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4, directed by Indra Kumar.
8: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
6: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
9: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता?
10: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
11: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा? बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
12: Shh, Mrs. Singh.
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
14: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Playing Bollywood's biggest hit.

अपने वस्त्र नहीं अपना मन ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m. आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
5: Make long weekend lie-ins longer with Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds with 55% off the Sublime Serenity Breeze queen size now from 1687. Find your best sleep in our long weekend sale at Beds R Us Marigao and Pokekohe, where dreams begin.
6: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
1: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
7: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. A new report into transport costs has found it accounts for more than 15% of household expenditure. Some are having to fork out an extra $65 per week, though, on fuel. Lead author Angela Curl says fuel is volatile.
8: It's kind of out of our control and can increase quite rapidly. And then, obviously, when people are already spending a large proportion of their income on transport, it can put people in really challenging situations.
7: Auckland's entire rail network is closed to the public today as the City Rail Link is put through its paces with a dress rehearsal. Train drivers, managers and controllers are practicing before passengers can jump on board. The network will stay closed for the rest of the public holiday weekend for maintenance and repairs. Homeowners are being assured that an OCR hike is unlikely to have an immediate impact. BNZ's Stephen Topless says most lenders already factored it in.
9: Financial markets have already priced in a series of rate increases. It will matter if you're on a floating mortgage, but the vast majority of New Zealanders don't do that.
7: Farmers across Kaikoura, Marlborough and North Canterbury are anxiously waiting to tally up the cost of a massive storm. Local Federated Farmers spokesperson Bex Green says the true impact isn't yet known.
10: Still got rain coming down at the moment. We still can't really assess the damage just yet. We've still got flooding in paddocks and slips everywhere.
7: To rugby league with Machinery House in a league of their own.
11: He's got the ball away! Hudson Young scores on the siren!
7: New South Wales have ambushed Queensland 30 points to 12 in Brisbane to claim the State of Origin Series 2-1. And a day off at the FIFA World Cup today before the quarterfinals begin. At 8 a.m. tomorrow, France takes on Morocco.
0: Sports News.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: 8 डिग्री टेम्परेचर ऑकलैंड में अभी आप फील कर रहे हैं। आज का हाई 14, ओवरनाइट कम से कम 8 डिग्री एक बार फिर रहेगा। आज कुछ बादल छाए रहेंगे, आज कुछ देर के से बारिश शुरू हो जाएगी, रह रहकर हल्की बारिश शाम तक होती रहेंगी। सनराइज 7:33 AM पर, सनसेट 5:20 PM पर होगा।
13: Furniture for everyday luxury living.
1: Breakfast catch up.
12: 3 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर। नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। थर्सडे 9 जुलाई की ये सुबह मुबारक हो आपको। गुड मॉर्निंग।
14: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से।
12: कई लोगों के लिए तो आज बड़ा खुशी का दिन होगा क्योंकि इट्स गोइंग टू बी द फाइनल डे इन द ऑफिस।
14: यस, क्योंकि कल छुट्टी है और फ्राइडे बीइंग छुट्टी रहे तो वैसे ही खुशी जो है ये हो जाती है। और यू नो लॉन्ग वीकेंड जब मिल जाए तो बड़ा मजा आता है। फिर यहाँ पर एक खासियत यही है, न्यूजीलैंड में फर्स्ट क्वार्टर में आपको इतनी सारी छुट्टियाँ जो ये मिलती है कि बिफोर यू नो जो लास्ट क्वार्टर आता है साल का, बहुत कम छुट्टियां रहती है बीच में ना। सो दिस इज लाइक वन ऑफ दोज टाइम जहां पर आपको अभी फिलहाल छुट्टी मिल रही है। अब इसके बाद आई थिंक एकदम एंड में, साल के एंड में जाकर आपको छुट्टियां मिलेंगी। तो एंजॉय दिस छुट्टी एंड अच्छे से स्पेंड करें यार, यूज इट वाइजली, डू थिंग्स दैट यू लव टू डू, नॉट जस्ट यू नो स्लीप इन एंड पूरा का पूरा दिन जो है आपका निकल जाए।
12: मेरे मन में एक सवाल आया सुबह सुबह कि पब्लिक हॉलीडे किस दिन ज्यादा बढ़िया होता है, फ्राइडे को या मंडे को?
14: आई वुड से मंडे को मेंटली, क्योंकि हम वही वाइब में रहते हैं ना कि यार मंडे को नहीं जाना है। आई मीन मेरे लिए मंडे को, इट वुडंट बी द सेम फॉर एवरीवन, बट या यू कैन लेट अस नो फॉर यू व्हाट्स द प्रेफरेंस लाइक।
12: खैर, मुबारक हो ये सुबह जहां कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं। आज एक बार फिर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, और आज एक और बहुत ही खूबसूरत सफर आपके लिए तैयार करके हम लेकर आए हैं, एंड होपफुली आप भी रेडी होंगे हमारा साथ देने के लिए इन चार घंटों की खातिर।
14: बिल्कुल, जहां पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा में ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ हम कर रहे हैं शुरुआत। खबरों में क्या कुछ होगा ये जरूर चेकआउट करेंगे आप सभी के साथ। फिर उसके बाद आज यू नो आपके लिए 7 AM के बाद, जबकि हम लेकर आने वाले हैं मॉर्निंग मैडर्स, तो उसमें राशि वाइब्स भी रहेगा, दिन कैसा बीतेगा ये बताएंगे, प्लस आपको हैप्पी बर्थडे जो है ये भी विश करेंगे।

0: Sunnyside Up.
1: हर सुबह सनी साइड अप स्टोरीज जो है ये आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। और आज भी एक और कहानी कि किस तरह से लोग जो हैं दूसरों की ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए या दूसरों की ज़िंदगी में एक फ़र्क लाने के लिए अपनी ओर से बगैर यू नो किसी के बोले बगैर किसी से मांगे जो अपना कंट्रीब्यूशन है ये देते रहते हैं। और आज की हमारी कहानी जो है एक यंग लड़के के बारे में है जिसका नाम है आकाश सरोज। ये जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं उनके लिए डिलीवरी राइडर का काम करते हैं इन दिल्ली, और एक स्लम में ये रहते हैं। और हर दिन उनके बारे में रिपोर्ट आई है कि कम से कम 10 से 12 घंटे जो हैं ये दिल्ली की भीड़ भाड़ में एक जगह से दूसरी जगह अपने मोटरसाइकिल पर लोगों तक खाना पहुंचाने में बिजी रहते हैं। पिछले हफ्ते एक लोकल कम्युनिटी ग्रुप जो है जो आसपास रहने वाले लोगों के वेलफेयर को ट्रैक करती है ने कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज़ें पाई आकाश के बारे में। और ये बात सामने आई कि आकाश जो फूड डिलीवरी करके जितने पैसे कमाता था और जो टिप्स उसको मिलते थे उस हर हफ्ते वो ऑटोमेटिकली अपनी आधी आमदनी जो है वो उसको बगल कर देता था। उस पैसे का इस्तेमाल करके वो सिंपल वो मील्स और बेसिक दवाइयां जो है बेघर लोगों के लिए वृद्ध लोगों के लिए खरीदता था जो उनके डिलीवरी रूट्स के आसपास रहते थे। और जब उनसे पूछा गया कि क्यों उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा ही पैसा जो है ये उनकी कमाई कम होती है, तो उनसे पूछा गया कि क्यों वो ऐसा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं हर दिन इन लोगों को देखता हूँ व्हाइल आई एम रशिंग टू डिलीवर फूड टू वेल्थी हाउसेस, अमीर घरों में खाना पहुँचाने के लिए जब मैं जाता हूँ तो मैं इन लोगों को देखता हूँ। मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक नौकरी है, उनके पास कोई नहीं है, मैं बस अपनी रोटी जो है उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये कहानी जो है आकाश जो है जब इनकी सामने आई, पीपल वर रियली मूव्ड बाय हिज काइंड जेस्चर।
2: यू नो जस्ट इमेजिन अबाउट द फैक्ट कि अक्सर लोग जब कंपैरिजंस करते हैं कि मेरे पास ये है उनके पास वो है, तो वो कंपैरिजन खुद को और कम दिखाने के लिए लोग कर बैठते हैं। वो अपने आप को ऐसा दर्शाते कि उनके पास बहुत कुछ है, मेरे पास है ही नहीं ऐसा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक कंपैरिजन किया और ये कंपैरिजन करते हुए इन्हें ये समझा कि इनके पास जो है वो उनके पास नहीं है, और उस भाव से फिर इन्होंने ये फैसला लिया कि इंस्टेड ऑफ मी जस्ट यू नो गोइंग ऑन विद माय ओन लाइफ आई विल मेक सम यूज ऑफ इट, और फिर उसके जगह पर इन्होंने लोगों की मदद करने की सोची। सो इमेजिन ना, कभी कभी हम कहते हैं कि कंपैरिजन करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन अगर आप इस हिसाब से कर रहे होते हैं तो शायद आपको एक बहुत बड़ी बात समझ में आएगी जो उस हिसाब से नहीं आएगी जहां पर आप खुद को कम दिखाने के लिए, खुद को नीचा दिखाने के लिए कंपैरिजंस करते हैं।
1: एग्जैक्टली और ऐसी स्टोरीज हर सुबह ब्रेकफास्ट कैचअप में आपके लिए हम लेकर आते हैं। अभी 18 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर, थोड़ी ही देर में न्यूज हेडलाइंस आपके लिए होगा।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: ए देखो हम आ गए।
0: Ladies and gentlemen,
4: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
4: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
5: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.
6: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाएं।
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी, कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
8: The breakfast show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
11: Global headlines.
12: आज सुबह के मुख्य समाचारों में, टेकी में नेटो समिट के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस आज रात ईरान पर एक बार फिर हमला कर सकता है और नेवल ब्लॉकेड वापस लाने की धमकी दी है, हालांकि उनका मानना है कि नया वो शुरू नहीं होगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ एक मीटिंग में ट्रंप ने उन्हें खुद का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की कैपेबिलिटी देने पर चर्चा की और बताया कि वो जल्द ही रशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन से बातें करेंगे। नेटो एलाइज पर अपना टोन थोड़ा पॉजिटिव करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक बेड मोमेंट की वजह से ईरान में वो में साथ देने से मना किया था, जबकि यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक उनका अगला मिलिट्री कदम अभी प्रोसेस में है। भारत में 11 साल की एक बच्ची के बलात्कार और हत्या के खिलाफ निकाली गई एक प्रोटेस्ट रैली के दौरान भारी भीड़ को हटाने के लिए ममता बनर्जी ने गुस्से में एक पार्टी वोकर को थप्पड़ मार दिया। हाईकोर्ट की परमिशन के बावजूद बीजेपी वोकर्स ने इस रैली को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हुई धक्का मुक्की, नारेबाजी और अंडे फेंकने की घटनाओं को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस बवाल के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर प्लैंड रैम्पेज का आरोप लगाते हुए पुलिस की भी कड़ी आलोचना की है। फिजी में सेंगांगा और सिंगटोका में गन्ने के किसान गारंटीड शुगरकेन प्राइस को $85 से बढ़ाकर $110 करने और $65 कैन डिलीवरी पेमेंट को कम करने की मांग पर अड़े हैं और नुकसान के डर से उन्होंने फसल की कटाई रोक दी है। हालांकि सरकार ने मैनुअल हार्वेस्टर्स के लिए पेमेंट $3 से $5 पे टन कर दी है और फ्यूल सब्सिडी के लिए 2025 और 2026 बजट में $5 मिलियन एलोकेट किया है। किसानों ने इस मुद्दे के पॉलिटिसाइजेशन के आरोपों को खारिज किया है, जबकि कई किसान कह रहे हैं कि उनको अभी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में आज आराम का दिन है, जिसके बाद कल से क्वार्टर फाइनल्स शुरू हो जाएंगे। कल पहला क्वार्टर फाइनल सुबह 8 बजे फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जाएगा। शनिवार की सुबह 7 बजे दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन बेल्जियम से खेलेगा। रविवार को 9 बजे नॉर्वे की भिड़ंत इंग्लैंड से होगी और रविवार को आखिरी क्वार्टर फाइनल दिन में 1 बजे अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड अब भारत के खिलाफ T20 सीरीज में 2-0 से आगे हो चुका है। कल दूसरे मैच में इंग्लैंड की जीत इंडिया के खिलाफ 125 रन से हुई। दोनों टीमें अब अपने अगले मैच की तैयारियों में लगी हुई हैं। इसके अलावा फिजी में एक्स्ट्रा प्रीमियर लीग के अगले राउंड के मैचेस जो हैं इस सप्ताह खेले जाएंगे। नावुआ की भिड़ंत लोटोका से होगी, सुवा मबा को होस्ट करेगा, नांदी और लंबासा का मैच नांदी में खेला जाएगा, नंडरोंगा तालिबू ने तसीरी का सामना करेगा, जबकि नसीनू की भिड़ंत रेवा से होगी। और साथ ही में स्टेट ऑफ ऑरिजिन के एक मैच में कल ब्लूज की जीत मरून्स के खिलाफ 30-12 से हुई, जिसके बाद ब्लूज ने इस टाइटल को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
10: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
13: Bollywood's most wanted.
14: Gundi khad jao ya seedha andar aao.
15: Main laun apna A game.
13: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो आपके लिए ये आज का पहला चैट बस्टर ऑन अवर शो हम लेकर आ रहे थे. उम्मीद है यू एंजॉयड इट. पायल देव, बादशाह और साथ में विशाल ददलानी की आवाजें रही कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, क्योंकि भरे बाजार एक गाना जो है कि 90s में भी आया था और नमस्ते इंग्लैंड जो 2018 में आई उसका ये आपको हम रिक्रिएटेड वर्जन जो है आज सुना रहे थे. वैसे बॉलीवुड में क्या कुछ हो रहा है बाय द वे?
1: बहुत सारी चीजें हो रही हैं. यू नो हाफ द ईयर इज गोन. अब कई जगहों पर जो तैयारियां चल रही हैं या फर्स्ट 6 months का रिव्यू वगैरह जो है ये भी चल रहा है, तो इस पर अपडेट्स तो आपको देंगे. लेकिन अभी जो खबर आ रही है, सबसे पहले रणबीर कपूर और यश की रामायण जो है इसको लेकर काफी शोर है, क्योंकि द फर्स्ट ट्रेलर इस पिक्चर का जो है ये 18 July को रिलीज होने जा रहा है.
0: ओह वेरी इंटरेस्टिंग.
1: और बस ऐसे ही ऑनलाइन ट्रेलर ड्रॉप नहीं होने वाला है, बल्कि एक बहुत बड़ा लॉन्च इवेंट जो है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दिल्ली में. एंड डायरेक्टर नितेश तिवारी, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और साथ में कई स्टार्स जो है इस फिल्म के ये भी वहां पर उस दिन मौजूद रहेंगे. और कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, रकुलप्रीत सिंह, कुणाल कपूर ये सभी वहां हो सकते हैं. हालांकि यश और सनी देओल के बारे में अभी तक कोई खास कॉन्फर्मेशन जो है ये नहीं आया है.
0: तो काफी इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज आई थिंक हमने इसके बारे में एक दिन पहले भी बातें की थी कि आजकल जब भी कोई भी फिल्म जो है ये लॉन्च होने वाली होती है या फिर रिलीज होने वाली होती है तो इसका एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट होता है जहां पर कोई ट्रेलर लॉन्च हो या म्यूजिक लॉन्च हो या स्टार कास्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है. एंड महाभारत जिसमें ऑफकोर्स रणबीर कपूर और साथ में यश दिखने वाले हैं, या माफ कीजिएगा नॉट महाभारत, रामायण, ये ऑलरेडी इतनी यू नो टॉक्ड अबाउट मूवी है इस साल की कि इसके बारे में बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं. तो देखते हैं कि वंस दिस इवेंट हैपेंस उसके बाद और क्या कुछ बातें जो है इससे जुड़ी ये सामने आती है. फिलहाल आपको याद होगा हम आपके साथ कई तरह के जो बॉलीवुड रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं और कंपटीशन के रूप में आपके साथ इसे हम खेलते हैं. तो आज बॉलीवुड रिलेशंस कंपटीशन आपके लिए हम लेकर आए हैं जहां पर आपको बताएंगे हम कुछ एक्टर्स का नाम, सीधा सीधा नहीं, रिलेशंस जोड़कर किसी और बॉलीवुड नोन सेलिब्रिटी के साथ.
1: Okay.
0: So, आपको फिगर आउट करना होगा कि उनके रिश्ते में ये जो सेलिब्रिटी है कौन है और फिर उसके बाद आपको अपना जवाब जो है ये हमारे पास सेंड करना होगा ऑन 5599. आपको BF लिखना होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ले लिया जाए कि दबंग फिल्म की बातें हम कर रहे हैं तो हम आपसे बोलेंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और अरबाज खान का भाई.
1: Okay.
0: राइट हाँ. तो रिलेशन जोड़ेंगे आप, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी होंगी सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान के भाई होंगे सलमान खान, जिनकी एक फिल्म साथ में आई है वो है दबंग, जस्ट लाइक दैट. तो okay. आपको बस ये रिलेशंस जो है सॉर्ट आउट करना है और फिर आंसर हमारे पास भेजना है. तो आज थोड़ा सिंपल ही रखते हैं. चलो, सिद्धार्थ मल्होत्रा के बच्चे की माँ और साथ में पंकज कपूर का बच्चा.
1: सिद्धार्थ
0: मल्होत्रा कपूर
1: सिद्धार्थ मल्होत्रा के बच्चे की माँ और
0: पंकज कपूर का बच्चा.
1: ओके,
0: लेट्स सी इफ यू कैन फिगर आउट ये कौन सी फिल्म है. बट लेट मी टेल यू, इट इज अ वेरी पॉपुलर फिल्म. जिस साल इनफेक्ट ये फिल्म आई थी, रिलीज हुई थी, उस साल की वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज रही है ये.
1: तो कौन सी ये फिल्म है, अब जवाब आप हमें दे. अभी तो मैं कैलकुलेट करके नतीजे पर
0: पहुंच तक ही नहीं पहुंचे आप.
1: नहीं, वो कर लिया. अब इससे आगे का काम जो ये मुझे करना है.
0: Okay.
1: तो अब आप जोड़े सिद्धार्थ मल्होत्रा के बच्चे की माँ और पंकज कपूर का बच्चा, कौन सी फिल्म है. तो
0: पहले एक्टर्स आप डिसाइड कर लो कौन हो सकते हैं, देन यू कम डाउन टू द मूवी. BF स्पेस से आंसर ये नेम लिखकर 5599 पर भेजे. 2 मिनटों के बाद देखते हैं किसका क्या होता है और क्या कोई हमें सही जवाब दे भी पाता है या नहीं.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: हम
3: accurate traffic.
4: Checked your KiwiSaver fees lately?
5: Mainly fine, but a lot of cloud and a cool high of 14. No trains running at all today and all long weekend. It's a City Rail Link trial that's going down, so it could be more traffic on our motorways this morning. Southern starting to build south of Mataco around Manurewa and through to Papatoetoe. It's a little patchy. 24 minutes Mataco to town at 49 from Drury. Northwestern just slowing close to the city. Northern patchy, but fine.
4: See what you could save with Simplicity, the low-fee, non-profit KiwiSaver provider.
6: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimise landfill waste. To find out what's accepted, where to place it and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
8: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz
9: At Bunnings, you can make cleaning up your home easy with Sally's 750ml Rapid Mold Killer, only $9.90. Or an all-set 50-litre clear storage container, just $8.99. Bunnings makes cleaning easy. Lowest prices are just the beginning.
10: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है अच्छा बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
11: Mrs. Singh
12: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
13: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
14: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
15: आजरा ले ले तू मजा
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: समय क्यों देखें फिलहाल 19 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में और इंडिया की ओर से एक यंग लड़के ने इतिहास जो है ये कायम किया है 36 सालों के बाद कुछ ऐसा किया है या इससे पहले ऐसा कुछ 36 यानी 36 ईयर्स पहले किया गया था क्या है ये डिटेल्स कुछ देर बाद हम आपको देंगे इस प्रोग्राम में बट राइट नाउ सबसे पहले आपके गुड मॉर्निंग के जो गिने चुने मैसेजेस सुबह सुबह आए हैं थैंक यू सो मच सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा हैव अ वंडरफुल डे मैंडी आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग
0: और इसके अलावा आज अगर देखा जाए तो मिस्टर माचा माचा थोड़ा सा चूक गए मेंडी के मामले में ये आज मेंडी ने पहले ही मैसेज कर दिया राम राम जय साई राम हैप्पी थर्सडे पीपल हैव अ ब्लेस्ड डे आपने कहा है थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए
1: और उसके बाद रवनेश अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्कारम विजय पूजा ऑल स्टाफ एंड लिसनर्स ऑफ हम हैव अ हैप्पी डे आपको भी ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो
0: Good morning, Jai Sai Ram Pooja and Vijay. Have an awesome long weekend. Sai's blessings, aapne kaha hai. Thank you so much, Bobby ji. Aapke message ke liye bahut bahut shukriya. Aur dusri aur humne jo sawal pucha, uska jawab bhi inhone already de diya hai. To good morning message bhi aa gaya inka. Inhone jawab bhi de diya. Dono cheezon mein inhone part jo hai ye liya hai. Thank you so much, Bobby ji, for being with us. Har subah hamara saath jo hai ye dene ke liye. अभी समय की ओर देखें तो बस 18 मिनट्स बाकी हैं सुबह 7 बजने में अभी तो सफर की शुरुआत की थी अभी तो आपसे गुड मॉर्निंग बोला था और देखो ऑलरेडी 7 बजने वाले हैं मतलब हमारे शो का पहला घंटा जो ये खत्म होने वाला है दूसरा घंटा शुरू होने वाला है सो इधर क्वेश्चन भी हमने पूछा है इस मामले में एंड इट्स वेरी इजी बॉलीवुड रिलेशन आज सुबह सुबह आपके लिए हम लेकर आए हैं बस छोटी सी चीज करनी है आपको रिलेशनशिप जो है ये फिगर आउट करना है एक्टर्स का नाम जैसे मिल जाए तो वो कौन सी फिल्म होगी जिसमें ये दोनों एक्टर्स दिखे थे बस उस फिल्म का नाम आपको हमें बताना है इतना सिंपल है ये और हमने फिर क्या किया था, क्लू के तौर पर आपको बताया था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम दबंग एज अ आंसर रख रहे हैं तो उसका क्लू ये होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी अरबाज खान के भाई. अब दोनों को आप इवेलुएट करोगे तो जवाब आएगा सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान. कौन सी फिल्म थी जिसमें इन दोनों ने साथ में काम किया? दबंग. इट्स दैट सिंपल. सो इसी तरह से आपको इवेलुएट कर ये बताना है सिद्धार्थ मल्होत्रा के बच्चे की माँ और पंकज कपूर का बच्चा. अब इन दोनों को आप अगर इवेलुएट करोगे, रिलेशनशिप सॉर्ट आउट करोगे, दो एक्टर्स का नाम मिलेगा और उन दोनों एक्टर्स ने कौन सी फिल्म में एक साथ काम किया है ये आपको बताना है. क्लू के तौर पर हमने ये कहा था कि ये जो फिल्म है जिस साल आई थी उस साल की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज रही है.
1: तो अपना जवाब हमारे पास भेजें, BF आंसर और नाम. और कल जया मिस आउट हो गई थी लेकिन आज वापस इनका मैसेज आया है. गुड मॉर्निंग एंड राम राम विजय एंड पूजा, आज का दिन शुभ और मंगलमय रहे, लविंग द प्रोग्राम. थैंक यू सो मच जया जी आपके मैसेज के लिए. आपको भी इस सुबह और इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां.
0: अगर आप हमारे पास जवाब के रूप में गुड न्यूज लिख कर भेज रहे हैं, विच वी कैन सी कि अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग, तो आपको बता दें ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है. आप अपने आंसर्स जो है थोड़ा सा सोच लीजिए और फिर एक बार हमारे पास आप सेंड कर सकते हैं. गुड न्यूज इज नॉट करेक्ट एट ऑल. आप कोशिश कर सकते हैं दोबारा से. मीना आपका मैसेज मिला है, साथ में नलिनी आपने अपना मैसेज भेजा है. सनीश थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली आप भी गलत हो गए. अभी तक अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 लोगों के सही आंसर्स आए हैं, बाकी सारे गलत आंसर्स हैं. तो रिमेम्बर सिद्धार्थ मल्होत्रा के बच्चे की मां और पंकज कपूर का बच्चा, दोनों को इवेलुएट करेंगे, दो एक्टर्स का नाम मिलेगा, इन दोनों एक्टर्स ने किस फिल्म में काम किया है ये आपको बताना है. BF अपना आंसर अपना नाम हमारे पास लिखकर. अभी अराउंड थ्रोबैक हम क्या करेंगे, सही जवाब आपको बता देंगे, विच मीन्स जवाब देने के लिए अब आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम है.
1: Good morning, Vijay and Pooja. Hope you guys have a blessed day ahead and a great long weekend. Komal, thank you so much. आपको भी इस दिन और लंबे सप्ताह की बहुत सारी शुभकामनाएं.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Accurate traffic.
2: Celebrate Matariki at Auckland Art Gallery.
3: Fine spells, lots of cloud, a high of just 14. No trains running today and all long weekend. A trial for the City Rail Link has knocked out all trains until Monday. If you're driving, Southern Motorway, 26 minutes, Manukau to town, 53 from Drury. A bit heavy at Drury and Manurewa, slow at Mount Wellington. Northwestern 23 and from Massey, slow from Greyland. Northern, pretty quick, just slow around Constellation and Esmond.
2: Matariki at Auckland Art Gallery. Waiata, Art, Kapahaka, Kai and more, 10th July.
1: Big savings in store this long weekend at Mitre 10 Mega Westgate of Henderson. 15% off pet toys, 20% off indoor plants and save on Bottle ID Advanced Interior 10 litre. July 9th se 12th tak. Sirf Mitre 10 Mega Westgate of Henderson mein.
4: Make long weekend lie-ins longer with Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds with 55% off the Sublime Serenity Breeze. Queen size, now from 1687. Find your best sleep in our long weekend sale at Beds R Us, Merigao and Pokekohe, where dreams begin.
5: MediaWorks complaints. How can I help?
6: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
5: Thank you.
6: It's all I can think about.
5: What does it sound like?
6: Yeah, I'd rather not.
5: Go on, why don't you have a crack?
6: Okay, got a plumbing problem.
5: Oh, I need a bit more than that.
6: They've got your back.
5: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
6: Oh, okay.
7: There's no better plumber to give it a crack.
5: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
6: No. I want a plumber.
8: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
9: And if you're just joining us after the break, we're talking about... Holy... $10 deals on Uber Eats. Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
10: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
10: Breakfast Catch-Up. Throwback.
12: बस 8 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और 7508 वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आपके मैसेज और आंसर के लिए विमलेश और प्रिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल, जय माता दी, हैव अ वंडरफुल एंड ब्लेस्ड डे। आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग।
13: इसके अलावा रोनल्ड, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आपका मैसेज हमें मिला है। फिजा हैं और नितिका, आपको भी थैंक यू सो मच। नताशा हैं, साथ में विधि का जवाब आया है एंड कृष्ण ने भी अपना आंसर हमारे पास लिखकर भेजा है। वैसे एक और एक मैसेज आया, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, बट थैंक यू आपके मैसेज के लिए। सो चलिए यहीं पर इसे अब हम एंड करते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा समय हमने दिया, बट दैट्स वेल वेट। तो हमने कहा था सिद्धार्थ मल्होत्रा की बच्ची की माँ यानी कि कियारा आडवाणी और उनकी प्यारी सी बेटी है, और उस हिसाब से कियारा आडवाणी विल बी द करेक्ट आंसर। और पंकज कपूर का बच्चा यानी कि शाहिद कपूर। सो इन दोनों की जो फिल्म जिसके बारे में आज हम बातें कर रहे थे वो कबीर सिंह, 2019 में ये फिल्म आई थी और 2019 की ये थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी रही है।
12: तो आप में से कई लोगों ने सही जवाब भी हमारे पास भेजा था, थैंक यू सो मच आप सभी के आंसर्स के लिए। बस थोड़ी ही देर में न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम लेकर आएंगे और अगले घंटे तो आपको वेरी हैप्पी बर्थडे भी विश करना है। मेक श्योर मैसेजेस समय से पहले आप भेज दें।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 9.3 डिग्री टेम्परेचर अभी आप फील कर रहे हैं आज का हाई 14, ओवरनाइट कम से कम 8 डिग्री होने वाला है, कुछ बादल छाए रहेंगे और आज बारिश जो है ये भी हो सकती है। सनराइज 7:33 AM पर, सनसेट आज का शाम 5:20 पर होगा।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Good morning. Morning Madness.
1: 3 मिनट हो रहे हैं 7:00। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग मैडनेस ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM या रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच।
3: वैसे मॉर्निंग मैडनेस पे चलिए शुरुआत करते हैं। ये रिमेम्बर कीजिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वार्टर फाइनल्स ये होने वाले हैं इसी वीकेंड, और लॉन्ग वीकेंड है यहाँ न्यूजीलैंड में, तो ऑफ कोर्स यू कैन एंजॉय सपोर्टिंग योर फेवरेट टीम एज वेल इफ दे हैव बीन थ्रू टू प्ले द कप क्वार्टर फाइनल्स। और ऐसे में आपको ये भी याद दिला दें कि फ्राइडे 10 जुलाई को सुबह 8 बजे फ्रांस और साथ में मोरक्को के बीच जो पहला क्वार्टर फाइनल्स का मैच जो है ये खेला जाएगा। दूसरी ओर सैटरडे 11 जुलाई को स्पेन और बेल्जियम के बीच भिड़ंत होगी सुबह 7 बजे। एंड संडे 12 जुलाई को नॉर्वे वर्सेज इंग्लैंड रहेगा 9 बजे, जिसके बाद अर्जेंटीना वर्सेज स्विट्जरलैंड ये खेला जाएगा दिन में 1 बजे। सो दिस वीकेंड फ्राइडे सैटरडे एंड संडे अ लॉट ऑफ यू विल डेफिनेटली बी क्वाइट बिजी सपोर्टिंग योर फेवरेट टीम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन एंड एंजॉइंग द मैच एज वेल। लेकिन साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि मैचेस आप इंजॉय कर रहे हैं, इसका मजा आप उठा रहे हैं, लेकिन फैमिली टाइम इज ऑल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट ना, तो अच्छे से प्लान कर ले। टाइमिंग हमने आपको बता दी है, ऑल द मैचेस आर क्वाइट अर्ली इन द मॉर्निंग अपार्ट फ्रॉम दैट वन मैच जो संडे को 1 बजे रहेगा, अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड। सो वर्क थिंग्स अराउंड दैट टाइम और फिर आप अपने फैमिली के साथ भी अच्छे समय बिता सकते हैं, प्लस फीफा वर्ल्ड कप का भी मजा उठा सकते हैं।
1: फिलहाल हमने कहा था कि किसी ने कुछ ऐसा अचीव किया है जो आफ्टर 36 इयर्स हुआ है, तो ये 18 साल के एक लड़के ने अचीव किया है जिनका नाम है अर्णव पपरकर। अर्णव पपरकर जो है ये विंबलडन के क्वार्टर फाइनल्स जूनियर्स कंपटीशन में बॉयज सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। ही इज रैंक्ड नंबर 19 और इन्होंने जापान के रियो तबाटा को 6-2, 6-1 से हराया और क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बनाई, लेकिन इससे पहले 2 बार वो तबाटा से हार चुके थे। एंड नाउ ही इज गोइंग टू फेस अमेरिकन जॉर्डन ली, जिन्होंने एक फेलो इंडियन को हराया अपने मैच में, तो क्वार्टर फाइनल्स में अर्णव पपरकर की भिड़ंत जॉर्डन ली से होगी, उनसे भी ये पहले हार चुके हैं। और ये एक ऐतिहासिक मोमेंट बताया जा रहा है जो इंडियन टेनिस के लिए, क्योंकि द लास्ट टाइम समवन रीच्ड द बॉयज क्वार्टर फाइनल वाज 36 इयर्स अगो, जब लिएंडर पायस जो है ये क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुए थे।
3: सो वेरी इंटरेस्टिंग, सो इन्होंने एक इतिहास कायम किया है और 36 सालों बाद, मतलब 36 इयर्स बाद जाकर ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन पाकर इन्होंने कहीं ना कहीं अपने नाम को तो इतिहास में शामिल कर ही लिया है, लेकिन अपने देश को भी कहीं ना कहीं इस हिस्टोरिक मोमेंट का हिस्सा जो है ये बनाया है। सो यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी सारी चीज़ें जो है ये हो रही है, और घंटे तो छोड़ो मिनट पे मिनट नई नई चीज़ें जो है ये हो रही है, जिससे जुड़े अपडेट्स आप तक लाने की पूरी कोशिश हम करते रहेंगे। इस घंटे भी मॉर्निंग मैडनेस में मैडनेस जारी रहेगा, कमिंग अप वेरी शॉर्टली आपके लिए आपके राशि वाइब्स।

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
0: Rashi Vibes.
2: सबसे पहले आज मेष यानी एरीज, आज लीगल मैटर्स आपके फेवर में जाएंगे, पैसे मिलेंगे, हेल्थ थोड़ा कमजोर रहेगा आज आपका और बिजनेस से आपको अच्छा फायदा हो सकता है।
3: वृषिनी टोरस, आज अगर आपके लिए देखा जाए तो बताया जा रहा है कि आज का दिन आपके लिए काफी बिजी रहने वाला है। देयर आर थिंग्स दैट यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली ताकि आप समय पर अपनी चीजों को कर पाए। और अगर नौकरी की तलाश आप कर रहे थे इतने दिनों से तो बेरोजगारी दूर होगी। पैसों के मामले में भी आज आप काफी फायदा जो है ये देख सकते हैं।
2: मिथुन यानी जेमिनी, क्रिएटिव कामों में काफी अच्छा परिणाम आप हासिल करेंगे। लॉन्ग वीकेंड है तो किसी इवेंट में भी हिस्सा लेने का मौका आपको मिल सकता है। घर बाहर खुशियां होंगी आपके लिए और आपके बिहेवियर से और आपकी कैपेबिलिटीज से आपके जो सुपीरियर्स हैं ये बहुत इम्प्रेस्ड रहेंगे।
3: कर्क ने कैंसर आज आपके लिए बताया जा रहा है कि गुस्से पर कंट्रोल बहुत जरूरी है, हेल्थ का भी ध्यान देना होगा आपको। कोई बुरी खबर मिल सकती है तो इसके लिए थोड़ा केयरफुल हो जाए, चिंता

0: और तनाव जो है ये आज आपको घेरे रहेंगे. सो इन टोटल इट्स गोना बी अ बिट हैवी डे फॉर ऑल द कैंसेरियंस आउट देयर.
1: सिंह यानी लियो, मेहनत का फल मिलेगा, काम आपके पूरे होंगे, इससे खुशी होगी, पॉपुलैरिटी आपको आपकी बढ़ेगी. और आज कहा जा रहा है कोई खास फायदा आपको हो सकता है जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये बढ़ेगा.
0: और उसके बाद अगर देखा जाए तो आज कन्या यानी वर्गो के लिए बताया जा रहा है कि मेहमान आएंगे घर पर जिनके साथ अच्छा समय बीतेगा. कोई बहुत ही एक्साइटिंग खबर आज आपको मिलेगी जिसकी वजह से आज आप खुश भी होंगे और बड़े दिनों से आपका कोई अटका हुआ काम भी आज बन सकता है. उलझनों को भी आज कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी, एज इन आपके जो उलझने हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आज सुलझेंगी और अच्छा रिजल्ट हासिल करेंगे आप इसके लिए.
1: तुला यानी लिब्रा, यात्रा के समय या फिर ऑफिस में आप जो रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं वो आज आपको मिलेगा. कोई बड़ा काम आपका पूरा हो जाएगा, इससे आप काफी खुश रहेंगे, बिजनेस में उन्नति करेंगे और आज जितनी कोशिश आप करेंगे फायदा उससे ज्यादा ही होगा.
0: और उसके बाद वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, अपनी बातों पर कंट्रोल बनाकर रखे बहुत जरूरी है. आज हो सकता है कुछ ऐसे शब्द आप बोल दे या कुछ ऐसे टोन में आप बोल दे जिससे लोगों के दिल को ठेस पहुंच सकती है और ये लोग कोई और नहीं आपके अपने हैं, आपके दिल के बहुत करीब है. आज पैसों के मामले में कहा गया है कि थोड़ा ध्यान देना होगा, अगर चीजों को सही तरीके से नहीं संभाला तो फाइनेंशियली आपके लिए चीजें डिफिकल्ट हो सकती है. रिस्क से जितना दूर आज आप रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है.
1: धनु यानी सेजिटेरियस, नए प्लेन्स आप बनाएंगे, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन फैमिली इश्यूज को लेकर आप थोड़े वरीड हो सकते हैं. और आज कहा गया है कि बिजनेस वैसे ठीक ठाक ही चलेगा आपका.
0: और उसके बाद अगर देखा जाए तो मकर यानी कैप्रिकॉन, कुछ नए एक्सपीरियंसेस होंगे जिनका फायदा होगा, पैसों के मामले में भी आपके हाथ अच्छा रिजल्ट लगेगा. आज आपके लिए कहा गया है रिस्क से जितना दूर रहे उतना अच्छा, बातों पर कंट्रोल भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है.
1: और कुंभ यानी एक्वेरियस, आज बिजनेस आपका भी बढ़िया चलेगा, पैसे मिलेंगे, बच्चों के काम से आज आप का मान सम्मान जो है ये बढ़ेगा, आपकी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से आज बड़े आसानी से आप अपने कामों को निपटा पाएंगे.
0: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है थोड़ा केयरफुल हो जाए, कोई भी काम कर रहे हैं ध्यान से काम कीजिए, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में गलतियां तो कर ही रहे हैं लेकिन खुद का नुकसान भी किए जा रहे हैं. किसी भी तरह की मशीनरी का इस्तेमाल करते समय भी आपको केयरफुल रहना है. दूर से कोई अच्छी खबर मिलेगी जिसको लेकर काफी खुश रहेंगे आप, कीमती चीजों को संभाल कर रखे, ये सलाह भी आज आपको दी जा रही है.
1: सो दिस वे योर राशि वाइब्स, थोड़ी देर बाद सेलिब्रिटी अलार्म खेलेंगे आपके साथ.
2: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
3: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
2: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
3: हम
2: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Big savings in store is long weekend at Mitre 10 Mega Westgate of Henderson. 15% off pet toys, 20% off indoor plants, and save on Wattle ID Advanced Interior 10 litre. July 9th se 12th tak. Sirf Mitre 10 Mega Westgate of Henderson mein.
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
4: Fall in love with your home again with an ANZ Reno Loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
5: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy. With Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand. So you can enrol, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
6: Grab a hot deal for less with Mitre 10. Refresh your space with 4 litres of selected Accent interior paint, now $79. And cosy up your home with 20% off Goldia panel heaters. T's and C's apply. Shop these great deals and more at Mitre 10.
7: What if your next holiday wasn't just a holiday?
8: But the adventure everyone talks about.
7: Imagine chasing waterfalls.
8: Wandering lush rice terraces.
7: Catching unforgettable sunsets.
8: And relaxing at iconic beach clubs.
7: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk.
8: Discovering incredible temples.
7: Tasting world-famous street food.
8: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
9: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
11: Celebrity Alarm. Hit it.
12: 20 minutes ho rahe hain, 7 bajkar. Aur ab waqt ho chuka hai aaj ke Celebrity Alarm ka.
13: तो आज एक नई आवाज आपको सुनानी है क्योंकि कल आपके लिए हम लेकर आए थे देवेंग भुजानी की आवाज और बड़ी आसानी से आपने गेस कर लिया और फिर हमारे पास सही जवाब जो है ये भी आपने भेजा पर क्या आज की आवाज आप पहचान पाएंगे या नहीं अगर आपको लगता है हाँ तो ध्यान से सुनिएगा ये अगली आवाज आपको हम सुनाने जा रहे हैं और इसके लिए एक सिंपल सी चीज आपको करनी है ध्यान से सुनना है और अगर आपने फिगर आउट कर लिया कि किसकी आवाज है उसके बाद BF लिखना है अपना आंसर लिखना है और 5599 पर आपको हमारे पास सेंड कर देना है अपने नाम के साथ
12: आज तो बहुत ही आसान है वेरी इजी
13: ओके
12: फाइनल डे
13: ज्यादा बोलना नहीं है ना आज
12: कुछ नहीं बोलना है well, listen.
13: ठीक है
14: हम तो अपनी मौत को गले लगाते हैं जिंदगी के साथ जुड़े हुए हर दर्द को हम अपनाते हैं वैसे जिंदगी और दर्द का बहुत करीब का रिश्ता है
12: तो ये है आज के हमारे सेलिब्रिटी
13: या वेरी इजी यू आर राइट एक्चुअली में तो लेट्स सी कि आपने फिगर आउट किया ये कौन है इफ यस फटाफट अपने आंसर्स हमारे पास भेजे BF लिखे सबसे पहले फिर आपका आंसर फिर आपका नाम और 5599 पर हमारे पास इसे सेंड कर दीजिए
12: सुन ले एक बार फिर से आवाज
14: हम तो अपनी मौत को गले लगाते हैं जिंदगी के साथ जुड़े हुए हर दर्द को हम अपनाते हैं वैसे जिंदगी और दर्द का बहुत करीब का रिश्ता है
12: तो शुरू हो जाए अब अपना जो जवाब है ये हमारे पास भेजे जैसे हमने कहा आज तो बहुत इजी है सो लेट्स सी इस आवाज को आप पहचान पाते हैं या नहीं और अपने जवाब भेजे थोड़ी देर बाद न्यूज हेडलाइंस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे
15: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
16: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
17: मैं लाऊं अपना ए गेम
18: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: News Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में नेपियर में गवर्नमेंट ऑन 30 फ्लैट्स का ब्लॉक एक साल से खाली रहने पर हाउसिंग मिनिस्टर क्रिस बिशप ने सख्त नाराजगी जताई और ऑफिशियल्स को इस पर तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया है। वेलेसली रोड के इस बिल्डिंग को पिछले लेवा गवर्नमेंट ने खरीदा था, जिसे अब मिनिस्ट्री किसी कम्युनिटी हाउसिंग प्रोवाइडर को बेचने की कोशिश कर रही है ताकि काइंगाओरा पर फाइनेंशियल बोझ न बढ़े। फॉर्मर लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर क्वान यू जो हैं पर कई प्रोफेशनल ब्रीचेस के आरोप साबित हुए हैं, जिसमें उन्होंने एक चाइनीज स्टूडेंट की न्यूजीलैंड $8,000 की ट्यूशन फीस अपने पर्सनल अकाउंट में डालकर खुद पॉकेट कर ली। ट्राइब्यूनल ने पाया कि प्रोविजनल लाइसेंस होने के बावजूद यू ने नवंबर 2024 से सितंबर 2025 तक बिना किसी सुपरवाइजर के काम किया, जबकि उनके सुपरवाइजर ने अक्टूबर 2024 में ही अग्रीमेंट खत्म कर दिया था। नेशंस रग्बी चैंपियनशिप के अंतर्गत ऑल ब्लैक्स अब अपने दूसरे मैच की तैयारियों में है। ऑल ब्लैक्स का मुकाबला इसी शनिवार को इटली के खिलाफ होने को है और इसके लिए आज 23 मेंबर स्क्वाड की घोषणा शाम 3:30 बजे की जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स कल सुबह से खेले जाएंगे। कल पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस मोरक्को से खेलेगा। सैटरडे को सुबह 7 बजे स्पेन और बेल्जियम की भिड़ंत होगी। रविवार को 2 क्वार्टर फाइनल मैचेस होंगे। पहला मैच जो है ये सुबह 9 बजे नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच होगा, जिसके बाद दिन में 1 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इन सभी मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today, Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living. Hum. Accurate traffic.
3: Flixieven, you're skipping a bag.
4: A high of just 14. Fine spells with a lot of cloud today. If you normally take a train, none running today and all across the long weekend for a City Rail Link trial. Driving not too bad today. Southern, 35 minutes. Manukau to the city, 56 from Drury. We're slow on and off Manurewa to the city. Northern, 20 in from Constellation. Just patchy there to the city. Northwestern, 25 from Massey. Slow from Point Chev.
3: Visit flexibin.co.nz for stockists, TCs and collection areas.
5: Māori Mā, have you received a reminder email or text about your role for this year's election or not sure you're enrolled? Luckily, we still have time. If you're Māori and 18 or over, you get to choose. Māori role or general role. There's no right or wrong, just right for you. The role you choose affects who you can vote for to represent you and your ro'e in Parliament. Find out more at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
2: What if your next holiday wasn't just a holiday,
0: but the adventure everyone talks about?
2: Imagine chasing waterfalls,
0: wandering lush rice terraces,
2: catching unforgettable sunsets,
0: and relaxing at iconic beach clubs.
2: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
0: discovering incredible temples,
2: tasting world-famous street food.
0: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
6: Shop Briscoe's for massive 70% off dream big deals on now. Cozy electric blankets, flannel sheets, thick warm duvets. Don't miss 20 to 70% off the entire store. With all stores open till 9 tonight at Briscoe's. See you online for T's and C's.
7: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers. Buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
8: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
9: No way.
10: We in trouble?
8: Nah, it's BP Plus.
10: What is that?
8: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
11: Sweet! Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
2: The beat of Bollywood.
12: World's best. Hamari good branch mein.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Birthday greetings.
9: Iska birthday bhai?
10: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
9: Happy birthday to you.
1: Many many happy returns of the day. Aaj 9th of July ko aap mein se jitne bhi log apna birthday ya wedding anniversary celebrate kar rahe hain. Sabse pehle Jeevan Kumar Sood ji, Flatbush mein aaj aap apna special day mana rahe hain. Is din ki dheer sari shubhkamnaen aur badhaiyan hain aapke liye. A very very happy birthday. Many many happy returns of the day.
12: Janmdin ki bahut sari shubhkamnaen aapko. Aaj Aashna aap bhi apna birthday celebrate kar rahi hain. So happy birthday, many many happy returns of the day to you. हमारी हम टीम की ओर से भी आपको हम definitely wish कर रहे हैं. Not forgetting आपके husband हैं, बच्चे हैं और समस्त परिवार वालों की ओर से आपको ढेर सारा प्यार and best wishes आज आपके जन्मदिन के खास मौके पर.
1: A very happy birthday. अगर आप किसी वजह से अपना message हम तक नहीं भेज पाए हैं, कोई नहीं, आपको हम याद कर रहे हैं और इस दिन की शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं.
2: Morning Madness.
1: अभी तो 24 मिनट रह गए हैं 8 बजने में और आज जो हमारा सेलिब्रिटी अलार्म है 3500, क्या जवाब है आपका?
12: I can't even imagine कि इन्होंने कैसे ये जवाब जो ये सोचा. I mean, I appreciate the fact कि इन्होंने मैसेज किया, बट ये जवाब कैसे सोचा, I have no idea. I think finally हमें मिलेगा मौका एक आवाज के साथ कंटिन्यू करने का जब तक कोई इसे पहचान न ले. I didn't think कि आज की जो सेलिब्रिटी अलार्म की वॉइस है ये इतना डिफिकल्ट होने वाले लोगों के लिए, बट apparently it seems like it is.
1: तो आवाज आप सुन ले एक बार फिर अच्छी तरह से, थोड़े ध्यान से सुने.
13: हम तो अपनी मौत को गले लगाते हैं, जिंदगी के साथ जुड़े हुए हर दर्द को हम अपनाते हैं. वो इस जिंदगी और दर्द का बहुत करीब का रिश्ता है.
1: तो ये हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी, इनकी आवाज आपको पहचाननी है और बताना है हमें कि कौन है ये. आज काफी दिनों बाद ऐसा हुआ है कि यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, इतनी देर से ये कंपटीशन जारी है और एक भी सही जवाब हमारे पास नहीं आया है.
12: एब्सोल्युटली. तो चलो आज मजा आएगा जब कोई भी हमें शायद सही जवाब ना दे पाए. लेट्स सी क्या होता है इसका अंजाम. और अपने अपने आंसर्स अगर आप चाहें तो भेज सकते हैं. ललिता पावर जो आपने लिखा था जवाब किसी ने हमारे पास, ये किसी भी रूप से उनकी आवाज नहीं है. तो 110% आपका तो जवाब गलत हो चुका है. दोबारा से कोशिश करना चाहे तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं. बी एफ लिखना है सबसे पहले, फिर अपना नाम और अपना जवाब और सेंड कर देना है 5599 पर.
1: तो आपके पास लगभग 5 मिनटों का वक्त है जिस दौरान हम देखेंगे कि क्या आज कोई आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं. ये एक्टर जो है ये काफी समय से बॉलीवुड में है. काफी लंबा टाइम जो है ये इन्होंने स्पेंड किया. शुरू में बहुत छोटे मोटे रोल्स, यू नो, फिल्म इंडस्ट्री से शुरू में इनका कोई लेना देना नहीं था. और जब ये आए तो स्ट्रगल काफ़ी किया इन्होंने और बाद में जाकर अपनी जगह जो है ये इन्होंने बनाई. छोटे मोटे यू नो साइड रोल्स जो है ये इनको मिलते थे, कैरेक्टर रोल्स,
12: विलन्स भी, आई मीन विलन का रोल भी काफ़ी इन्होंने किया है. बट आई थिंक इनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छी है, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब ये काफ़ी फिल्मों में एज अ विलन नजर आते थे, बट देन समथिंग हैपेंड एंड देन ये एक्चुअली में दिखने लगे एज अ कॉमिक रोल में. इनको देखने का मौका जो है ये मिला, तो वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज रही. इनका कॉमेडी टाइमिंग जो है ये भी काफी अप्रिशिएट किया गया.
1: बहुत बहुत. और इनका फिटनेस जो है ये भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा
12: इंस्पिरेशन
1: है. या सो इतना हम आपको बता सकते हैं. और अभी कुछ लोगों ने कोशिशें जो है ये की हैं, बट स्टिल नॉट इवन अ सिंगल करेक्ट आंसर. तो 5 मिनटों का वक्त है आपके पास, इस दौरान अपने आंसर्स जो है ये आप हमारे पास भेज सकते हैं. और कुछ देर बाद हम आपको बताएंगे भिवंडी के सुपरमैन, या सॉरी भिवंडी के स्पाइडरमैन के बारे में.
12: भिवंडी के सुपरमैन. भिवंडी क्या है पहले तो ये बताइए.
1: भिवंडी जगह है ना.
12: अच्छा.
1: महाराष्ट्र में एक जगह है, उसका नाम है भिवंडी. तो यहाँ के स्पाइडरमैन कौन है और ये स्पाइडरमैन क्या करते हैं ये हम आपको बताएंगे. इन द मीन टाइम ट्राई करते रहें. अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद. लास्ट जब हमने देखा तो नॉट इवन अ सिंगल करेक्ट आंसर हमारे पास आया था. इन केस यू मिस्ड आउट, उतने ध्यान से आपने नहीं सुना, तो एक फाइनल टाइम ये आवाज़ हम आपको सुना रहे हैं.
13: हम तो अपनी मौत को गले लगाते हैं, जिंदगी के साथ जुड़े हुए हर दर्द को हम अपनाते हैं। वैसे जिंदगी और दर्द का बहुत करीब का रिश्ता है।
1: तो अपने जवाब अब आप भेजें, 4 मिनटों बाद या 5 मिनटों बाद हम देखेंगे आपके आंसर्स।

0: ऊर्जा।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Traffic
3: and rep huge savings at Capricorn's birthday celebration sale.
4: Some fine spells on a cloudy day, a high of just 14. Motorways really quick. Northern 22 minutes Constellation Drive to town. Slow patches from there to Takapuna. Northwestern 27 in from Massey. We're slow from Point Shep, little heavy at times. Southern 42 minutes Manukau to town. Slow at Drury and then patchy on and off from Takanini. No trains running at all today and all long weekend. We've got a trial for the City Rail Link.
3: Get free installation and free underlay on selected Rhino carpet. Visit Carpet Court today.
5: Oh no, we'll be late.
6: We'll be all right. I'll call the AA.
7: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
8: Rebel are turning up the heat this long weekend with red hot savings. There's epic half-price deals on clothing, shoes and more. Plus, score a scorching 20 to 40% off store-wide. Stores open till 9 p.m. tonight, only at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
9: When you see them on the road, you suddenly don't need to overtake that guy in front of you. And you suddenly remember what a stop sign means. Suddenly you're not too cool to buckle up. And you're suddenly stoked you turned down that beer at the barbie. Nah, all good. Yep. Seeing them means you're suddenly on your best behaviour. Drive like cops are around. Because they are.
10: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी, अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
0: जबरदस्त हिट्स
11: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम
0: द ब्रेकफास्ट शो विद

0: 12:30 रह गए हैं अभी 8 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। और भारत में आपको पता है कई जगह पर अभी बहुत बारिश हुई, बाढ़ जो है ये चढ़ी हुई थी, इसके खबरें इसकी खबरें जो है बहुत सारी आई, वीडियोस वगैरह जो है ये भी हमने देखे हैं। तो वहीं पर महाराष्ट्र के भिवंडी में एक स्पाइडरमैन जो है खराब मौसम में निकल कर बाहर आ गया।
1: आई थिंक नाउ आई नो बिकॉज आई हैव सीन दिस वीडियो।
0: यू हैव सीन इट?
1: यस I have seen it actually, but aap definitely iske bare mein bataiye because it's a very good thought in a very hilarious way. Inhone kahin na kahin cheeze jo ye samne rakhi hai na,
0: to you know municipal dil jo ka area ke the municipality adhikari ye kafi der kar rahe the barish ki wajah se pahunch nahi paye, traffic ekdam jam hua tha, aur uske baad ye Spiderman jo aaye aur inhone vehicles ko direct karna shuru kar diya। एंड साथ ही में जो रुका हुआ पानी था जगह जगह पर वो भी साफ़ करना शुरू किया, और इसके वीडियोस जो है ये बनाए गए जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। और अय्यनाय का एक वीडियो जो है ये दुनिया के अलग अलग कोने में पहुंचा, और उन्होंने एक इंटरव्यू भी किया है स्पाइडरमैन के साथ जिनका नाम है शादाब। शादाब इनका नाम है। जब इनसे पूछा गया कि ये आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नोटिस किया कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैडन्ट कम हियर टू एड्रेस द इशू ऑफ एक्युमुलेटेड वोटर। उन्होंने बताया कि वो काफ़ी इंस्पायर्ड हैं अपनी इस सुपर हीरो से कि किस तरह से स्पाइडरमैन लोगों की मदद करते हैं, उनकी ज़िंदगी बचाते हैं इन मूवीज़, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी ऐसा ही करूँगा, लोगों का को रास्ता जो है ये दिखाऊँगा और रुका हुआ पानी जो है ये मैं साफ करूँगा। सो ही केम आउट इन फुल कॉस्ट्यूम।
1: हाँ, बट यू नो इट ऑल्सो सेज समथिंग कि आप कभी कभी चेंज के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो वो करते ही नहीं है, दो इट्स देयर जॉब टू गेट दैट डन, पर फिर भी करते नहीं है। इसीलिए इफ इट्स इन योर हैंड्स एंड यू कैन गेट इट डन तो आपका कहीं ना कहीं फायदा होता है बिकॉज यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम एंड द वन हु सपोज टू डू समथिंग अबाउट इट इज नॉट डूइंग इट, तो जब यू डू इट थिंग्स गेट डन, यू नो हो जाता है वो। और विद अ वेरी गुड नोट इन्होंने ये कहा कि इनको आई मीन ही फील्स इंस्पायर्ड बाय सुपर हीरो यानी कि स्पाइडरमैन से, और उनका ही कॉस्ट्यूम पहनकर ये यहाँ पर दिखे, अपना कहीं ना कहीं अपनी ओर से अपना जो कंट्रीब्यूशन है ये करते हुए। बट नेवरदलेस ऐसी और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो आपके नाम हम करेंगे। इनफैक्ट कल हमने बातें करनी थी इसके बारे में और मैं भूल गई थी, पर आज याद आया तो सोचा इसके बारे में आज हम जरूर बातें करेंगे। इनफैक्ट आज ट्रेंड पेट्रोल में इसी के बारे में आपके लिए डिटेल्स हम लेकर आने वाले हैं। ये सेकंड मोस्ट विजिटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड और ये क्यों इतना ट्रेंड कर रहा है इस पर भी कुछ चर्चा आपके साथ होगी। नाउ बिफोर वी मूव ऑन आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म, मैं देख रही थी काफी लोगों ने हमारे कुछ क्लूज देने के बाद, दो तीन बार वॉइस सुनाने के बाद अपने अपने मैसेजेस भेजे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स जो है ये हमारे पास आए हैं। रवि जी ने सबसे पहले तो दिलीप कुमार जो है ये कहा, फिर मोविन ने विनोद खन्ना कहा, शील ने अमिताभ बच्चन कहा, रश्मि ने अमिताभ बच्चन कहा, सृष्टि ने अमिताभ बच्चन कहा, सोम का जवाब आया इस मुकेश ऋषि, और बॉबी डियोल एड्रीन ने बॉबी डियोल जो है ये कहा। जिसके बाद रवि सिंह जी ने वापस से अपना जवाब भेजा, मोविन ने भी दोबारा कोशिश जो है ये की, और उसके अलावा मेरे ख्याल से एक और एक मैसेज जो है ये आया मोनिशा की ओर से। देन शॉन ने कहा अनिल कपूर, किसी ने कहा कादर खान, और अमिताभ बच्चन केविन ने लिखकर भेजा, फिर 3300 इनका जवाब आया, और 3500 जिन्होंने ललिता पावर कहा था इन्होंने कादर खान कहा, नीरज ने कहा अजय देवगन, अंशु ने कहा अमिताभ बच्चन, और शैलेश कुमार ने कहा है सोनू सूद। तो इतने सारे अलग अलग आंसर्स आए लेकिन उनमें से सिर्फ 4 लोगों का सही जवाब रहा, विच वॉज
0: शरद सक्सेना। शरद सक्सेना आज के हमारे सेलिब्रिटी थे। थैंक यू सो मच आप सभी के आंसर्स के लिए।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 9.8 डिग्रीज टेम्परेचर अभी आप फील कर रहे हैं, आज का हाई 14, ओवरनाइट कम से कम 8 डिग्रीज, बादल छाए रहेंगे, कुछ बारिश जो है सुबह शाम के वक्त हो सकती है, सनसेट आज का शाम 5:20 पर होगा।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: तो ट्रेंड पेट्रोल में हमने कहा था आपके साथ वही स्टोरी शेयर करेंगे जिसके बारे में हमने कल बातें करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट अबाउट इट। और ये कंट्री जो है फिलहाल ट्रेंड तो कर रही है फॉर ऑल द राइट रीजंस। आपको पता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसे सेकंड मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड माना जा रहा है, जहाँ पर टूरिज्म ग्रोथ जो है काफी स्ट्रांगली नोट किया गया है?
4: नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया।
3: नहीं, आप नहीं गए, वो बात तो हो सकती है डेफिनेटली, बट एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसके बारे में कह सकते हैं पीपल नो अबाउट इट ऑलरेडी, इट्स देयर, पीपल आर अवेयर ऑफ इट, और लोग जा भी रहे हैं, एंड द कंट्री इज नन अदर देन स्पेन। स्पेन इज राइट नाउ ट्रेंडिंग क्वाइट अ लॉट, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग टूरिज्म ग्रोथ जैसे कि हमने कहा ये नोट किया जा रहा है। और ये बताया गया है कि इन द फर्स्ट 5 months ऑफ द ईयर स्पेन में 36.8 million इंटरनेशनल विजिटर्स जो है ये गए।
4: 36 million?
3: 36.8 million,
4: ऑलमोस्ट 37 million।
3: यस, इन जस्ट 5 months,
4: 5 महीनों में। ऐसा क्या है स्पेन में?
3: Not really sure because I also haven't visited it. लेकिन कहा गया है कि इस साल यानी 2026 में एक 5% का इंक्रीज देखा गया है इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स टू स्पेन कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर। सिर्फ मई महीने में अगर देखा जाए तो कंट्री में 10.3 मिलियन टूरिस्ट जो है ये पहुंचे थे, विच वॉज अप बाय 9.5% अगर पिछले साल के मिलान में से कंपेयर किया जाए तो। इस हिसाब से द यूके रिमेन्ड स्पेन्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ विजिटर्स, फॉलोड बाय फ्रांस एंड जर्मनी। और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है इन्होंने स्पेंड किए हैं मोर देन US $57.4 billion ड्यूरिंग द पीरियड जब ये विजिट करने गए थे, विच इज अप बाय 7.8%। एनालिस्ट का कहना है द ग्रोथ इज बीइंग ड्रिवन बाय द रिकवरी ऑफ लॉन्ग हॉल एंड बिजनेस ट्रेवल, और एज वेल एज स्पेन का जो रेपुटेशन रहा है एज अ सेफ एंड स्टेबल डेस्टिनेशन ग्लोबल अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए। तो वहाँ पर सेफ्टी और जो स्टेबल डेस्टिनेशन जो है ये से माना जाता है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्पेन में लोग जो है जाना पसंद करते हैं, उसे विजिट करना पसंद करते हैं। क्या आपको पसंद है, मतलब इफ़ यू आर गिवन अ चांस, वुड यू एवर लव टू विजिट स्पेन?
4: मुझे मालूम ही नहीं वहाँ क्या है ना, जो चीजें मुझे
3: टोमेटिना फेस्टिवल के बारे में सुना है?
4: मुझे नहीं जाना टोमेटिना फेस्टिवल में
3: पर सुना है।
4: हाँ सुना, मैंने देखा है वो कोई फिल्म थी ना,
3: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
4: हाँ वो गाना देखा मैंने।
3: अच्छा, तो आपको उस गाने से पता चला?
4: हाँ, टोमेटिना फेस्टिवल का पता है, फुटबॉल में स्पेन बहुत बढ़िया है ये पता है। ये सारी चीजें तो पता है, लेकिन आई डोंट नो और घूमने के लिए क्या है ये मुझे नहीं पता है। सो आई एम नॉट अ वेरी कीन फैन ऑफ यूरोप, सो आई डोंट नो।
3: ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे कहा जाता है कि मई महीने में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन दैट मंथ ओनली 10.something million जो विजिटर्स है ये गए थे स्पेन विजिट करने के लिए। और मई महीना जो है ये स्पेन के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मई महीने में कहा जाता है इट मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, और यहाँ पर एक वाइब्रेंट फेस्टिवल सीजन जो है ये शुरू हो जाता है। थ्रू आउट स्पेन बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें लोग हिस्सा लेते हैं और इसका हिस्सा बनते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। इट्स लाइक अ फुल मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ द सीजन स्प्रिंग, जिसे वेलकम किया जाता है। और यहाँ पर इनफेक्ट हर साल फिएस्टास डे ला क्रूज ये एक किस्म का इवेंट होता है, विच इज़ बेसिकली अ फायरवर्क्स डिस्प्ले, विच इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल शोज ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम।
4: ओके, तो आप चाहें तो जाकर घूम सकते हैं स्पेन, और फिर जो जिन कंट्रीज से यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा जाते हैं, दे आर क्लोज बाय, यूरोप का ही हिस्सा है मोस्ट ऑफ देम,
3: सो इट मस्ट बी
4: चीपर फॉर देम आल्सो ना.
3: Yeah, but on the other hand, yeah, if just a tip which most of you might already know, कभी भी कोई भी कंट्री आप विजिट कर रहे हो, वो कंट्री जो है उसके पीक आवर्स के बारे में या पीक मंथ्स के बारे में पता कीजिए, किस महीने किन तारीखों पर सबसे ज्यादा लोग उस कंट्री को विजिट करते हैं, एंड इफ यू सॉर्ट दैट आउट तो उस दौरान उस कंट्री को बिल्कुल भी विजिट ना करें, बिकॉज इफ यू विजिट दैट कंट्री ड्यूरिंग दैट टाइम, उनके पीक डेज के दौरान, पीक मंथ्स के दौरान, तो सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, इंक्लूडिंग द टिकट प्राइसेस. और जो ऑफ पीक मंथ होते हैं, डेज होते हैं, उस दौरान अगर आप ट्रेवल करते हैं तो ऑफ कोर्स थिंग्स विल बी चीपर, ट्रेवलिंग विल बी चीपर, एंड इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ भी जो आप नहीं फेस करेंगे ना, व्हेन यू गो टू विजिट अ न्यू प्लेस टू एक्सप्लोर इट, तो वैसा आपको एनवायरमेंट जो है ये मिलेगा.
4: तो आज का ये ट्रेंड पेट्रोल, थोड़ी देर बाद व्हाट्स योर टेक थर्सडे है, तो टाइम बहुत कम होगा, मेक श्योर यू गिव अस अ कॉल क्विकली, और आज देखेंगे कि आप का टेक क्या है टॉपिक के बारे में.

0: सवा आठ बज रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. आज का व्हाट्स योर टेक, हमने सोचा कि आज टाइम कम है तो टॉपिक अभी ही आपको बता देते हैं. लंबी छुट्टियां हैं, स्कूली हॉलीडेज भी हैं, तो ऐसे में कुछ लोग एक हफ्ते के लिए अभी बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ कंट्री. तो यू नो आई थिंक स्कूली छुट्टियां शुरू होने से पहले ही आपने बताया था अबाउट कितने लोग ट्रेवल करने वाले हैं थ्रू ऑकलैंड इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स.
1: जी,
0: तो मैंने सोचा आज आपसे पूछते हैं कि आपके घर में एयरपोर्ट पैनिक मॉन्स्टर कौन है?
1: मेरे घर में तो है भाई, जो बोल रहा है वही है. दिमाग खराब कर देता है ये आदमी, सीरियसली मैन. ओ माय गुडनेस, इट्स नॉट जस्ट ऑन द डे, लेकिन दिन जो ट्रेवल डेट से पहले, ट्रेवल डेट जो है उससे एक दिन पहले भी दिमाग की दही हो जाती है कि ये वो पैक हुआ नहीं हुआ, इतने बजे निकलना है, सोना है, ब्ला ब्ला ब्ला. और फिर जिस दिन जाना भी होता है ना उस दिन भी, गुडनेस, बहुत बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं.
0: तो आज आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपके घर में, आपकी फैमिली में एयरपोर्ट पैनिक मॉन्स्टर कौन है व्हेन इट कम्स टू ट्रेवलिंग टू द एयरपोर्ट. चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट हो, इंटरनेशनल फ्लाइट हो, कौन सबसे ज्यादा पैनिक करता है और क्या सिचुएशन होता है, तो इसके बारे में
1: आप अच्छे से सोच लो, आप इवेलुएट कर लो अपने घर के हर एक फैमिली मेंबर को. अभी इसमें इतना आसान है ये सब कुछ करना, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कौन कैसा है, यू ऑलरेडी एक्सपीरियंस समथिंग विद देम. तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप इवेलुएट कर लो, अपना जवाब रख लो अपने पास. थोड़ी देर बाद हम लाइंस ओपन करेंगे 0800 004866. इस नंबर पर आप फिर हमें कॉल करते हुए तब हमें बताना.
2: मॉर्निंग्स मेड बेटर,
3: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय.
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
4: 80s के रेट्रो गाने.

0: डिस्को हो या रॉक एंड रोल, डाउनलोड रोवा टू लिसन हम 80s जुकबॉक्स।
1: हो गई इंतजार की
2: हम। सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
3: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
2: सोना संसार पापा ट्विटर, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा ट्विटर।
4: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा ट्विटर। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
5: TriVision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
6: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
5: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
6: Mashallah, bahut acha, very nice.
7: Shop Briscoe's for massive 70% off dream big deals on now. Cozy electric blankets, flannel sheets, thick warm duvets. Don't miss 20 to 70% off the entire store. With all stores open till 9 tonight at Briscoe's. See you online for T's and C's.
8: JB Hi-Fi's long weekend price frenzy on now. Score the Dreamy L50 Ultra AE robot vacuum for just $13.98. That's $900 off. Ends 15th July. JB, you've done it again.
9: Trade Depot celebrates Matariki this week with two exceptional deals. Huge Vogue side-by-side fridge freezers, just $599. 7-star heat pump dryers, just $499. Shop online or in-store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
10: TradeDepot.co.nz. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
12: What's your take?
13: 20 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर, तो अब वक्त हो चुका है व्हाट्स योर टेक का, और प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए अब आपको कॉल करना है 0800 00 हम 0800 004866 पर, और बताना है कि जो हमने टॉपिक आपको बताया है उसमें आपकी राय क्या है,
14: कि आपके घर में एयरपोर्ट मॉन्स्टर कौन है?
13: एयरपोर्ट पैनिक मॉन्स्टर,
14: सॉरी, एयरपोर्ट मॉन्स्टर, दैट वुड बी इवन इंटरेस्टिंग ना, एयरपोर्ट मॉन्स्टर कौन है? हाँ, एयरपोर्ट पैनिक मॉन्स्टर का मतलब बेसिकली वो शख्स जो एयरपोर्ट अगर जाना हो आपको, बिकॉज यू आर ट्रेवलिंग, वेदर डोमेस्टिक ट्रेवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं, वट एवर द सिचुएशन इज, आपको ट्रेवल करना है, आप जा रहे हैं, और ये वो शख्स है जो पूरे घर में एक ऐसा पैनिक मोड ऑन कर दे, सबको मतलब पैनिक में डाल दे, और आपकी फ्लाइट रात को 8 बजे है और आपको सुबह 8 बजे लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाए, मतलब उतना एक्सट्रीम भी नहीं, लेकिन मतलब उतना आपको डरा दे कि भैया टाइम पे जाना है, टाइम से पहले जाना है, टाइम पे रहना है, अदरवाइज़ फ्लाइट मिस हो जाएगी, अदरवाइज़ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो कौन है ये आपको बताना है। और अगर ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस रहा हो इनके साथ, विच इज़ वाई आप इनको एयरपोर्ट पैनिक मॉन्स्टर का टैग दे रहे हैं, वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं।
13: तो अब देखना है कि क्या किसी ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, हमने अपनी फैमिली में तो एक्सपीरियंस किया है भाई,
14: अब हाँ, और मैंने तो बता भी दिया है कि जो बोल रहे हैं वो खुद है, और ये तो वैसा बचपन में जो नहीं लड़ाई करते थे कि कोई किसी को कुछ बोल दे तो हम बोलते कि तुमने बोला तो तुम ही हो, वो टाइप्स, बट नहीं, सच में हमारे घर में तो ये ही है जो पैनिक करते रहते हैं, स्पेशली ट्रेवलिंग के दौरान पैनिक भी करते हैं, फिर सबका भी पैनिक मोड ऑन करते हैं और मूड भी खराब कर देते हैं टाइम्स।
13: किसी का टेक्स्ट आया है, ब्रो माय वाइफ मेक्स अस लीव फॉर ऑकलैंड डोमेस्टिक सो अर्ली दैट द फ्लाइट बिफोर आवर्स हैजंट इवन बोर्डेड येट, The staff look at us like we are homeless because we are just sitting there staring at them for 3 hours.
14: Wow, interesting. Domestic flight में वैसे, I mean domestic जब आप travel कर रहे थे तो 3 घंटे पहले जाने की ज़रूरत नहीं होती ना?
13: हाँ.
14: Internationally मेरे ख्याल से 3 घंटे होती है. But अगर domestic travel में भी कोई आपको 3 घंटे पहले ले जाकर airport पे बिठा दे, तो हाँ, definitely airport panic monster तो है ये.
13: तो आप कभी कोई experience है तो बता सकते हैं. 0800 004866. Surprisingly, सब एकदम you know well maintained, सब कुछ
14: नहीं well maintained नहीं है, सब चले गए airport.
13: सब सबके घर पर सब कुछ एकदम बैलेंस होता है ना.
14: आई थिंक सब ट्रेवल करने निकल गए, कोई सुन ही नहीं रहा है मैं.
13: हाँ, वो भी हो सकता है.
14: हाँ, छुट्टी है भाई, स्कूली छुट्टियां है, कौन रुकेगा छुट्टियों के दौरान. फिर लॉन्ग वीकेंड है और बहुत से लोग ये भी करते हैं ना, कल छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे है, बहुत से लोग आज छुट्टी ले लेते हैं, लीव वगैरह अप्लाई कर देते हैं और फिर निकल जाते हैं घूमने के लिए. तो कल तो एटलीस्ट एक कॉल आया था, मेघा ने हमसे बातें की थी कल, आज तो मेघा भी कॉल नहीं कर रही है. तो लगता है ये भी छुट्टी पे गई है आज.
13: Listen to this. Last month we were flying to Sydney. Our flight was at 4 p.m. while my wife made us leave the house at 11 a.m. We got through Auckland International Security in literally 12 minutes. We had so much time left that I ended up buying 3 expensive perfumes I didn't need,
14: wow,
13: drank 4 coffees, and by the time we boarded, I was already exhausted from sitting in the terminal. She was sitting at the gate, smiling like she won a medal.
14: वेरी नाइस यार, आप मैसेज कर रहे हैं, अच्छी बात है. कॉल भी कीजिए 0800 004866 पर और हमें बताइए कि आपकी फैमिली में वो एयरपोर्ट पैनिक मॉन्स्टर कौन है और क्यों आपने इनको ये टैग दिया हुआ है.
13: अब तो टाइम भी निकलता जा रहा है भाई, और बस तकरीबन 1 मिनट का और वक्त है जो आपको हम दे सकते हैं. इन केस यू वांट टू शेयर समथिंग तो कॉल कर सकते हैं, या तो फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि थोड़ी देर बाद लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला से भी आज हमारी बातें जो है ये होनी है. और उसके अलावा आप चाहें तो 5599 पर टेक्स्ट करके हमें बता सकते हैं कि आपके घर में एक्सपीरियंस या आपकी फैमिली में कैसा एक्सपीरियंस रहा है. यू नो द कम्यूट टू द एयरपोर्ट इट्सेल्फ, घर से एयरपोर्ट तक का सफ़र, वो इट्सेल्फ में बहुत इंटरेस्टिंग होता है. कुछ लोगों का तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कुछ लोगों का बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है.
14: हाँ, इंटरेस्टिंग नहीं होता, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है. ट्रू. आई थिंक मेरे हिसाब से इफ आई, जैसे कि मैंने कहा भी, ज़्यादातर आई मीन कोई कॉल कर नहीं रहा है तो डोंट हैव आंसर्स टू दैट एज वेल. बट येस, मेरे हिसाब से आई थिंक माई डैड इज ऑल्सो इन सच अ सिचुएशन. ही इज नॉट एयरपोर्ट पैनिक मॉन्स्टर, इज अ पैनिक मॉन्स्टर. हर एक ट्रिप में आप कहीं भी जा रहे हो, नॉट पर्टिकुलरली एयरपोर्ट. आई थिंक वो जब न्यूजीलैंड आ रहे थे ट्रेवल करने के लिए, दैट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम वो कहीं पर इंटरनेशनल ट्रेवल करने के लिए गए थे. इन हिज लाइफ ऑफ 60+ years पहली बार उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेवल किया, पिछले साल की बात है ये. और वो ऐसे पैनिक मोड में रहते हैं कि खुद तो पैनिक करते ही करते हैं, दूसरों को फ्रस्ट्रेट करते हैं. और फिर आई थिंक उनको ये टैग एकदम अप्रोप्रिएटली जो है ये बैठता है. इफ ही हैड टू रीच द एयरपोर्ट 3 hours प्रायर, वो 4 घंटे पहले जो ये पहुंच जाते हैं. तो आई थिंक उनका ये एक सिचुएशन है. एक मैसेज आया, इन्होंने कहा है, माई मम शी स्टार्ट्स पैनिकिंग, सॉरी शी स्टार्ट्स पैकिंग 3 days बिफोर द फ्लाइट एंड रिमाइंड everyone एवरी 15 minutes, पासपोर्ट पासपोर्ट पासपोर्ट. तो ये तो है ना, थोड़ा थोड़ा पैनिक वाला सिचुएशन.
13: अरे भाई, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 1 घंटे में अगर एयरपोर्ट पहुंचना है फिर भी उनकी पैकिंग कंप्लीट नहीं होती है. आई नो सम पीपल.
14: उसे पैनिक नहीं बोलते हैं, उसे रिलैक्स चिल मोड बोलते हैं.
13: जस्ट इमेजिन, अलग अलग तरह के लोग होते हैं. तो आपका भी कोई एक्सपीरियंस है 5599 पर उसे आप हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं.
10: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
12: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
15: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 8:30 पे शे हैं और हमने आपसे कहा था कि हमारी बातें जो है ये होंगी लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोले से। गुरु आगे हैं लाइंस पर हमारे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भाई।
1: गुड मॉर्निंग विजय भाई, कैसे हो?
0: एकदम बढ़िया। और यू नो अभी लंबी वीकेंड की शुरुआत होने वाली है, तो अभी ओवर 3 डेज लोगों के पास मौका मिल जाएगा टू इवेलुएट द सिचुएशन आफ्टर कल जो डिसीजन आया है OCR को लेकर, इसे ऊपर बढ़ाया गया है। तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, जो लोग नो घर वगैरह खरीदना चाहते हैं क्या उन सभी लोगों के लिए क्या एडवाइस होगा आज आपके पास?
1: जी भाई, OCR जो वैसे ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था कि डेफिनेटली इट इज गोना गो बिठाया एंड अगेन मे बी इन द कमिंग मंथ्स एज वेल थोड़ा सा और इंक्रीज होगा, बट इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि देयर इज ऑलवेज इसका एक छोटा सा इंपैक्ट होता है, बट देयर इज अ होलसेल रेट जो जहां से पैसा उठाते हैं, तो वो होलसेल रेट ऑलरेडी उसका जो रेट था पहले बढ़ा हुआ था, तो इंटरेस्ट रेट्स दैट्स व्हाई यू वुड हैव सीन कि OCR बढ़ा नहीं था फिर भी रेट्स ऊपर जा रहे थे। एंड जो कल का जो OCR इंक्रीज हुआ है अगेन इट जस्ट अगर आप एक और उसमें कहते हैं कि एक और तीर चला है कि बेसिकली यू नो दे वांट टू कंट्रोल द इकोनॉमी की कैसे उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, इन टर्म्स ऑफ जो परचेजेस हैं अगर किसी ने घर खरीद रहे हैं या फिर जिनके ऑलरेडी होम लोन चल रहे हैं, डेफिनेटली यू हैव टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी क्योंकि अभी लास्ट में जो यू नो पिछले साल ऐसा हुआ कि जैसे इंटरेस्ट रेट एकदम से पिछले एक दो सालों में इंटरेस्ट रेट इतने से ज्यादा शूट कर गए थे कि लोगों को अभी वो घबराहट है कि कहीं वैसा दोबारा हो गया तो देन व्हाट वी गोना डू, अगर हम आज घर खरीदना चाहते हैं तो हम वहां लॉक हो जाएंगे और इतना हम कैसे संभाल पाएंगे, या फिर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जिनके ऑलरेडी घर चल रहे हैं यू नो दे ऑलवेज बिकॉज दे गॉन थ्रू दैट पैच पिछले एक दो सालों में कि जहां इंटरेस्ट रेट सीधा 2% से जो कोविड में था सीधा 7-8% पे चला गया था। सो इन सेइंग दैट कि वो एक दिमाग में एक डर तो बैठा होता है, लेकिन ये कि हर एक चीज का डबल साइड एंट्री होती है, क्योंकि अगर आप घर नहीं ले रहे हो तो डेफिनेटली रेंट पे जा रहे हो, रेंटल मार्केट जो है वो हाई हो जाएगी, यू नो अगर आप ऑलरेडी जिसके पास आपका ऑलरेडी घर चल रहा है देन यू हैव टू जस्ट रीस्ट्रेटेजाइज कि क्या क्या मैं एक एक साल के लिए फिक्स करूं या मैं फ्लोटिंग पे छोड़ूं या मैं इसको 2-3 साल के लिए फिक्स करूं कि सर्टेनिटी। सो दोज आर द थिंग्स ऑल डिपेंड्स ऑन की सिचुएशन टू सिचुएशन की आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको क्या अलाउ करती है, कितना बड़ा आपका डेट चल रहा है अभी, हो सकता है किसी का सिर्फ 4-5 लाख 300-400,000 का ही हो, कहीं का 3-4 मिलियन का हो, तो उसकी स्ट्रेटेजी टोटली डिफरेंट हो जाती है, उसको कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है। बट इन सेइंग दैट these things wouldn't stop the market activity, that's for sure. हाँ थोड़ा उसको जिस तरह जब प्लेन हवा में चल रहा है टर्बुलेंस आती है तो थोड़ा सा हिलता है, ये वो चीज है, तो अगर ऐसा लग रहा है कि टर्बुलेंस है तो बट डेफिनेटली इट्स गोना गेट स्मूथर। और जो कोई जिसके पास कैपेसिटी है, जो जिसको स्ट्रेटेजाइज करना आता है, जिसके साथ जिसका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर उसको ऐसे सपोर्ट कर सकता है, तो बेसिकली इस टर्बुलेंस से निकलने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप उस टाइम इस टाइम मार्केट में प्रॉपर्टी ले सकते हो, अगर इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हो, तो इससे बेहतर इक्विटी बनाने का कोई और दूसरा तरीका ही नहीं है। बेसिकली हम जॉब करके 60-70-80,000 लेकिन 100,000 लेकिन हम सेविंग कितने कर सकते हैं वी डोंट नो कि उसमें उतना तो खर्चा ही निकल जाता, तो सेविंग्स उतना होता नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी में इक्विटी बिल्ड होती है दैट इज अगेन वन ऑफ दोज थिंग्स कि पीपल सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ अभी हमने 100,000 सेव कर लिया, 200,000 सेव कर लिया इक्विटी में, बट दिस इज द ब्रिलियंट टाइम क्योंकि मार्केट सबसे लोअर साइड पे बैठी हुई है हाउसिंग मार्केट, एंड अगेन इन टर्म्स ऑफ यहां से वो अगर जाएगी तो ऊपर की तरफ ही जाएगी, और जितना भी वो ऊपर जाएगी उतना आप इक्विटी बिल्ड कर रहे हो अपने घर में, तो बेसिकली दैट मीन्स यू एडिंग अप दैट यू नो फाइनेंशियल freedom to yourself for the future. But again, every situation has a side. Financial assessment karne ke baad usko dekha ja sakta hai. But again, aap agar is boat mein ho aur aapko lag raha hai ki should I do it or should I not do it? Should I take the action now or should...
0: Nare? Kidhar chale gaye? अच्छा, इनका तो लगता है कॉल ही ड्रॉप हो गया, तो वापस इनसे बातें हम करने की कोशिश करेंगे और विल ट्राई एंड फाइंड आउट कि ऐसा क्या हुआ या क्या वो बोल रहे थे कि इवेलुएट करना है, सिचुएशन कैसा है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो बातें हैं ये हो रही थी। तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला से हमारी बातें जो हैं ये होती रहती हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, और आप उनसे बातें कर सकते हैं। याद रहे कि जो सिचुएशन है उसको लेकर जो भी है अलग अलग चीज़ों पर, फाइनेंशियल मैटर्स पर आपको एडवाइस और गाइड जो है ये करते रहते हैं, और उनको वापस जो है ये हम लाइंस पर लाने की कोशिश जो है ये कर रहे हैं। एंड लेट्स सी, हाँ गुरु भाई,
1: आपका तो
0: अरे हाँ, इनका तो कॉल ही ड्रॉप हो गया। हाँ गुरु जी, आपका कॉल जो है ये ड्रॉप हो गया था।
1: सॉरी, नेटवर्क का सडनली ड्रॉप हो गया, नॉट श्योर कहाँ पर मेरी कॉल ड्रॉप हुआ, क्या मैं बात कर रहा था।
0: यू वर जस्ट रैपिंग अप ना कि क्या कर सकते हैं।
1: एब्सोल्युटली, तो बेसिकली आप अगर ऐसी बोर्ड में हो कि आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे कि बेसिकली अभी हम प्रॉपर्टी लें, या फिर अभी हमने अपना रेट फ्लोटिंग पे छोड़ा हुआ था या हमने सिर्फ एक साल के लिए फिक्स किया था, व्हाट शुड वी डू, हाउ वी कैन डू इट्स, आपके लिए बेसिकली एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपके साथ होना एक बहुत जरूरी पार्ट है आपको अगर इस टर्बुलेंस से निकलना है तो। एंड आई थिंक वुड बी अ बेटर आइडिया कि आप मुझे वहाँ कॉल कीजिए, लेट्स वी बिकम एज अ टीम, वी बिकम एज अ पार्टनर, एंड देन वी विल गेट दिस आउट ऑफ इन आवर इन अ गुड स्ट्रेटजी, एक अच्छी स्ट्रेटजी अप्लाई करके विल गेट दिस थिंग इन अ बेस्ट फेवर, कि आप कैसे उसमें इसमें से ही बेनिफिट कर सकते हो।
0: तो कैसे आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं?
1: मुझे भाई सिंपल लॉजिक लगाना है, लॉजिक फाइनेंस अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो यू विल गेट माई डिटेल्स। मेरा 08 नंबर फ्री नंबर है, विच इज 0800 लॉजिक जी। आप अगर 0800 लॉजिक जी को टाइप करते हो, इट विल कम टू मी, विच इज 0800-564-424 इज द नंबर टू गेट इन टच विद मी।
0: गुरु थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, नेक्स्ट वीक और बातें जरूर करेंगे।
1: थैंक यू विजय भाई, थैंक यू।

0: 20 मिनट रह गए हैं अभी 9 बजने में और व्हाट्सएप टेक को लेकर एक मैसेज आया है किसी का और मैसेज जो है वो देख लेते हैं जल्दी से कि क्या इन्होंने हमें भेजा है।
1: तो इन्होंने कहा है कि हाय विजय, माय वेरी क्लोज फ्रेंड, आई वेंट टू ड्रॉप एट एयरपोर्ट, आई ड्रॉप्ड एंड ड्रोव बैक टुवर्ड्स माय होम माउंट वेलिंगटन। हाफ वे ही कॉल्ड मी टू पिक हिम अप, हिज फ्लाइट वाज द नेक्स्ट डे। इतना ज्यादा, मतलब एक दो घंटे की बात नहीं है, मतलब ऐसे एक दो घंटे एक्स्ट्रा नहीं, एक दिन पहले पहुंच गई,
0: एक दिन पहले चले गए।
1: ये कौन है भाई, इतने महान शख्स एक दिन पहले जाने वाले।
0: आई एम नॉट रियली श्योर बट थैंक यू सो मच जिस किसी ने भी अपना मैसेज जो है ये हमारे पास भेजा था। आपका भी कोई एक्सपीरियंस है इस तरह का तो जरूर हमें 5599 पर मैसेज करके बता सकते हैं।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
2: Accurate traffic.
3: Kitchen mania. 17th birthday.
4: Bit of sun this morning. Cloud will build. Quite grey today with a high of just 14. No trains all today and all long weekend. We've got a trial for the City Rail Link. Driving fine though today. Southern 40 minutes, Manukau to town. Fine to Otahu. Slow even heavy from there to the city. Northwestern 23 minutes in from Massey. Slow from Point Chef. Northern 21 minutes in from Constellation. Just slow close to the bridge. Southwestern fine.
3: You could win 10k when you order your new Kitchen Mania kitchen. T's and C's apply.
5: Fuel ke dam roll. बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो.
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz.
9: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
10: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Henderson in just 35 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: सिर्फ रोवा पर।
1: IKEA sale is on now.
2: Bit of sun this morning. Cloud will build. Quite grey today with a high of just 14. No trains all today and all long weekend. We've got a trial for the City Rail Link. Driving fine though today. Southern 40 minutes Manukau to town. Fine to Otahu. Slow even heavy from there to the city. Northwestern 23 minutes in from Massey. Slow from Point Chef. Northern 21 minutes in from Constellation. Just slow close to the bridge. Southwestern fine.
1: Get up to 70% off selected products at ikea.co.nz today.
3: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
3: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846 9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
5: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
6: Sorry about that.
5: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
6: Kogan Mobile, true Aussie value.
5: Terms and conditions apply.
7: Bunnings has lowest prices nailed on the kids' craft range. That'll help you keep them entertained for less these school holidays. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
8: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
9: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
11: तो थ्रोबैक से पहले एक और एक मैसेज जो है आज के हमारे व्हाट्स योर टेक के लिए आया है वेरी क्विकली आपको ये भी सुना दे इन्होंने लिखा है मॉर्निंग वी हैव माय हस्बैंड हु इज द पैनिक मॉन्स्टर बट वी हैड दिस क्लासिक थिंग हैपन व्हेन माय फादर इन लॉ हैड अ 1 AM फ्लाइट संडे मॉर्निंग बट माय हस्बैंड थॉट इट वाज अ मिड डे फ्लाइट मतलब 1 PM का फ्लाइट उन्होंने सोचा एंड वेंट टू कैसीनो ऑन सैटरडे नाइट So while enjoying in casino, the flight was gone. Then full panic mode the next day when he realized the mistake. Airport pahunche, flight to hai nahi. Flight to subah 1 baje udh gayi. Phir kya hua? Wo thoda interesting hota janna. But unfortunately, abhi hamare paas time nahi hai. Agar aapke paas thoda sa time ho, to mein zarur batayega ki what happened after that.
12: It would be an interesting to find out, huh?
11: It would be an interesting thing to find out. तो आज का हमारा व्हाट्स योर टेक यहीं पर अभी फिनिश कर रहे हैं हम थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस पीपल जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं आपने हमारे पास मैसेज किया और आज हमारे साथ व्हाट्स योर टेक में हिस्सा लिया थैंक यू सो मच फॉर दैट
12: एक एडवांस बर्थडे मैसेज भी आया है ना
11: अच्छा वो भी अभी बताना है हैप्पी एडवांस बर्थडे टू प्रीतेश प्रसाद लॉट्स ऑफ प्यार एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑफ राधे राधे बॉयज एंड सारंग बॉयज ऑफ ऑकलैंड स्पेशल विशेस फ्रॉम वाइफ शैलीन बर्थडे इज टुमारो Cake smash tonight at midnight. Kya baat hai?

0: accurate traffic.
1: Would you trade in your house?
2: Fine spells this morning, becoming quite a grey one today. A high of 14 into the city. We're fine on motorways northern, 20 minutes from Constellation Drive, just slow there to Milford. Northwestern, 20 minutes Massey to the city, slowing close to the city. Southern, 33 minutes in from Monaco. We're slow from Highbrook, heavy patches to Remuera. No trains running at all today and all long weekend. There's a trial going on for the city rail link.
1: Trade in your house with Generation Homes. Visit generation.co.nz for more information.
3: Auckland, tayyar ho jao ek sufi raat ke liye. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan. Saturday, 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
4: MediaWorks complaints. How can I help?
5: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
4: Thank you.
5: It's all I can think about.
4: What does it sound like?
5: Yeah, I'd rather not.
4: Go on, why don't you have a crack?
5: Okay, got a plumbing problem.
4: Oh, I need a bit more than that.
5: They've got your back.
4: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
5: Oh, okay.
6: There's no better plumber to give it a crack.
4: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
5: No, I want a plumber.
7: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
8: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
9: मुझे भी।
8: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाएं खुशियाँ खिलाएं
10: Farmers' long weekend sale is now on with 30 to 50% off kitchen, dining, bedding and towels. Up to 50% off furniture plus super deals and half price sleepyhead beds. Farmers' long weekend sale now on. Conditions and exclusions apply.
11: Home. Time check.
12: Good morning, is Samitik 9 baj rahe hain.
11: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Donald Trump has ordered fresh strikes on Iran hours after saying he would probably hit them again. Explosions have now been heard in port and coastal cities. The US president also suggested the ceasefire was done when questioned about it at NATO overnight.
14: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
13: A new online women's health hub aims to help ease the burden of finding the right care. Minister Nicola Grigg says it's an overwhelming process.
15: Very scattergun. There's all sorts of really great resources and really great organisations. There wasn't one point of truth. That's why we wanted to pull it all together.
13: NZ On Air found exports accounted for 98% of revenue for video game developers who receive a tax rebate. Joe Keane from the Game Development Association says the product is weightless and high value.
16: There is no cost to ship a video game. And the high value aspect comes from the fact that jobs in the game development sector are generally high paying jobs.
13: Justin Bieber has added his name to a mammoth FIFA World Cup halftime show lineup. He will join earlier announced acts Madonna, Shakira and BTS. The 11-minute performance will take place during the final in New Jersey on July 19th. To rugby with Shift 4, the All Blacks team to face Italy in Wellington on Saturdays, named at 3:30 today. Commentator Tony Johnson told the DSPN podcast it's a balancing act.
17: It'd be really good just to improve those combinations by playing the same guys, but then you've got all these other guys in the squad, why aren't you giving them a go?
13: And New South Wales have clinched the State of Origin series with a 30 points to 12 win over Queensland at Suncorp Stadium.
11: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
18: World's best, hamari koi branch nahi hai.
11: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: 11.5 degrees ho chuka hai temperature. Aaj ka high 14. Overnight kam se kam 8 degrees. Kuch badal chhaye rahenge. Rehkar halki barish kabhi kabhar sham aur subah ke waqt ho sakti hai. Sunset aaj ka sham 5:20 par hone ko hai.
11: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living. What's going on? क्या बकते हो?
0: अरे कहना क्या चाहते हो?
19: तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं आज का क्या बकते हो? क्या बकते हो स्टोरी जो है ये आपको हम पहले बता दें, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया ने जबकि इसकी पूरी जानकारी दी है, तो उसके बाद चलकर हम कुछ डिटेल्स लेकर आए हैं जिस पर आज आपके साथ हम कुछ बातें करना चाहते हैं। सो कहा गया है इंदौर में एक ऑपरेशनल हॉस्पिटल, ये इसकी रिपोर्ट सामने आई है जहाँ पर 100 बेड्स है और ये सिविल हॉस्पिटल है इंदौर में, पिछले 6 सालों से ऑपरेशनल है और इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर इनफैक्ट आई थिंक कुछ कर्मचारी भी हैं, 87 स्टाफ मेंबर्स हैं जो इस फुली ऑपरेशनल फंक्शनल हॉस्पिटल को चला रहे पिछले 6 सालों से। पर आपको पता है इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है विच विल मेक यू से क्या बकते हो?
20: नहीं,
19: इंदौर में ये जो हॉस्पिटल है ये सिर्फ ऑन पेपर्स ऑफिशियली फंक्शनल है 6 सालों से,
20: वास्तविक में है ही नहीं।
19: है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स कहा गया है कि द हॉस्पिटल हैज एग्जिस्टेड ओनली ऑन पेपर जब से ये अप्रूव हुआ है, विद अथॉरिटीज अनएबल टू सिक्योर सूटेबल लैंड फॉर द प्रोजेक्ट, जिसके बाद चलकर ये हॉस्पिटल अभी बनना ही बाकी, मतलब जमीन तो हो गई है लेकिन अभी तक एक ब्रिक जो है ये भी नहीं रखी गई है इसके बनने के लिए। सो डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ अ कंप्लीटेड हॉस्पिटल बिल्डिंग, कहा गया है यहाँ पर 87 स्टाफ पोजीशंस हैं और हैव बीन फिल्ड ऑलरेडी, स्टाफ काम कर रहे हैं एंड दोज एम्प्लॉइज आर करंटली वर्किंग एट अदर गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन द रीजन, और जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा है कि ये जो डिले है इज प्राइमरली ड्यू टू द लैक ऑफ अवेलेबल लैंड फॉर द हॉस्पिटल साइट। Officials maintain कर रहे हैं that efforts किए जा रहे हैं to identify and acquire suitable land ताकि इसका काम जो ये शुरू हो चुके हो सके। However, जो opposition leaders हैं उन्होंने question किया है कि recruitment of dozens of hospital positions proceed कैसे हुआ जबकि hospital का construction ही पूरा नहीं हुआ। They argued कि situation जो है इस मामले में point करता है to some serious administrative shortcomings और उन्होंने थरा इन्वेस्टिगेशन की मांग की है इन प्लानिंग स्टाफिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और ये केस जो है जब से सामने आया है तब से एक पब्लिक डिबेट जो है ये छिड़ चुकी है गवर्नमेंट के प्लानिंग के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के बारे में, और क्रिटिक्स का कहना है कि एसेंशियल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए ऑफ डिले वाइल कम्युनिटीज कम और कंटिन्यू टू वेट कि उनको अप्रूव्ड या इम्प्रूव्ड मेडिकल सर्विसेज जो है ये मिले। हॉस्पिटल अभी भी इनकम्प्लीट है विद नो कन्फर्म डेट कि ये कब तक इसका कंस्ट्रक्शन जो है ये शुरू होगा, पर कमाल की बात जिसके बारे में बातें हो रही है कि 100 बेड्स है सिविल हॉस्पिटल में इंदौर और पिछले 6 सालों से फंक्शनल है ऑन पेपर्स लेकिन हकीकत में ये हॉस्पिटल आज तक बनी ही नहीं है।
20: होपफुली बन जाए ताकि लोगों को कुछ मेडिकल सर्विसेज जो है ये मिल सके ना।
19: दैट्स द मेन कंसर्न कि देयर आर पीपल जो हमेशा यू नो हेल्थ फैसिलिटी वाइज उम्मीद रखते हैं कि इनको ज्यादा बेहतर फैसिलिटीज जो है ये मिले, और कोशिश भी यही होती है ना कि ये फैसिलिटीज उन लोगों तक पहुंचाई जाए। जब ये बन जाएगी तो डेफिनेटली लोगों को मिलेगा, लेकिन कब, लेट्स सी हाउ दैट हैपेंस।

0: going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: आने वाले दिनों में क्या कुछ होने को है हमारी कम्युनिटी में, इसकी जानकारियां हम आपको देते रहते हैं। और सबसे पहले तो याद रखें कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट के सहारतार्थ तिरुकुट टुनाइट होने जा रहा है कल रात वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोई 2 में रात 7:30 बजे से। ऑकलैंड यूनाइटेड तिरुकुट ग्रुप द्वारा एंट्री फीस $10 है, तो आप जाकर इसमें जरूर हिस्सा ले सकते हैं।
4: इसके अलावा आपको याद दिला रहे हैं द न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहे हैं इनके 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए। 22nd एंड 23rd अगस्त को रहेगा बकेनहेड स्काउट्स हॉल पर। प्लेयर्स जो है अलग अलग स्किल लेवल्स के यहां पर वेलकम्ड है टू पार्टिसिपेट। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं या और जानकारी चाहिए तो आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं या फिर कॉल या

0: मैसेज कर सकते हैं न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पंकज मुंगा को 02109085067 पर।
1: श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में अखंड रामायण पाठ ये शनिवार फेस्ट और संडे 2 अगस्त को होगा। शनिवार की सुबह 7 बजे रोट पूजा होगी, 8:15 बजे आरती, 9:15 बजे से रामायण का पाठ शुरू होगा जो चलता रहेगा रविवार की सुबह 10 बजे तक, जिसके बाद हवन और आरती होगी। प्रोग्राम के दौरान यहाँ पर आपके लिए भोजन का भी प्रबंध रहेगा और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मंडली या आप इसमें हिस्सा लें तो ऑनलाइन 8364647 पर पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं।
0: और साथ ही साथ आपको हम याद दिला रहे हैं कि रामलीला जो है ये होने जा रही है अ डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस ऑन द 8th of August। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए से लेकर आ रहे हैं श्री रामलीला, जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपने स्टॉल्स वगैरह रखने हैं तो स्टॉल इंक्वायरीज के लिए मास्टर अशोक को 02117954599 पर आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। बट रिमेम्बर अपॉर्चुनिटी आपके पास है इसके साथ जुड़ने की एज अ ऑडियंस एज वेल, और किस दिन ये होगा डिटेल्स आने वाले दिनों में हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।
1: और भी अगर कोई खबर है आपके पास कम्युनिटी वर्क से रिलेटेड तो buzz@humfm.com buzz@humfm.com पर अपने ईमेल्स आप हमें जरूर भेज सकते हैं।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि आज ही मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप तो
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: डिब्बा खुल गया।
7: भरत भाई, टिफिन खुल गया छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
8: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा, डिब्बा खुल गया। हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। Buy any Kashish product and be in the draw to win up to $10,000 worth of cash prizes, gold coins and gift vouchers. Terms and conditions apply.
9: Big barrel, big range, bigger deals. Jim Beam 1.75 litre, $79.99. Hennessy VS Cognac, 700ml, $67.99. And Jameson's original 1 litre All Black, 700ml, $59.99. Plus join the Mates Club for even bigger exclusive deals.
10: Big barrel, you know, come to your store.
11: Media Voice complaints. How can I help?
12: My kids won't shut up.
11: I'm not sure that's our problem.
12: They keep reciting lines from one of your radio ads.
11: Aw, cute.
12: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
13: What do you want, son?
14: I want me some of that real southern chicken.
12: 28 times.
11: So where are you now?
12: Eating chicken.
15: Advertise with
16: Media Works.
15: New Zealand listens to us.
17: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the Media Works Foundation.
18: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2MONTHS. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi, switch to Tower.
19: What if your next holiday wasn't just a holiday,
4: but the adventure everyone talks about?
19: Imagine chasing waterfalls,
4: wandering lush rice terraces,
19: catching unforgettable sunsets,
4: and relaxing at iconic beach clubs.
19: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
4: discovering incredible temples,
19: tasting world-famous street food.
4: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: 20 मिनट हुए हैं अभी 9 बजकर और आपको हम लगातार कई दिनों से बताते आए हैं और आज अब ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ये फाइनल अपॉर्चुनिटी हम आपको देने जा रहे हैं और क्योंकि एक ही हफ्ता बाकी रह गया है आज थर्सडे हैं नेक्स्ट वीक फ्राइडे को कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर रहेंगे ऑकलैंड में
3: बिल्कुल हम आपको इसके बारे में इतने दिनों से बताते आ रहे हैं अब तो बस दिन जो है ये उंगलियों पर आप गिन सकते हैं और उसके साथ साथ ये भी आपको याद दिला दे कि टिकट्स जो है जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे अवेलेबल टिकट्स जो है ये कम होते जा रहे हैं भाई हर ओर लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं इनफैक्ट मैं आपको कुछ किस्से सुनाती हूँ हमारे कुछ ऐसे लिसनर्स हैं जो हमें मतलब कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हम उनको टिकट्स जो है ये दे दे तो अभी क्या है कि टिकट्स इतने सारे हैं हमारे पास देने के लिए कि हम देते देते आ चुके हैं जहां जहां पर हमें गिव अवे करने था हमने गिव अवे किया अभी हमारे पास गिव अवे की टिकट्स भी कम ही बचे हैं बट ऑन दी अदर हैंड जो अवेलेबल टिकट्स हैं जो आपको परचेज करने हैं वो भी कम ही बचे हैं सो अगर आप चाहते हैं कि आप समय पर टिकट्स ले लें बिकॉज वी नो दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट पीपल वुड लव टू गो एंड विटनेस कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव ऑन स्टेज तो आप आपस में बस बातें ही मत करती रह जाइएगा टिकट्स ग्रैब कीजिएगा ऑन टाइम और bookmyevent.co.nz रिमेंबर bookmyevent.co.nz आप विजिट कर सकते हैं टिकट्स ग्रैब करने के लिए और जब आप टिकट्स जो है अपने ले लें तो याद रहे आप अपने लिए एक सीट सिक्योर कर रहे हैं ताकि आप जाकर द ग्रेट कॉमेडी नाइट का मजा जो है ये ले सके नेक्स्ट सैटरडे यानी 18th of July को एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर और दूसरी चीज ये भी हम आपको याद दिला दें जबकि टिकट्स इतने फास्ट जा रहे हैं अगर आप ग्रुप बुकिंग करना चाहते हैं अपने पूरे फैमिली के लिए टिकट्स लेना चाहते हैं बट यू डोंट वांट टू फील द बर्डन ऑन योर पॉकेट्स ऑन योर वॉलेट्स तो आप आफ्टर पे का इस्तेमाल करते हुए टिकट्स जरूर ग्रैब कर सकते हैं टिकट्स आर अवेलेबल आफ्टर पे के थ्रू आप इसे परचेज कर सकते हैं एंड आपको ये भी हम बता दें कि अगर आपको टिकट्स बुक करने में थ्रू आफ्टर पे या किसी भी तरह से कोई डिफिकल्टी हो रही हो तो 021-043-2720 पर आप कॉल कर सकते हैं एंड द नीड जो हेल्प है आपको जिसकी जरूरत है आपको वो आपको जरूर प्रोवाइड की जाएगी सो रिमेंबर दिन कम है टिकट्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं डोंट वेट फॉर द लास्ट फ्यू डेज टू परचेज योर टिकट्स फॉर द ग्रेट कॉमेडी नाइट फीचरिंग कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव ऑन स्टेज
2: और ब्रेकफास्ट शो पर अब ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है फॉर यू टू विन ए डबल पास और ऐसा भी नहीं कि आपका नाम किसी ड्रॉ में हम शामिल करेंगे या बाद में जाकर पता चलेगा कि विनर कौन है इमिडिएटली आप में से किसी एक को एक डबल पास जो है ये मिल सकता है लेकिन उसके लिए आपको अपना चुटकुला जो है ये हमें सुनाना है अब 0800-004-866 चाहे वो आपका खुद का चुटकुला हो चाहे आपने कहीं सुना हो उसे या फिर पढ़ा हो जो भी हो
3: बस वो सुना सकते हैं जरूरी चीज ये है कि आप जो जोक हमें सुना रहे हैं वो कुछ ऐसा हो जो नाइस हो क्लीन हो रेडियो फ्रेंडली हो ऑन एयर फ्रेंडली हो बेसिकली और हमें हंसा सके इनफैक्ट आपने भी मेंशन किया ना कि ये हमारा लास्ट अपॉर्चुनिटी है ब्रेकफास्ट शो पर तो आज हम एक नहीं दो लोगों को पासेस जो है ये देंगे सो इफ यू वांट टू विन अ पास विद अस दिस इज द राइट मोमेंट दिस इज द अपॉर्चुनिटी जिसका फायदा आपको उठाना है
2: तो जल्दी से कॉल करें और अपना चुटकुला जो है ये आप हमें सुनाएं और बताएं कि क्या है इशू या क्या है चुटकुला आपका और याद रखें क्या है जो आज आप हमें सुनाकर एक डबल पास जो है यहाँ से लेकर जा सकते हैं द ग्रेट कॉमेडी नाइट के लिए ट्राइविजन इवेंट्स की ये पेशकश एंड बाय द वे कृष्णा अभिषेक यू नो ये वो लाफ्टर शेफ
3: जो लाफ्टर शेफ की पूरी कॉमेडी का भार जो है ये अपने कंधों पर इन्होंने उठाया हुआ है इसीलिए मेरे को लगता है इनके पीठ में बहुत दर्द होता रहता है बट ही इज हिलेरियस नॉट ऑन स्क्रिप्ट ये सिर्फ स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं ऑफ स्क्रिप्ट एज इन की इनको अगर आप कुछ स्क्रिप्ट नहीं भी दे रहे हो तो भी ये इतना हिलेरियस है इंस्टेंटली ये आपको हंसा देते हैं और अगर आपने इनको फॉलो किया, इनकी जर्नी फॉलो की है, तो आपको पता है. पर अगर आपने नहीं फॉलो किया लाफ्टर शेफ, कोई एक एपिसोड आप उठाकर देख लो, गारंटीड आप हंसोगे ही हंसोगे. एंड द रीजन ऑफ योर लाफ्टर वुड बी कृष्णा अभिषेक.
2: नेचुरली ही इज वेरी फनी ना.
3: ही इज वेरी फनी, ही इज ब्लेस्ड.
2: सो
3: ह्यूमरस है.
2: अब
3: मैं एक्चुअली जोक की बातें हम कर रहे हैं. हमें पता है कि हमारे लिसनर्स बड़े शर्मीले टाइप्स हैं. जहाँ पर मैसेज करने को होता है तो बहुत इजीली वो मैसेज कर देते हैं, लेकिन कोल के मामले में थोड़ा हाथ इनका टाइट है. तो एक्चुअली मैं शुरुआत करूँ, मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ.
2: अरे वाह.
3: हाँ, और अगर मेरे जोक पर आप हंसे तो मैं पास ले लूंगी. ठीक है.
2: हाँ हाँ, ठीक है ठीक है.
3: तो आप बताइए, मच्छर मारने के लिए सबसे जरूरी क्या है?
2: मच्छर मारने के लिए क्या जरूरी होता है? मस्किटो वो बोलते हैं, रिपेलेंट, क्या वो जो आता
3: नहीं.
2: है
3: नहीं,
2: तो क्या
3: मच्छर
2: है?
3: मारने के लिए सबसे जरूरी चीज है मच्छर.
2: अच्छा, एंड देन
3: जब मच्छर ही नहीं होगा तो मारोगे किसको आप? इट वाज फनी. That was not funny at all though. मैं आपका expressions भी देख सकती हूँ, तो लोग नहीं देख सकते, मैं देख सकती हूँ. मैंने कोशिश की यार, at least I tried my level best. But ये मेरी कोशिश थी जो नाकामयाब हुई. आपकी कोशिश कामयाब होती, नाकामयाब होती, चलो ऐसा करते हैं, हमने आपको बता दिया है कि हमारे पास आज दो दो पासेज देने को द ग्रेट कॉमेडी नाइट के लिए. और अगर ये पासेज आपको जीतने हैं, आपको एक जोक सुनाना है हमें, और अगर आपके जोक पर हम हंसे तो इसका मतलब आपको ये पास इंस्टेंटली मिल जाएगा, किसी ड्रो का हिस्सा नहीं बनना है आपको. तो आपको हम देते हैं एक गाने का टाइम, 3 मिनट्स का टाइम है. गेट रेडी, थोड़ा रिसर्च कर लो, फोन उठाओ, गूगल करो, जोक्स ढूंढो, और ऐसा कोई ऑन एयर फ्रेंडली क्लीन जोक ढूंढो जो आपको लगता है आप बोलोगे हम हंस देंगे. और फिर कॉल करो 0800 004866 पर, और हमें वो जोक सुनाओ. हमने हंसा तो पास आपका.
2: तो लेट्स सी कि क्या किसी में आज हिम्मत है हमें हंसाने की इस गाने के बाद.
0: Bollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
5: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Nice song, very nice song.
1: Very beautiful song. यार बहुत trend भी कर रही है गाना.
0: मैं कम से कम
1: बोलने दो आपको मैं. नहीं, मैं मजे ले रही हूँ ना. किसी ने बोला कि आज आप शो में प्रेजेंट नहीं, क्योंकि मैं आपको बोलने ही नहीं दे रही हूँ.
0: नहीं, उस तरीके से नहीं बोल रहा ना.
1: नहीं नहीं, मैं जानबूझकर ये कर रही हूँ.
0: अच्छा
1: रही
0: चलो छोड़ो, अभी भी मैं पता जाकर चला है कि हमारा जो 800 नंबर है उसमें सुबह से नेशन वाइड इश्यूज जो है ये चल रहे हैं और 1NZ इज इन्वेस्टिगेटिंग, तो इसीलिए शायद
1: डाउन है वो.
0: लेकिन आई मस्ट से पुनीत हमारे साथ लाइन पर रहे, ही इज मेड दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. उन्होंने जाकर जो डायरेक्ट लैंडलाइन नंबर है ढूंढा और उसके बाद हमें कॉल किया. सो पुनीत, थैंक यू सो मच, अ वेरी गुड मॉर्निंग. सबसे पहले
2: गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप दोनों?
1: बढ़िया है जी, बढ़िया पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया एक तो इतना एक्स्ट्रा एफर्ट लेने के लिए और हमें ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम इतना गंदा भी प्रोग्राम नहीं कर रहे कि कोई में सुन नहीं रहा है, इसलिए
2: मैं
1: कॉल नहीं कर रहा है.
2: आपको सुबह से सुन रहा हूँ, जब से आपने बोला कि आपका वो टेक चल रहा था तभी किसने कॉल नहीं करा, जब लाइन कट गई थी उनसे बात कर तब भी सुन रहा था मैं तो.
1: हमें लगा कि हमें कोई कॉल नहीं कर रहे क्योंकि हम अच्छे से बातें नहीं कर रहे, शो अच्छे से नहीं कर रहे. ये थोड़ी ना पता था कि 800 नंबर ही डाउन है.
2: हाँ जी, वो डाउन है. चलो
0: जी, अच्छा तो पुनीत आप को द ग्रेट कॉमेडी नाइट के लिए हम एक डबल पास दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक बढ़िया सा चुटकुला जो है ये हमें सुनाए एंड हमारा जो लॉन्ग वीकेंड है एक बहुत अच्छे नोट पर आप शुरू करें.
2: पर इतना नहीं आता, थोड़ा बहुत है तो मैं सुना देता हूँ आपको, फिर भी ट्राई करता हूँ.
1: हाँ. जी जी.
2: तो एक बार क्या होता है कि एक पेशेंट है जो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर से बोलते है कि क्या मैं ऑपरेशन के बाद गिटार बजाना ठीक बजा पाऊंगा? तो डॉक्टर बोलता हाँ बिल्कुल बजा पाओगे. तो मरीज बोलता कि कमाल की बात है कि पहले तो मुझे गिटार बजाना आता ही नहीं था.
1: ये खुद जोक सुना के खुद भी हंस रहे
0: हैं. But it was funny.
1: It was very funny, yeah.
0: मैंने तो पहली बार सुना ये जोक.
1: एकदम नया था ना, ब्रांड न्यू,
0: एकदम फ्रेश.
1: चलो पुनीत जी, आपने मैं खुश किया. एक तो आपने हमें ना केवल कॉल किया एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हुए, लेकिन साथ ही साथ आपने एक जोक सुनाया जो एकदम नया भी था और हमें हंसाया भी, दिल खुश कर दिया आज आपने हमारा. सो थैंक यू सो मच. तो एक डबल पास डेफिनेटली आपको दे रहे हम.
0: थैंक यू पुनीत, यू हैव अ वंडरफुल डे. और हाँ, आप शायद नंबर ढूंढ कर किसी और ने भी कॉल किया है. गुड मॉर्निंग. हेलो,
3: गुड मॉर्निंग, कैसे हो विजय भाई?
0: हम तो ठीक है, आप कैसे हो भाई?
3: अच्छा हूँ भाई, अच्छा हूँ. अजय बोल रहा हूँ भाई.
0: अच्छा, क्यों बोल रहे हो?
1: अरे
3: अरे, आपको जोक बताना है भाई. ये देखो यही जोक था, देखो हंसे के नहीं आप हंसे.
1: ये देखो, ये वाह क्या मतलब, इनका दिमाग भी कितना फास्ट चलता है. देखो हंसा दिया, देखो चाहे जोक सुनाया नहीं
3: देख
1: सुनाया.
3: लो. वेरी टैलेंटेड. जोक भी सुनाऊंगा वैसे, हंस तो आप गए हो, वैसे एंट्री तो हो गई अपनी, जोक तो आपका फिर भी सुनाऊंगा.
0: अच्छा हाँ,
1: एंट्री हो गई इनकी.
3: हाँ जी,
0: एंट्री हो गई. अब जो सुनाओ देखे कितना.
3: हाँ जी, एक बार दो दोस्त कब्रिस्तान में बैठ के बातें कर रहे थे.
1: ओहो,
0: और कोई जगह नहीं मिली
3: उनको. बोलता है एक, हाँ वैसे बस दारू दूर पी के कर रहे थे.
0: हाँ,
3: बात आपको पता ही है. एक दोस्त बोलता है दोस्त देखो इन मुर्दों को कैसे आराम से कब्रों में सो रहे हैं. इतने में सब मुर्दे गुस्से से खड़े होके बोलने लगे क्यों ना सोए भाई, हमने अपनी जान दे के एक जगह ली है.
1: अच्छा था, अच्छा था, वेरी नाइस. थोड़ा स्केरी था, मतलब हॉरर कॉमेडी इसको बोलते ना.
3: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
1: वेरी नाइस.
0: चलो अजय, थैंक यू सो मच, आपने भी कॉल किया.
3: थैंक यू जी,
1: आपको भी डबल पास दे रहे. यू डोंट, यू आर नॉट पार्ट ऑफ अ रो, पास आपका.
3: थैंक यू वेरी मच,
0: बाय. तो आप जाएं और जो द ग्रेट कॉमेडी नाइट है नेक्स्ट वीक फ्राइडे को होने, या नेक्स्ट वीक सैटरडे को सॉरी होने जा रहा है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. bookmyevents.co.nz विजिट करें. ब्रेकफास्ट शो पर तो अब और पासेस नहीं है आपके लिए, इसीलिए आपको जल्द से जल्द टिकट्स ये लेने हैं सो दैट यू कुड बी पार्ट एंड गो एंड वॉच क्या बोलते हैं उसको, कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर को.
1: उसको नहीं, उनको.
0: हाँ,
1: कृष्णा अभिषेक को और राजीव ठाकुर को एट द ग्रेट कॉमेडी नाइट नेक्स्ट वीक सैटरडे 18th ऑफ जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है। आफ्टर पे अवेलेबल है, टिकट्स ग्रैब कर सकते हैं आप। बुक नाउ पे लेटर ऑपर्चुनिटीज आपके लिए bookmyevent.co.nz विजिट करते हुए।
0: एंड अपोलॉजीज क्योंकि हमें बहुत देर से जाकर पता चला कि टेलीफोन
1: नंबर डाउन है,
0: टेलीफोन लाइंस चल ही नहीं रहे हैं और हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई कॉल करे, बट कोई नहीं। थैंक यू सो मच। अभी 24 मिनट रह गए हैं 10 बजने में, थोड़ी देर बाद आज का डेली राउंड अप भी हम आपके लिए इस प्रोग्राम में लेकर आएंगे।

0: चाहे आप हमके दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: At Flooring Extra, they don't just sell floors, they transform homes. From luxurious carpets to show-stopping hard flooring, you get expert advice and installers who get it right the first time. They make it effortless. Visit in-store or they'll bring the showroom to you. Measure, quote, install, done. All backed by solid warranties for total peace of mind. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
2: Flooring Extra. Adore your floor.
3: Right now, many of NZ Blood's regular donors can't donate due to sickness, school holidays and the short week. So please, come off the bench and give blood and help save up to 3 lives. Book now at nzblood.co.nz.
4: If you're at the fit-out stage of a build, Bunnings Trade is here to help. We've got what you need for your commercial and residential jobs with bathroom tapware, kitchens and appliances and HVAC solutions. Call 0800 134 872 to get a quick quote today at Bunnings Trade.
5: Travision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
6: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
5: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
6: Mashallah, bahut acha, very nice.
7: My mate Sam hurt his shoulder at basketball. He got sorted with a rehab plan and was doing his exercises, but he started feeling a bit down. So me and the boys made sure to visit him, and he helped with some coaching, so he still felt like part of the team. It meant he stayed active and on top of the injury. Then when he recovered, he was back to his awesome self.
8: If you've got a sprain or strain, staying connected to friends, whānau and things you love doing can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
9: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
11: What's going on?
12: डेली राउंडअप का वक्त अभी हो चुका है और साउथ आइलैंड खासतौर पर कैकोरा में तबाही बचाने के बाद खराब मौसम जो है धीरे धीरे लोअर और सेंट्रल नॉर्थ आइलैंड की ओर बढ़ रहा है, जहां पर कई इलाकों में हैवी विंड या हैवी रेन और स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग्स लागू किए गए हैं. कैकोरा अभी भी स्टेट ऑफ एमरजेंसी के नीचे है, जहां पर बाढ़ के पानी अब धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं और बिल्डिंग इंस्पेक्शंस जो है ये शुरू हो चुके हैं. ऑरेंज हैवी रेन वार्निंग इशू किया गया है होरोफेनुआ, मनवातु, तैहापे, तररुआ और साथ में होक्स बे के लिए कई अन्य जगहों के लिए भी वार्निंग्स इशू किए गए हैं, तो उन्हें आप अच्छी तरह से चेक कर लें.
13: इसके अलावा एक और एक खबर सामने आ रही है, जहां पर कहा गया है कि एक माँ और उसके बच्चे की मृत्यु जो है ये हुई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड आफ्टरवर्ड दिस वाज डिस्क्राइब्ड एज अ रेयर एंड कैटास्ट्रोफिक रप्चर ऑफ हर यूट्रस, जिसके बाद इनकी मृत्यु जो है ये हुई लेबर इमरजेंसी में. और कहा गया है कि इनका नाम जो है ये बताया गया है मरिया हुने पिरहिरा नेहो, जो कि मदर ऑफ थ्री है, एंड शी ब्लेड टू डेथ इन अ मैनर दैट वुड हैव बीन नॉट ओनली अनएक्सपेक्टेड लेकिन बहुत क्विक और सडन भी था. और साथ में बताया गया इनके जो पैथोलॉजिस्ट है उन्होंने इनफैक्ट इन्फॉर्म किया दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ एन इंक्वेस्ट इन टू द डेथ ऑफ द 33 ओल्ड वुमेन, कुछ बातें जो इनके बारे में पता चली. शी वॉज 39 वीक्स प्रेगनेंट एंड शी वेंट इनटू लेबर ऑन 2 फरवरी 2023 में, एंड शी एंड हर बेबी लेटर डाइड एट वेकाटो हॉस्पिटल. सो 2023 में एक घटना घटी थी जिसके बारे में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन जो है ये किया गया है, और बाद में चलकर कुछ डिटेल्स सामने आए, जैसे कि हमने बताया कि क्यों उनकी मृत्यु जो है ये हुई थी.
12: साथ ही में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो आज ईरान पर वापस से हमले जो है ये शुरू करेंगे टू ओपन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज. और ईरान का कहना है कि उसने बहरीन और कुवैत में अमेरिकन साइट्स को टारगेट करके हमले जो है ये किए थे, और उसके बाद ऑयल प्राइसेस के दोबारा वापस जाने का खतरा जो है ये बढ़ गया है. तो अपडेट्स के लिए हमारे साथ हम पर ही आप रहें.

0: 12 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में. बाय द वे रोहित शेट्टी का वो कौन सा टेलीविजन प्रोग्राम आता है,
1: कौन सा खतरों के खिलाड़ी
0: है, उसका नया सीजन जो है ये डिले हो चुका है.
1: अभी तक लॉन्च नहीं हुआ ना ये. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. बट बातें आपने की है स्टार्स के बारे में, तो चलिए एक और एक स्टार के बारे में आपको याद दिला दे कि ये आ रहे हैं 25 जुलाई को सुपर सिटी ऑकलैंड, द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान. एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक आपके लिए लेकर, जहां पर आपको इनका मैजिक एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. अगर जो आप एट द ट्रस्ट अरेना पहुंचते हैं 25 जुलाई को और टिकट्स जो है ये dryticketsdotcom से आपने ले लिए हैं, देन ऑल गुड. नहीं लिया है तो रिमेम्बर dryticketsdotcom विजिट करें टिकट्स ग्रैब करने के लिए, इनकी खूबसूरत सोल चीयरिंग आवाज जो है ये सुनने के लिए, इनकी कव्वालियों को एंजॉय करने के लिए, इनके सूफी गानों को एंजॉय करने के लिए, इनका बॉलीवुड अंदाज एंजॉय करने के लिए. बहुत ही खूबसूरत पावरफुल वॉइस जो आपको भी एकदम कैप्टिवेट कर लेगी अपनी ओर. और अगर आप इनको विटनेस करना चाहते हैं तो याद रहे जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस इनको लेकर आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड.
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Chup ho ja papiyo, chup ho ja.

0: दो बातों का वक्त हो चुका है, लेकिन आज का ये हमारा सफर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहाँ कई बार
1: मिस्ट्री एंड सरप्राइजेस,
0: हाँ, इतने यू नो अलग अलग चीजें जो है ये एक्सपीरियंस करने का मौका हमें मिला। बट थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कंपनी। शॉर्ट वीक था लेकिन बढ़िया लगा आपका साथ एक बार फिर, और होपफुली अब वीकेंड जो है कि आप अपना अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। आज की दो बातें, पहली बात कहते हैं कि अ फ्यू लाइंस में पहली बात जो ये कही गई है कि इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, अपनों के अपनों पर यहाँ इल्जाम बहुत है,
1: वाह वाह वाह,
0: शिकायतों का दौर देखता हूं तो थमसा जाता हूं, शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं, लगता है उम्र कम और इम्तिहान बहुत है।
1: वेरी नाइस, दैट इज सो अमेजिंग एंड सो पोएटिक।
0: हाँ
1: वही,
0: सेम सेम,
1: तो पूरा गुड़गोबर कर दिया। और दो बातें सुनाते ना, आपने तो भी एक ही सुनाई।
0: हाँ, आज की दूसरी बात गौर करें, चालाक दिमाग खेल तो जीत सकता है,
1: राइट,
0: ख्याल रखें कि चालाक दिमाग खेल तो जीत सकता है लेकिन विश्वास हमेशा के लिए खो देता है।
1: वेरी ट्रू, रिमेम्बर दीज थिंग्स, क्योंकि लाइफ में एक अच्छा इंसान बनने के लिए, जिसे हम कहते हैं ना बेहतर से बेहतरीन बनने के लिए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। 8 मिनट बाकी हैं 10 बजने में, माई टाइम का सफर सैंडी के साथ थोड़ी देर बाद तय कीजिएगा, लेकिन इस लॉन्ग वीकेंड अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, एंजॉय टू द फुलेस्ट विद योर लव्ड वंस और इवन बाय योरसेल्फ, क्योंकि कभी कभी खुद के साथ भी कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना जरूरी है। और हम आपसे अब मिलेंगे मंडे को एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा लेकर।

माय टाइम फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके 12 बजे तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे माय टाइम में रहने वाला है बिकॉज कशिका इज ऑन छुट्टी एंड 12 बजे के बाद यहाँ पे केतन का साथ आपके साथ हो जाएगा लंच बॉक्स में. सो कैसे हैं आप? आज थर्सडे है विच फील्स लाइक फ्राइडे. इज नॉट जस्ट ऑलमोस्ट फ्राइडे, इट फील्स लाइक फ्राइडे बिकॉज कल छुट्टी है. या फिर अगर आप कल काम कर रहे हैं तो या इट्स ओके, हम हैं ना आपके साथ, कल भी आपको एंटरटेन करते रहेंगे. हमारे डिफरेंट अनाउंसर्स जो है वो यहाँ पे आके हमेशा आपको एंटरटेन करते रहते हैं. सो हमको तो आप कभी भी 24/7 सुन सकते हैं फ्रीक्वेंसीज के ज़रिए या फिर हमारी रोवा ऐप के ज़रिए. सो अभी तक अगर आपने रोवा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, गुड टाइम टू डाउनलोड. ROV इज़ अ स्पेलिंग बिकॉज यू नेवर नो, आने वाले दिनों में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं एक्सक्लूसिव रोवा के लिए.

0: माय टाइम फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। एक आर्टिकल आया है बहुत ही इंटरेस्टिंग कि कीवीज आर ट्रैवलिंग अगेन। सो आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ वॉचिंग एवरी डॉलर जो न्यूजीलैंडर्स है अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि दोबारा से ट्रैवल कर सके। सो अकॉर्डिंग टू ट्रैवल कंपनीज जो बुकिंग्स है इवन फॉर द प्रीमियम हॉलीडेज हो रही है जिसमें बिजनेस क्लास फ्लाइट्स है टू ऑस्ट्रेलिया एंड लग्जरी एस्केप है टू मैनी एरियाज। सो बिजनेस क्लास इज जस्ट नॉट द बिजनेस क्लास। सो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेंड जो इस समय पर ट्रैवलर्स जो है ये उनके बीच में है वो है अपग्रेडिंग देमसेल्फ। सो पीपल आर चूजिंग बिजनेस क्लास फॉर मोर कम्फर्ट ऑन लॉन्गर फ्लाइट्स, बेटर स्लीप, लेस जेट लैग, ए चांस टू मेक अ हॉलीडे फील स्पेशल बिकॉज उनको अपने आप में एक्चुअली में टाइम देना है। सो फिलहाल कीवीज दे आर ट्रैवलिंग अ लॉट। ट्रैवलिंग से वैसे याद आया, ड्राइव शो में हमने लॉन्च भी किया है बाली एंड बैंकॉक का ट्रैवल जो आप मेरे और रुजबे के साथ कर सकते हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट द मोर इन्फॉर्मेशन तो सुनते रहेगा ड्राइव शो में, इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आपने कभी बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया है इन योर लाइफ? हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ बिजनेस क्लास? सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन आपने कभी किया है या फर्स्ट क्लास में अगर आपने कभी ट्रैवल किया है तो शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। 5599 इज द नंबर।
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja।
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere।
3: अच्छा Hunua west में?
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: Living. Weekdays 6 to 10 a.m.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
3: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūruki. All together, Auckland.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
4: Moisture और ventilation का problem लगता है.
5: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी

0: प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
1: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 इयर्स।
2: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए। Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए।

0: ऑफिस शाउट आउट में यहाँ पे हम शाउट आउट देना चाहेंगे अंकिता को जो इस समय सुन रही है। अंकित, थैंक यू सो मच आपका भी यहाँ पे सुनने के लिए। अंकिता ने वैसे ऑफिस हमें सुन भी रही है और ये भी बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ में बिजनेस क्लास में दो बार ट्रैवल किया हुआ है और एक बार तो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल किया हुआ है। आई थिंक ये सपना तो हर किसी का होता है कि अपने पेरेंट्स को अपॉर्चुनिटी देना कि वो एक बार बिजनेस क्लास में ट्रैवल करें। सो यस, आप भी इसके बारे में जरूर शेयर कर सकते हैं। 5599 इज द नंबर।
1: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

माय टाइम फिलहाल आप यहाँ पर सुन रहे हैं हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. अभी से लेके मेरा और आपका साथ 12 बजे तक है माय टाइम में. 12 बजे के बाद खेतन का साथ हो जाएगा लंच बॉक्स में. वेल आज आपको वार्डरोब का एक टिप देने वाली हूँ. यू नो वार्डरोब को अरेंज करना कईयों के लिए बहुत ही कठिन कार्य होते हैं और कई लोग इसको बहुत ही इंजॉय करते हैं. सो कईयों के लिए वो एक स्ट्रेस रिलीफ भी होता है. जब कोई स्ट्रेस में होता है तो वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है. इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट. मेसी वार्डरोब जो है ये कईयों के लिए स्ट्रेसफुल भी हो सकती है. यू नो देयर इज़ अ वेरी नाइस थिंग अबाउट वार्डरोब जो आप कर सकते हैं. 1 year रूल, डी क्लटर विदाउट अ गिल्ट. सो अपनी वार्डरोब ओपन कीजिए एंड जैसे ही आप ओपन करते हैं जो अंदर कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं आप उनसे पूछिए कि इन कपड़ों में से ऐसे कौन से कपड़े हैं जो आपने लास्ट 12 मंथ्स में, लास्ट 1 year में पहने हैं. सो अगर आपका आंसर नो है तो कंसिडर डोनेटिंग इट या फिर रीयूजिंग समथिंग एल्स लाइक क्लीनिंग क्लोज या समथिंग लाइक दैट. अगर वो इतने अच्छे हैं कि आप उनको क्लीनिंग वगैरह में नहीं यूज़ कर सकते हैं देन डोनेट इट, किसी और के काम आ जाएंगे. रीपर्पज द फैब्रिक. सो कीपिंग इट ओनली बिकॉज इट हैज़ अ सेंटीमेंटल वैल्यू. अगर वो किसी के दिए कपड़े हैं तो समझ में आता है, लेकिन आप ही के खुद के कपड़े हैं जो आपको पता है कि पिछले 1 साल से आपने नहीं पहने हैं. मे बी आप सोच रहे हो कि यार एक दिन इतना फिट होना है कि इन कपड़ों में फिट होना है, तो मे बी आप बहुत सारी जगह जो है वार्डरोब में वो कपड़े आपके ले रहे हैं. गिव इट टू समवन, डोनेट समवेयर. सो योर वार्डरोब इज़ नॉट अ म्यूजियम. सो इफ द क्लोथ्स आर ओनली कलेक्टिंग द मेमरीज एंड डस्ट ओनली, सो मे बी टाइम टू लेट देम गो. सो ये एक ट्रिक होता है, एक वे होता है अपने वार्डरोब को डीक्लटर करने का. दिस इज अनदर वन ऑल्सो, मैंने बहुत पहले कहीं पर पढ़ा था ये एंड मैंने ये तब अप्लाई करना शुरू किया एंड इट एक्चुअली हेल्प मी. उसमें क्या है कि जब आपके जो कपड़े जो हैंगर पे आपने लगाए होते हैं, सो आप एक साइड ऑफ हैंगर पे सारे कपड़े लगा के रखते हैं, आप अपना कपड़ा जो आपको यूज़ करना है जब आप निकालते हैं, पहनते हैं, वापस हैंगर पे लगाते हैं, तो हैंगर का फेस ऑपोजिट साइड पे कर दीजिए. सो बाय द एंड ऑफ मंथ आपको पता चलता है कि ऑपोजिट साइड वाले जो हैंगर है आपने कितने कपड़े बेसिकली इसमें से यूज़ किए हैं और कितने कपड़े आपने नहीं पहने हैं. सो इस वे से भी आपको समझ में आता है कि कौन से ऐसे कपड़े हैं जिसका फेस दूसरी साइड ही है, जिसको आप नहीं पहन रहे हैं, मे बी उसको आप वार्डरोब से निकाल दो. सो ये भी एक वे होता है अपने वार्डरोब को डीक्लटर करने का. आपके पास कोई वे है, तरीका है, आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं 5599. The beat of Bollywood. World's best, हमारी good brands नहीं है.

0: माई टाइम फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड आपके सुपर सिडनी में एक बहुत ही सुपर इवेंट होने वाला है, अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक, जिसका नाम है राहत फतेह अली खान नाइट। सो लेजेंडरी राहत फतेह अली खान एक बार फिर से ऑकलैंड में पहुँचने वाले हैं एक और ऐसी नाइट लेके आने के लिए, जहाँ पे आप उनके टाइमलेस हिट्स, कवालीज, पावरफुल वॉइस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ट्रस्ट अरीना में आपको पहुँचना है 25 जुलाई को। This event is presented by JK Star Productions, Goat Live, Dreams Entertainment, Simran Productions and Shehzada Productions. Tickets aapko mil jayengi drytickets.com pe jaake. So jaldi se apni tickets khareed lijiyega because ye ek night aise rehne wali hai jo aap full on enjoy karne wale hain inke music mein. मतलब इनके गाने जब वो गाते हैं, अपने कई बार गानों को एक्सप्लेन भी करते हैं। राहत फतेह अली खान ने पिछली बार अपने बेटे के साथ जब यहाँ पे परफॉर्म किया, पूरी ऑडियंस को इन्होंने कैप्चर किया, मतलब बनाए रखा अपने साथ। एंड लोग ना, ऑडियंस जो बैठी थी वो साथ में गाना गा रही थी उनके साथ। वो एक गाना, एक लाइन गा रहे हैं, हम दूसरी लाइन गा रहे हैं। सो काइंड ऑफ ऐसा माहौल होता है इस इवेंट में। सो आप भी ज़रूर पहुंचेगा वहां पे। रिमेंबर drytickets.com पे जाके आपको टिकट खरीदनी है।
1: My Time, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिज़्वी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
4: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
5: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
5: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
4: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: Shop Briscoe's for massive 70% off dream big deals on now. Cozy electric blankets, flannel sheets, thick warm duvets. Don't miss 20 to 70% off the entire store. With all stores open till 9 tonight at Briscoe's. See you online for T's and C's.
1: Home loan ke saath thoda cash bhi paana chahte hain? Naya home loan lena ho ya maujooda loan ka review karwana ho? Squirrel aapko dilayega ek aisi zabardast deal ki aapki ho jayegi balle balle. Janiye power of the squirrel effect. squirrel.co.nz.
2: आपके सामने एक रेड बटन है दबा दिया नहीं दबाना था
3: द मैडनेस इज बैक धमाल 4
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा
3: स्टारिंग अजय देवगन अर्शद वारसी रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी रिटर्न इन धमाल 4 डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार
5: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी
3: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
6: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता
7: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
8: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन-साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन-साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
9: Dream Diary
10: My time फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं यू हैविंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ ड्रीम डायरी के बारे में बातें करते हैं जहाँ पे कुछ ड्रीम्स का एनालिसिस आपके साथ यहाँ पे हम शेयर करते हैं जैसे कि काफ़ी कॉमन एक ड्रीम है वो है कि मिसिंग योर फ्लाइट काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बोला है कि जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं उनको सपना आता है कि एयरपोर्ट पे गए लेकिन प्लेन टुक ऑफ विदाउट देम ये एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करता है फियर ऑफ मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी और फीलिंग लाइक लाइफ इज मूविंग फास्टर देन यू आर सो मे बी इट्स टाइम टू स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड बुक दैट हॉलीडे और मेक दैट फोन कॉल सो कई बार ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि चीज़ें ना आपके हाथ से बहुत जल्दी निकलती जा रही है बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है आप चीज़ों को कैचअप नहीं कर पा रहे हैं तब ऐसे सपने आते हैं कि जैसे फ़्लाइट मिस हो गई ट्रेन मिस हो गई गाड़ी मिस हो गई कुछ ऐसा कोई ट्रैवल जो व्हीकल्स है ये मिस हो रहा है तब एक्चुअली में ऐसा उसको रिप्रेजेंटेशन उसकी बोली जाती है ड्रीम्स जो है एक पॉपुलर इंटरनेट वेबसाइट है जो क्लेम करती है ये ड्रीम्स में ना एवरी फेस यू सी बिलोंग्स टू समवन यू हैव सीन इन रियल लाइफ आपको क्या लगता है आपने आज तक कोई ऐसा सपना देखा है जहाँ पे आपने एक ऐसा चेहरा देखा है जिसने आपने रियल लाइफ में आपने कभी उस चेहरे को देखा ही नहीं है मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है बिकॉज अपेरेंटली जो स्टडी है ये कहती है कि जब हम जिन चेहरों को देखते हैं वही चेहरे हमारा दिमाग जो है रजिस्टर करता है बिकॉज दिमाग उसी वे से सबकॉन्शियस माइंड में ड्रीम्स को बनाता है लेकिन ऐसा चेहरा देखना सपने में जिसको आपने रियलिटी में कभी नहीं देखा है ये बहुत ही रेयर होता है वेल इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बिकॉज कई बार हमारा ब्रेन जो है ये काफ़ी फीचर्स लोगों के फीचर्स को कंबाइन करके एक अनफेमिलियर फेस भी बना सकता है वो अपना एआई का काम भी करता रहता है लेकिन आपने कभी ऐसा आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या आपने कोई ऐसा चेहरा अपने सपने में देखा है जिसको आपने रियलिटी में कभी देखा ही नहीं है मैसेज करके शेयर कर सकते हैं 5599 इज द नंबर

0: by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
1: फीफा वर्ल्ड कप के बारे में अगर बातें करते हैं तो क्वार्टर फाइनल्स के जो मैचेस है ये तो डिसाइडेड है, तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं। लॉन्ग वीकेंड है, माता रे की जब आप इंजॉय कर रहे होंगे उस समय पर आप ये मैचेस भी देख सकते हैं। फ्राइडे 10 जुलाई सुबह 8 बजे मैच होने वाला है, यानी कि कल सुबह 8 बजे मैच होने वाला है फ्रांस एंड मोरक्को के बीच में। एंड देन सैटरडे को सैटरडे 11 जुलाई को सुबह 7 बजे स्पेन एंड बेल्जियम के बीच में मैच रहेगा। एंड देन संडे को 12 जुलाई को सुबह 9 बजे नॉर्वे एंड इंग्लैंड के बीच में रहेगा। एंड दोपहर को 1 बजे अर्जेंटीना एंड स्विट्जरलैंड के बीच में मैच रहेगा। सो यानी कि मंडे को जब हम आएंगे तो हमें पता होगा कि सेमीफाइनल्स में कौन कौन सी टीम्स खेलने वाली है। क्या प्रेडिक्शंस है आपकी? मैं अपनी प्रेडिक्शंस बोलती हूँ जो मैं शेयर करती हूँ। सो फ्रांस एंड मोरक्को के बीच में मुझे लगता है कि फ्रांस गोना विन। स्पेन बेल्जियम के बीच में माय प्रेडिक्शन इज बेल्जियम इज लुकिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, दो आई वांट स्पेन बट बेल्जियम मुझे लगता है कि लेके जाएगी। नॉर्वे इंग्लैंड के बीच में इट कैन बी इंग्लैंड। अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड के बीच में, स्विट्जरलैंड ने वैसे कल बहुत अच्छी गेम खेली थी बट आई लाइक अर्जेंटीना, सो अर्जेंटीना इज़ माई टीम। सो लेट्स सी कि मुझे लगता है कि फ्रांस बेल्जियम इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना दीज टीम्स गुना प्ले सेमीफाइनल्स, ये मेरी प्रेडिक्शन है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आप भी शेयर कीजिए। 5599 इज द नंबर।

0: 24/7 on Rover. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: इस समय बाहर का टेम्परेचर आपको 15 डिग्रीज मिलने वाला है, लेकिन आज का ओवरनाइट 8 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा। मौसम आज का ऑलमोस्ट फाइन है। ओवर द वीकेंड एक्चुअली में आपको गुड वेदर मिलने वाला है। सनसेट आज का 5:20 पर।

0: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. माई टाइम आप यहाँ पे सुन रहे हैं यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी राइट नाउ. एंड अभी से लेके 12 बजे तक मेरा और आपका साथ है यहाँ पे माई टाइम में. और इस आवर में बातें करेंगे रीयूज रीसाइकल के बारे में भी. आपके घर में ऐसा क्या है जिसको आप रीयूज कर सकते हैं बहुत ही क्रिएटिव वे के साथ. एंड जिस चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, दिस इज समथिंग जो 90% लोगों के घर पे होती ही है और शायद आप इसको बिन में एवरी वीकेंड या एवरी सेकेंड वीकेंड इसको आप रिसाइकल कर रहे हैं, तो इसको शायद यूज़ करने का वक्त आ चुका है. वेल, इसके बारे में बात करेंगे एंड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस आप ले रहेगी. एंड स्टे ट्यून. अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 555.
1: बचाओ क्या

माई टाइम फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड द ग्रेट कॉमेडी नाइट इवेंट होने वाला है जिसमें कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। ट्राइविजन इवेंट्स का ये है डबल द कॉमेडियंस डबल द लाफ्टर इस इवेंट में रहने वाला है जिनको आपने टीवी स्क्रीन में देखा है। इनकी हिलेरियस कहानियाँ एंड पंचलाइंस आप लाइव एक्चुअली में एंजॉय करने वाले हैं। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे पहुँचे, मेरे को लगता है कि परफेक्ट नाइट आउट आपके लिए ये रहने वाला है अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के साथ। VIP टिकट्स जा चुकी है लेकिन बाकी टिकट्स थोड़ी सी अभी रिमेनिंग है, सो बुक योर

0: Tickets on bookmyevent.co.nz. 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में आपको पहुंचना है इस इवेंट के लिए. वैसे इस इवेंट के लिए अगर आप डबल पास जीतना चाहते हैं तो स्टे ट्यून. इसका मौका आपको आज लंच बॉक्स में एंड देन ड्राइव शो में भी मिलने वाला है.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Streaming on Rover.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
5: So, you and the boys have that mildly inappropriate, actually very inappropriate group chat. Maybe it's time to balance it out with a more appropriate group, like Blood Buddies, a group that donates blood and plasma together. This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever. Yours could save lots of lives. No joke, it gives you that warm feeling inside. And you get free biscuits. The boys love biscuits. Get your Blood Buddies together and book now at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma, save lives.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
7: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
8: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
9: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.
10: My Time, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six Word Story.
11: Six Word की स्टोरी में आज के Six Words की स्टोरी है Happiness knocked, nobody answered the door. So it's happiness knocked, nobody answered the door. बहुत ही सिंपल सी है, इसको ज़्यादा elaborate करने की तो ज़रूरत नहीं है आज वैसे. So it's basically about कई बार ना हैप्पीनेस जो है, खुशी किसी ना किसी फॉर्म पे हमारे सामने होती है. इट अराइव्स क्वाइटली एट टाइम, नॉट विद वेरी बिग अनाउंसमेंट, फायरवर्क्स या फिर बड़ी अनाउंसमेंट के साथ हैप्पीनेस हमारे सामने नहीं होती है, बट इन स्मॉल एवरीडे मोमेंट्स में होती है, जिसे हम कई बार इग्नोर कर देते हैं. मे बी अ ब्यूटिफुल सनसेट, यू वॉज टू बिजी टू नोटिस, चाइल्ड लाफिंग इन द नेक्स्ट रूम, a friend calling just to check in, texting you just to check in, a quiet cup of tea after a long day jo aapko ekdam sukoon deta hai, compliment jo aapko chalte chalte mil gaya, koi bhi chance jo aapko mila hai jisko aap maybe for granted le rahe hain. So kai bar ye hota hai ki hamara na focus bahut happiness ka version apne mind mein humne bahut bada bana ke rakha hota hai ki happiness kya hai, jab promotion hogi, jab ghar khareed lenge, लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाएगी, लाइफ में ये गाड़ी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हैप्पीनेस है. बट उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि हम अपनी लाइफ की जो छोटी छोटी हैप्पीनेस है उसको भी इग्नोर कर रहे हैं. सो या व्हाट्स वन स्मॉल थिंग दैट मेड यू हैप्पी रिसेंटली, समथिंग वेरी सिंपल दैट यू ऑलमोस्ट मिस्ड इट. आज भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ हो ही सकता है कि आपको रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला. क्या बात है यार, ट्रैफिक नहीं मिलना रास्ते में इज अनदर लेवल ऑफ हैप्पीनेस. सो ऐसी हैप्पीनेस भी यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं. सो आज का आपका हैप्पीनेस मोमेंट जो था लाइफ का, वो क्या था, शेयर कीजिए. 5599 इज द नंबर.
10: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

माई टाइम आप यहाँ पे सुन रहे हैं यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ एंड लेफ्ट ओवर मैजिक के बारे में बात करते हैं। तो हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं जो लेफ्ट ओवर होती है। मैंने बचपन से घर पे देखा है कि कुछ भी है वो घर पे लेफ्ट ओवर जो होता है खाने की चीज़ों में वो कभी भी बिन में नहीं जाते, उसका किसी न किसी वजह से इस्तेमाल ज़रूर होता है घर पे। मैंने तो घर पे गाजर की सब्ज़ी की भी बाद में अगले दिन परांठे बनते हुए देखे हैं। इस वे से हर एक सब्ज़ी भी यूज़ होती है। दाल तो मेरे को लगता है समथिंग वेरी कॉमन कि घर पे अगर दाल बनी है एंड वो बच जाती है तो अगले दिन दाल के परांठे होते हैं जो आप बहुत इन्जॉय करते हैं। सो कोई भी सब्ज़ी दाल जब बचती है तो अगले दिन आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं इस वे से उन लेफ्ट ओवर्स को। एक मैंने ब्रेड्स के बारे में पढ़ा है, बिकॉज यहाँ पे ब्रेड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ब्रेड उपमा अगर आपको नहीं पता है, क्लासिक लेफ्ट ओवर हैक है। तो आपके घर में अगर ब्रेड बाकी है जो अभी आपको लगता है थोड़ी सूख गई है, आपको वैसे एज अ टोस्ट वगैरह नहीं खानी है, तो यू जस्ट नीड ब्रेड पीसेस वो वाले, देन अनियन टोमेटो एंड स्पाइसेस ब्रेड उपमा बनाने के लिए। तो इसमें आपको करना क्या है, यू हैव टू कट ब्रेड स्लाइसेस इनटू द स्मॉल क्यूब्स। उसको आप थोड़ा सा टोस्ट कर सकते हैं ब्रेड पीसेस को, थोड़ा उसको और भी क्रंची करने के लिए ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। एंड देन आपको बाद में क्या करना है, मसाला बेस बनाना है, जहाँ पे थोड़ा सा पैन में ऑयल डाल के हीट करके मस्टर्ड सीड डाल सकते हैं आप, उसको क्रैकल होने के बाद क्यूमन सीड्स डालिए, करी लीव्स भी एक्चुअली में आप डाल सकते हैं। देन थोड़े जो चॉप्ड अनियंस होते हैं उसको डालिए, ग्रीन चिलीज डालिए, सॉटे कीजिए थोड़ा सा, टोमेटोज एंड स्पाइसेस अपने हिसाब से डालिए, जिसमें आप यू कैन ऐड चिली पाउडर, यू कैन ऐड गरम मसाला, सॉल्ट, ऐसी चीज़ें आप बीच में डालिए। सो जब मिक्सचर बहुत ही स्लाइटली थिक सा हो जाए, फ्लेवरफुल सा हो जाए, उसके बाद जो ब्रेड क्यूब्स जो आपने थोड़े से टोस्ट किए हैं वो उसमें डालिए और थोड़ा सा मिक्स कीजिए। 2 to 3 minutes मैक्सिमम आपको उसको कुक करना है ताकि जो ब्रेड है वो सारे के सारे फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब करे। थोड़ा सा पानी उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं बिकॉज इट कैन फील टू ड्राई, दैट्स इट। एंड में थोड़ा कोरिएंडर ऐड कर सकते हैं या फिर लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। चाय के साथ ये आप एक्चुअली में खा सकते हैं, इट्स अ परफेक्ट स्नैकिंग। सो आपके घर में अगर ब्रेड बची हुई है तो नेक्स्ट टाइम आप ब्रेड उपमा उसका बना सकते हैं।

0: माई टाइम फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी राइट नाउ एंड कम्युनिटी न्यूज के बारे में बातें करते हुए न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रही है फोर्थ न्यूजीलैंड कैरम टूर्नामेंट के लिए जो कि 22nd एंड 23rd अगस्त को होने वाला है बर्कनहेड स्काउट्स हॉल में. सो अगर आपको कैरम पे खेलना अच्छा लगता है आप खेलते हैं या फिर बहुत खेलते हैं बहुत प्रोफेशनल हैं आप इसमें तो प्लेयर्स ऑफ ऑल स्किल लेवल्स इनको वेलकम है टू पार्टिसिपेट. रजिस्टर लेकिन आपको करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इनका पेज विजिट करना होगा फेसबुक पर विच इज़ न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन. सो वहाँ पे जाइएगा एंड जो प्रेसिडेंट हैं इनके पंकज मोंगा इनसे आप बात कीजिए. एंड और भी इवेंट्स में श्री राम मंदिर में अखंड रामायण पाठ ये हो रहा है 1st and 2nd अगस्त को जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए रामलीला लेके आ रहे हैं तो इंक्वायरीज के लिए आप कॉल कीजिए 02117954599 पे. रामलीला जो है ये 8th अगस्त को एक्चुअली में होने वाली है तो आप भी इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
2: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Panmure in just 20 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
3: आपके सामने एक रेड बटन है
4: दबा दिया
3: नहीं दबाना था.
5: The madness is back. धमाल 4.
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
5: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
5: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
8: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता.
9: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
10: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex, and this is my guest, Sarah.
11: What do you make in kebab ko special, Chef Alex?
10: Perfect blend of spices, tender meat, and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
11: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right, and meat is so juicy.
10: Ye hai Amma's Kebabs promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
11: 100% authentic and pure as mother's love.
12: Big Save's massive stock liquidation sale is on today. We're overloaded with stock. So today we're clearing out $20 million worth of furniture and beds with massive savings and deals store-wide. Save hundreds on sofas. Sofas from $7.99. Queen beds from $8.99. Get huge clearance deals on bunks, dining suites, recliners and bedroom furniture. Plus until Monday, get 50 months interest-free store-wide. TCs and credit criteria apply. Everything must go only at Big Save.
13: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At Assure One, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. Assure One, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as Assure One, is licensed financial advice provider.

रिसाइकल रीयूज में आज बात करने वाली हूँ मैं आपके साथ एग कार्टन्स के बारे में। एग कार्टन्स को आप अपने घर पे यूज कर सकते हैं, आप अपने घर में रीयूज कर सकते हैं। आप अगर अपने घर में एग्स लेके आते हैं तो एग कार्टन तो आपके घर में होंगे ही। यू नो ये परफेक्ट रहते हैं स्मॉल प्लांट्स के लिए भी, बिकॉज ईच एग सेक्शन एक्ट लाइक अ टाइनी प्लांटिंग पॉट एज वेल। सो इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं? सो कीप द कार्डबोर्ड एग कार्टन, अवॉइड द प्लास्टिक या फोम वंस। सो हर एक एग कंपार्टमेंट को आप पॉटिंग मिक्स के साथ फिल कर सकते हैं। देन प्लेस वन और टू सीड्स इन ईच सेक्शन एंड कीप द सॉइल थोड़ा मॉइस्ट एंड प्लेस कहीं पे जहाँ पे सनलाइट है। जैसे सीडलिंग्स जो है ये स्ट्रॉन्गर शुरू हो जाएंगी, देन आप ईच सेक्शन को कट कर सकते हैं एंड बाद में अपने गार्डन में डायरेक्टली आप प्लांट कर सकते हैं। सो यू कैन स्टार्ट अपने एग कार्टन के साथ, बाद में उसको एक एक पीस को काट के देन आप उसको प्लांट कर सकते हैं। ये वर्क क्यों करता है? बिकॉज जो कार्डबोर्ड होता है वो नेचुरली ब्रेक डाउन करता है इन द सॉइल। ये प्रोटेक्ट भी करता है यंग सीडलिंग्स जो होते हैं उनको वो अच्छे से प्रोटेक्ट करता है वाइल दे डेवलप द रूट्स एंड इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज द डिफरेंट प्लांट्स इन वन प्लेस एज वेल। ग्रेट प्लांट्स इससे शुरू हो सकते हैं, जैसे कि बेजल का प्लांट जो है, कोरिएंडर, लेट्यूस, स्पिनेच, मैरीगोल्ड, टोमेटोज, इन सब की शुरुआत एक्चुअली में आप इस वे से कर सकते हैं। एग कार्टन्स को वैसे आप एज अ ज्वेलरी एंड स्मॉल आइटम ऑर्गेनाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस टू कीप इयररिंग्स, रिंग्स, हेयर क्लिप्स, बटन्स, ये सारी चीज़ों जो है ये भी आप एक्चुअली में एग कार्टन्स में स्टोर करके रख सकते हैं। एग कार्टन्स को आप बहुत अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं। आपके घर में अगर कलर्स, पेंट्स वगैरह है उसको पेंट कीजिए अच्छे से एंड देन उसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी जो है ये आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी पढ़ा है कि दे हेल्प प्रिवेंट फर्नीचर स्क्रैचेज एज वेल। सो स्मॉल पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड फ्रॉम एग कार्टन्स कैन बी यूजफुल टू यूज देम अंडर फर्नीचर लेग्स, अंडर द डेकोरेटिव आइटम्स। यू कैन प्लेस देम बिटवीन स्टैक्ड आइटम ताकि उनके बीच में स्क्रैच ना हो। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छे कुशन जो है, प्रोटेक्टिव कुशन जो हम यूज़ करते हैं वो भी ये एज अ एक्ट करते हैं। एंड आपके घर में अगर बच्चे हैं, परफेक्ट थिंग टू प्ले विद देम। एग कार्टन्स को एज अ ट्रेजर बॉक्स आप बना सकते हैं फॉर क्रिएटिविटी। सो किड्स कैन टर्न देम इनटू कैटरपिलर्स, फ्लावर्स, एनिमल्स या कोई भी चीज़ जो है, या एक मिनी स्टोरेज बॉक्स जो है वो इसको बना सकते हैं। किड्स अपना पेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसको पेंट करने के लिए। सो आपके घर में अगर एग कार्टन्स है, अगर आप एग्स यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि उनको रिसाइकल में डालने से पहले देखिए कि घर पे वो किस किस वे से आपके यूज़ में आ सकते हैं।

थ्रोबैक में 90s का गाना आप यहाँ पे सुनते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे टाटा बाय बाय कहती हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी थोड़ी ब्रेक के बाद, 3 बजे कॉफी ब्रेक में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।